0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
2: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
2: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
3: मुरादाबाद
1: से संपर्क कीजिए।
2: नियम और शर्तें लागू।

अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIGG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIGG करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: किसान भाइयों, अब किसान क्रेडिट कार्ड बनाना और भी आसान हो गया है।
2: अब आपको बैंक शाखा के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,
1: बस घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से AKCC पोर्टल पर अप्लाई कीजिए। ekcc.nabard.org
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, अपना बैंक चुनिए,
1: अपनी जमीन की जानकारी भरिए और अपनी लोन पात्रता जानिए।
2: सब कुछ डिजिटल, बिना कागज, बिना लाइन
1: और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण उपलब्ध है।
2: समय पर चुकता करने पर ब्याज दर लगभग 4% तक हो सकता है।
1: नाबार्ड के सौजन्य से अब खेती के लिए ऋण लेना हुआ और भी आसान,
2: और बिना बैंक जाए सब कुछ आपके नियंत्रण में।
1: EKCC साख से समृद्धि।
2: नियम और शर्तें लागू।

0: साथियों अपने एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे।
1: तीन राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं।

0: अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया।
1: पनामा सर्व्स एज अ नेचुरल ब्रिज फॉर अस।
2: पनामा वैश्विक व्यापार मार्गों के लिए एक प्राकृतिक सेतु और व्यापक लैटिन अमेरिकी क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। पनामा नहर के कारण यहाँ की लॉजिस्टिक अवसंरचना विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहचान रखती है। हम शिक्षा, छात्रवृत्ति, औषधि उद्योग, प्रौद्योगिकी और सबसे महत्वपूर्ण व्यापार सहित अनेक क्षेत्रों में आपके सहयोग और साझेदारी की रुचि की सराहना करते हैं। हमें विश्वास है कि इन क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने से दोनों देशों के बीच आर्थिक, शैक्षिक और तकनीकी संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे।
0: श्री जयशंकर ने बेल्जियम के राष्ट्रीय दिवस पर वहां के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट तथा देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत बेल्जियम के साथ अपनी बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 1 भारतीय गंभीर रूप से घायल है। मंत्रालय के अनुसार घटना के समय जहाज पर 17 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें 5 भारतीय नागरिक शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। निर्वाचन आयोग आज कोलकाता में डाक मतपत्र प्रणाली को अधिक समावेशी, सुरक्षित और सुलभ बनाने पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सभी 24 चुनावी जिलों के चुनाव अधिकारी, साथ ही भारत और कई अन्य देशों के चुनाव प्रशासक, नीति निर्माता, शिक्षाविद और चुनाव विशेषज्ञ शामिल होंगे। चर्चा का मुख्य विषय पोस्टल बैलेट और विशेष मतदान व्यवस्थाओं को ज्यादा समावेशी, सुलभ और सुरक्षित बनाने के तरीकों पर होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्य चुनाव अधिकारी नीलम मीणा इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम में पोस्टल बैलेट, चुनावी निष्पक्षता बनाए रखने, धोखा धड़ी रोकना, ऑडिट सिस्टम, कानूनी ढांचे, टेक्नोलॉजी पर आधारित विशेष वोटिंग सिस्टम और रिमोट वोटिंग के भविष्य जैसे विषयों पर सत्र होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सत्र के दौरान नेपाल, अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना और अन्य देशों के चुनाव विशेषज्ञ वर्चुअली अपने अनुभव साझा करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय है और कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय मौसम विभाग ने आज राज्य के 5 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
3: हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हो रही मानसूनी वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भूस्खलन के कारण अनेक संपर्क सड़कें अवरुद्ध हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में बिजली और पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। प्रभावित इलाकों में बहाली का कार्य जारी है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज कांगड़ा, मंडी, चंबा, सिरमौर और कुल्लू जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियात के तौर पर कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर जिलों में सभी

0: सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को आज लगातार दूसरे दिन भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अनावश्यक यात्रा से बचने तथा नदियों, नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उधर जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी नई घटनाओं में एक महिला और उसके दो बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई है। इससे पिछले 3 दिनों में मरने वालों की संख्या 23 हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी दिन के दौरान मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। सिक्किम के नामची जिले के समरडुंग में NHPC जल विद्युत परियोजना की बन रही सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तलाश और बचाव अभियान जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: ये घटना कल दोपहर दक्षिण सिक्किम के समरडुंग में NHPC प्रोजेक्ट पर घटी। NDRF, SDRF और दूसरी एजेंसियों को तुरंत ही बचाव कार्यों में लगाया गया है, लेकिन गैस लीक होने के कारण बचाव दल शुरुआत में घटना स्थल तक नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि सभी की कोशिशों से अब तक 8 शव बरामद किए जा चुके हैं। माना जा रहा है कि भूस्खलन के कारण बन रही सुरंग को नुकसान पहुंचा है, लेकिन असली वजह अब तक नहीं पता चल पाया है। बचाव दल फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिनमें मजदूर, NHPC के अधिकारी और एक प्राइवेट इंजीनियरिंग फर्म के कर्मचारी शामिल है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंडी बर्नहम को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा लोकतांत्रिक मूल्यों से बंधे हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों में व्यापक सहयोग है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाल ही में जॉर्डन में 2 अमरीकी सैनिकों और इराक में 1 सैनिक के मारे जाने के बाद उनकी ये चेतावनी आई है। इस बीच अमरीकी सेना ने आज ईरान के खिलाफ नए हमलों की शुरुआत की है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस सैन्य क्षमताओं को और कमजोर करना है, जिनका इस्तेमाल हॉर्मुज जलडमरु मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले के लिए किया जाता है। इससे पहले ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि उसने ईरानी प्रांतों पर अमरीकी हमलों के जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमलों के 3 दौर के जरिए बहरीन और कुवैत में अमरीकी संपत्तियों और ठिकानों पर तेज प्रहार किए हैं। चाइना ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू हो रही है। प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व PV सिंधु करेंगी। महिला सिंगल्स के पहले दौर में सिंधु का सामना उन्नति हुडा से होगा। देविका सिहाग भी महिला सिंगल्स में खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में भारत की ओर से लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और HS प्रणॉय चुनौती पेश करेंगे। पुरुष डबल्स में MR अर्जुन और हरिहरन अंश करुणन भारत के खिलाड़ी हैं। वहीं ओलंपियन तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला, रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे मिक्स्ड डबल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। महिला डबल्स में भारत की कोई भी खिलाड़ी नहीं है। और हॉकी में FIH यूथ 5S एशियाई चैंपियनशिप में भारत की पुरुष और महिला सब जूनियर टीमों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। ओमान के मस्कत में खेले गए मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने कजाकिस्तान को 8-3 से हराया। भारतीय पुरुष टीम ने अपने पहले मैच में बांग्लादेश को 7-3 से शिकस्त दी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: राजधानी दिल्ली से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अपने मुख्य पृष्ठ पर लिखा है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर राजनीति ना हो, SIT के पुनर्गठन की संभावना तलाशें। हिंदुस्तान ने इसी खबर पर सुर्खी दी है, चढ़ावा चोरी की जांच नई SIT करे। दिल्ली में कल हुए प्रदर्शन को भी अधिकतर अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, संसद मार्च में झड़प, सरकार से बात, आंदोलन जारी। राजस्थान पत्रिका ने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और CJP प्रतिनिधियों की मुलाकात का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, सरकार से आश्वासन के बाद डीके ने अनशन तोड़ा, 100 प्रदर्शनकारी घायल। अमर उजाला ने संपादकीय में इसी खबर का उल्लेख किया है, संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनौती का संकेत है, जिसमें संवाद का स्थान धीरे धीरे टकराव लेता जा रहा है। ये निर्विवाद है कि संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने का अधिकार देता है। लोकतंत्र की मजबूती भी इसी में है कि असहमति को स्थान मिले और सरकारें जन भावनाओं के प्रति संवेदनशील हों। लेकिन ये भी उतना ही आवश्यक है कि प्रदर्शन संविधान और कानून की सीमाओं के भीतर हो। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है, एथेनॉल से कार ही नहीं चलेगी चूल्हा भी जलेगा। एलपीजी के अलावा एथेनॉल को रसोई ईंधन का विकल्प बनाने की तैयारी, सितंबर तक नीति का मसौदा तैयार कर सकती है सरकार।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल। भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to address NDA Parliamentary Party meeting at Parliament House this morning. President Draupadi Murmu to hold talks with a North Macedonian counterpart in Skopje today. 4 Indians killed and 1 critically injured in attack on commercial vessel near Odessa port in Ukraine. India condemns attack on the ship. West Bengal government hikes monthly pension for senior citizens, widows and specially abled persons in the state. US launches fresh strikes on Iran as President Donald Trump warns of massive retaliation. And PV Sindhu to lead India's challenge at the China Open Badminton tournament beginning today. The National Democratic Alliance, NDA Parliamentary Party's weekly strategy meeting, now known as Mangal Milan, will be held in the Parliament House this morning. Prime Minister Narendra Modi is scheduled to address the meeting. The meetings are traditionally held on Tuesdays during Parliament sessions with an intent to demonstrate complete alliance unity. NDA Alliance partners will pass a congratulatory motion during the meeting, honouring Mr. Modi for becoming the longest serving elected Prime Minister of India. President Draupadi Murmu will hold talks with her North Macedonian counterpart Gordana Siljanovska Davkova in Skopje today. President Murmu is also scheduled to meet Prime Minister Hristiyan Miskosti and Speaker of the Assembly Afrim Gashi and address the Parliament. She will also address the India-North Macedonia Business Forum. More from a correspondent.
5: President Murmu arrived in North Macedonia last night on a two-day state visit as part of her three-nation tour to Moldova, North Macedonia and Romania. She is the first Indian president to visit North Macedonia. The visit reflects the importance India attaches to strengthening bilateral ties with the three countries and its engagement with wider Eastern European region. Both sides have shown keen interest in deepening economic ties in priority sectors such as agriculture, pharmaceuticals, science and technology, information technology and IT.

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय
3: बिंदास मॉर्निंग।
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अशोर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
5: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
6: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
5: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
7: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा।
0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

दोस्तों कहते हैं कि मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे को खोल देती है। तो अगर आप मेहनत की इस चाबी को अपने पास रखते हैं या इस चाबी से आप कुछ और कड़क मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं और उसमें सपनों के यानी कि अपने भविष्यों के दरवाजे की जो है दरवाजे को अगर आप चाहते हैं कि वो खुल जाए, उसको खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये जो मेहनत की सुनहरी चाबी है ना, इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सुप्रभात, नमस्कारम, वेरी गुड मॉर्निंग। आप जुड़ चुके हैं आरजे आनंद के साथ। आज 21 जुलाई 2026 यानी कि बहुत ही खूबसूरत दिन है आज, मंगलवार का। जय श्री राम। आज के दिन की आपको देता हूँ धीरो मंगल शुभकामनाएं। साथियों, इस वक्त हमारे स्टेशन की घड़ी में वक्त हुआ है 8:22। जैसे कि मैंने बताया, आज 21 जुलाई का तारीख हो गया है। समय धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है और हम भी समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, बस सुबह का समय है, पॉजिटिविटी के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए, अपने सफर कीजिए एक बेहतरीन शुरुआत। बाकी दोस्तों अभी लौट कर आएंगे तो बात करेंगे आज के दिन के बारे में, क्यों खास है, क्या महत्वपूर्ण है आज के दिन के इतिहास के पन्नों में, और भी तमाम विशेष बातचीत जो है आपसे जारी रहेगी इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। बस इतना ही कहना चाहते हैं, जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। तो जिंदगी में सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बाकी अगर आप हमारे साथ आज की सुबह जुड़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़िए 9837896896 के माध्यम से। थोड़ी देर में लौट कर आते हैं, तब तक के लिए आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपका फेवरेट प्रोग्राम बिंदास मॉर्निंग। ये है आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी गुड मॉर्निंग।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

0: गाने तो देखिए सारे बढ़िया चलते हैं यहाँ पर, और ये गाना भी अपने आप में बहुत ही कमाल का है। इससे पहले जो आप गाना सुन रहे थे वो भी बहुत ही कमाल का है। एंड एनीवेज, इन दोनों गानों के बाद अभी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो आपका दिल से थैंक यू। हाय, गुड मॉर्निंग आनंद जी, कैसे हालचाल है? सुप्रभात। और ये मैसेज बड़ा सुंदर मेरे पास पहुंचा है, ये मैसेज मेरे पास इस वक्त पहुंच रहा है दिल्ली रोड से, और ये हमारे पास राहुल जी मैसेज करते हैं, लिखते हैं, स्वभाव वो खुशबू है जिससे रिश्ते महकते हैं, सम्मान वो दान है जिससे रिश्ते मजबूत होते हैं, कमाई वो इबादत है जिससे भाग्य बदलता है। वेरी वेरी अमेजिंग यार। आगे लिखते हैं, इसी विचार के साथ आपको हमारा प्यार भरा प्रणाम, नमस्कार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ऐसे ही अपने कार्यक्रम में व्यस्त रहें और सबका एंटरटेनमेंट यूं ही करते रहें। वेरी नाइस। एक संदेश हमारे पास पहुंचा है यहाँ पर राहुल जैन का, ये लिखते हैं, हाय गुड मॉर्निंग आनंद, सुबह सुबह आपकी आवाज़ सुन के बहुत ही आनंद मिलता है, बहुत ही अच्छा गाने आप प्ले करते हैं, बहुत ही अच्छा आपका प्रोग्राम होता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक और मैसेज हमारे पास पहुंचा है, नमस्कार आनंद जी। जी आपको भी नमस्कार। इन्होंने लिखा है, आनंद जी सुबह सुबह बस इतना ही कहना चाहते हैं कि जब आप किसी भी चीज़ के बारे में सोचें तो कोशिश करें कि आप उसके बारे में अच्छा और पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट करें। बिल्कुल जी, हम भी यही कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच अपना मैसेज करने के लिए। रोहन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह, ये काशीराम से जुड़ रहे हैं, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। इसके अलावा पिंकी जी का मैसेज आ गया है, गुड मॉर्निंग पहुंचाती हैं। एंड एक और श्रुति हमारे साथ जुड़ी हैं, लिखती हैं, हेलो हाय नमस्ते जी, कैसे हैं? जी सब बहुत ही बढ़िया हैं, आप बताएं कैसे हैं? आई होप आप भी अच्छे होंगे। देखिए इन्होंने लिखा है कि आनंद जी मौसम बहुत औसम है आज मुरादाबाद का। हाँ जी, मौसम तो खैर काफ़ी अच्छा हो ही रहा है कुछ दिनों से, और सच बताऊँ तो ऐसा मौसम अगर रहे तो बहुत ही बढ़िया है, मतलब अच्छा लगता है ना इस तरह का मौसम, यू नो, ठंडी ठंडी वाइब, ठंडी ठंडी फील, प्यारी प्यारी हवा, तो बहुत ही बढ़िया वेदर है उसके लिए, तो मैं भी बिल्कुल कहना चाहता हूँ। एक मैसेज और आया है, गुड मॉर्निंग, नमस्कार आनंद जी, आप कैसे हैं? नमस्कार जी, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, एंड आई होप आप भी बढ़िया होंगे। आने वाला गाना और भी अमेजिंग है, फ्रॉम द फिल्म इश्क विश्क से, सॉन्ग है, बहुत अमेजिंग गाना।
1: होने लगा चोट दिल पे लगी।
0: ऑफ कोर्स ये गाना आप तक पहुंचेगा, और अगर आप कुछ पहुंचाना चाहते हैं तो मैसेज करिए मुझे 9837896896 पर। लौट कर आता हूँ और बताता हूँ आज का दिन क्यों खास है इतिहास के पन्नों के लिए। आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए ना।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय,
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
3: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
4: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
5: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
4: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
5: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
4: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
5: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
3: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
6: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
5: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
6: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
7: तारीख पर तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मिला
3: अरे तो भाई गुस्सा क्यों होते हो, यहाँ इंसाफ भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, जो कहता है रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और दिल से कहिए जियो बिंदास।

1 inch, बहुत ही खूबसूरत आवाज शान साहब की एंजॉय कर रहे थे अभी आप, निकम्मा किया इस दिल ने, दिस इज राइट अमेजिंग, राइट सॉन्ग, राइट टाइम पे आप राइट गाने सुनते हैं आनंद के साथ। वेलकम बैक है, 8:50 हो गए साथियों, आगे बढ़ते हैं और बताते हैं क्यों है आज का दिन बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण। हर दिन की जो तारीख होती है, हर डी जो होता है अपने आप में बहुत ही फैब्यूलस होता है, कुछ ना कुछ स्पेशल होता है। आज जो है 21 जुलाई भारत इतिहास में बहुत ही स्पेशल है। आपको बता दें आज का जो दिन है वो तमाम चीज़ों को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन जिसमें से नाम आता है सन 2007 में आज के दिन प्रतिभा पाटिल ने भारत की 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और वह देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। श्रोताओं आज ही के दिन, यस आई एम टॉकिंग अबाउट प्रतिभा पाटिल जी की बात कर रहा हूँ, सन 2007 में आज ही के दिन कोलकाता में भारत के पहले सार्वजनिक थिएटर हॉल स्टार थिएटर की शुरुआत हुई थी सन 1883 में आज ही के दिन। श्रोताओं, और काशी विद्यापीठ को विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था आज ही के दिन 1963 में। आपको बता दें 1969 में अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा जो हुई थी एंड इसमें एक यात्री नील आर्मस्ट्रांग और जो है आपको बताते चले अपोलो 11 मिशन के तहत पहली बार चंद्रमा पर जो है वो कदम रखा था। श्रोताओं आज ही के दिन, और आपको बताते चले आज ही के दिन सन 1930 में हिंदी सिनेमा के दिग्गज गीतकार और कवि आनंद बख्शी साहब का जन्म हुआ था आज ही के दिन। और आज ही के दिन प्रसिद्ध हॉलीवुड की एक बहुत ही कॉमेडियन और पॉपुलर अभिनेता है ये एंड इनका भी आज ही के दिन जन्म हुआ था। रॉबिन विलियम्स का जन्म हुआ था साथियों आज ही के दिन सन 1991 को। और ये आज के दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके साथ, ऑफकोर्स हर दिन का डेटा मैं शेयर करता हूँ, यानी हर दिन का इतिहास आपके साथ साझा करता हूँ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहाँ आप सुनते हैं ढेर सारी बातचीत के साथ साथ ढेर सारा गीत संगीत और तमाम जानकारियाँ। आपको बताते चलें आज के दिन एक और नाम जुड़ जाता है जो और भी ज़्यादा और भी स्पेशल आज के दिन को बनाता है। 1947 में जन्म हुआ चेतन चौहान जी का, जो प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी थे, उनका जन्म आज के दिन हुआ था। श्रोताओं, और उमा शंकर जोशी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध गुजराती साहित्यकार, 1911 में इनका भी जन्म हुआ था आज ही के दिन। तो आज का दिन अपने आप में बहुत ही खास है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है आज का दिन, और हर दिन की तारीख जो है हर दिन की कड़ी को और भी स्पेशल बना देती है। तो तमाम सारी कड़ियाँ आज के दिन से जुड़ी हैं जो आज के दिन को और भी स्पेशल और भी महत्वपूर्ण बना रही हैं। अगर आप भी हमारे साथ इस श्रृंखला में जुड़ना चाहते हैं तो आपका दिल से अभिनंदन है। 9837-896-896 पर

0: ढेर सारे आपके मैसेज आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम डेफिनेटली उनको शामिल करेंगे अभी जरा सी देर में। और एक छोटा सा सवाल भी होगा आपके साथ में। 8:53 हो रहे हैं साथियों, और बताते हैं अभी मुरादाबाद में क्या स्पेशल हो रहा है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा इनकी वॉइस नोट सुनेंगे।
1: नमस्कार, राधे राधे, बिंदास मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ, मैं आपका दोस्त भूपी शर्मा, नगर पंचायत पाकबड़ा से बोल रहा हूँ। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। जिसको बजाना पड़ता है, गुनगुनाना पड़ता है, बजाते रहो, गुनगुनाते रहो और आनंद का साथ निभाते रहो। लोमड़ी कुत्ते से ज्यादा चालाक होती है, फिर भी लोग कुत्ता पालते हैं, पता है क्यों? क्योंकि चालाकी से ज्यादा वफादारी की कीमत होती है। नमस्कार, राधे राधे, भेजते रहो अच्छे अच्छे वॉइस नोट, अच्छे अच्छे मैसेज। नंबर 98-378-96-896। नमस्कार,
0: नमस्कार, राधे राधे, थैंक यू भूपी जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्यारा मैसेज करने के लिए। गाइज, आप भी अपने वॉइस नोट और अपनी प्यारी बातें मुझ तक पहुंचा सकते हैं 9837-896-896 पर।
2: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई,
0: वेरी गुड मॉर्निंग
2: मॉर्निंग।
0: हाँ जी,
2: की शुरुआत हो चुकी है,
0: क्या बात है।
2: चाय की चुस्की के साथ,
0: हाँ जी,
2: एफएम मुरादाबाद सुन रहे हैं,
0: बिल्कुल।
2: और बनारस में बहुत ही अच्छा मौसम है,
0: क्या बात है यार,
2: बारिश का मौसम बना हुआ है।
0: अरे वाह,
2: कुछ ही देर में हमको उम्मीद है बारिश भी हो जाएगा,
0: बिल्कुल डेफिनेटली।
2: और मैं भी ड्यूटी पे निकल चुका हूँ और अपने कान में एयरफोन लगा के एफएम मुरादाबाद सुन रहा हूँ,
0: क्या बात है।
2: मैं मोहसिन अंसारी बनारस से।
0: थैंक यू मोहसिन भाई।
2: सभी लोग जुड़ जाए एफएम मुरादाबाद आरजे आनंद भाई के साथ, जो सबको दीवाना बना देते हैं, इतने अच्छे अच्छे जानकारियाँ देते हैं कि दिल गार्डन गार्डन हो जाता है और खुश।
0: थैंक यू सो मच, मुझे लगा कि जो और भी बोलने वाले हैं। ये बहुत ही अच्छा लगा, देखिए बनारस से भी जुड़ चुके हैं मोहसिन साहब। आप कब जुड़ेंगे मुरादाबादी? 8:55 हो गए हैं ट्यूसडे की सुबह, आनंद की सुन रहे हैं आप। मंगलवार का दिन है, बच्चे स्कूल पहुंच चुके हैं जी, बहुत ही बढ़िया। आप ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, ऑल द बेस्ट। अच्छे गाने हैं ना मेरे पास आज की सुबह, गुड मॉर्निंग। अभी लौट कर आता हूँ, नेक्स्ट आवर में मिलूंगा, जहाँ करेंगे हम ढेर सारी बात। तो आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपका फेवरेट प्रोग्राम, दिस इज बिंदास मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं आनंद को, वी कम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय।
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
3: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
4: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
5: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
4: पर पापा।
5: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
6: स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।
7: देखिए तीसरी घंटे की हो गई शुरुआत, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद के साथ आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है बिंदास मॉर्निंग, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। वेरी गुड मॉर्निंग जी, दिस इज माय लास्ट आवर। 9:04 हो गए आनंद के साथ, ट्यूसडे की सुबह में हैं आप। थैंक यू वेरी मच इतने प्यारे मैसेज करने के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस घंटे की शुरुआत होगी एक बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन के साथ, यानी एक छोटी सी पहेली आपका बत्ती गुल मीटर चालू करेगी दिमाग का। सो आज की मेरी पहेली है, फूल भी हूँ फल भी हूँ और मिठाई भी, बताओ मैं क्या हूँ भाई। रिपीट कर रहा हूँ, फूल भी हूँ

लेकिन छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जो आपके लाइफस्टाइल और आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेकर आती है। जैसे कि कुछ अच्छी आदतें, अगर मैं बात करूँ सुबह जल्दी उठना, अगर आप मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठते हैं तो आपको ताजगी महसूस होती है, सारे जितने भी काम हैं वो टाइम टू टाइम हो जाते हैं और दिन बहुत अच्छे से जो है आपका बीत जाता है। अगर आप पौष्टिक और हेल्दी भोजन करते हैं तो ये आपके शरीर को ऊर्जा देता है, इंस्टेंट बीमारियों से आप बहुत दूर रहते हैं और आपका दिमाग भी तेज होता है। खूब सर अगर आप पानी पीते हैं तो आप हाइड्रेटेड रहते हैं और थकान कम होती है, आपकी स्किन बहुत ग्लो करती है। स्क्रीन का समय अगर आप कम कर देते हैं तो आपकी आंखें अच्छी होती हैं, आपका मन जो है शांत रहता है और आपके समय की भी बचत होती है। तो श्रोताओं ध्यान रखिए, छोटी आदतें बड़ा बदलाव, नियमित रहें, इन आदतों पर फोकस करें, कंसिस्टेंसी के साथ बने रहें और खुद पर विश्वास करने लगेंगे तो जिंदगी और भी बेहतरीन हो जाएगी। कहते हैं आज की आदतें कल की सफलता का जो है एक बहुत ही बड़ा सुधार का एग्जाम्पल है, तो आज जो है अपना अच्छा बनाओ, कल ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी आपकी। सो ही गाइज, आप मुझे मैसेज कर रहे हो ना, आई एम वेटिंग फॉर मैसेजेस। सर्विस चार्ज लगाने पर 41 रेस्टोरेंट्स पर लगाया गवर्नमेंट ने 50,000 का जुर्माना, इस पे अभी डेफिनेटली बात करने वाले हैं एंड अभी लौट कर आते हैं तो आपको बताते हैं। व्हाट्सएप पे एक नया फीचर आ गया है एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को इस फीचर के बारे में नहीं पता होगा। तो कहीं मत जाओ, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाओ, आनंद को ऐसे ही सुनते जाओ। आने वाला एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक, इस गाने के साथ करते हैं शुरुआत। यह ट्यूजडे मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं आनंद को, 21 जुलाई का स्पेशल मॉर्निंग शो आपके लिए लेकर हाजिर हो गया आपके कड़क स्टूडियो में। कड़क लड़का बंदे के नाम आनंद है, गुड मॉर्निंग।

RJ Anand is back.

0: सॉन्ग यार, इस गाने ने क्या तहलका मचाया। चाहे ओरिजिनल गाना हो या जैकलिन वाला गाना हो, यार कसम से इस गाने ने कमाल मचा दिया। श्रेय घोषाल की आवाज, गाना इतना अच्छा, म्यूजिक इतना फैबुलस था। 9:13 हो गए, आप आनंद के साथ हैं। वही गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। हां जी, ट्यूजडे की सुबह जय श्री राम बोलते हुए आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग, आप चाहे दिल्ली रोड हो या कार रोड, आप जहां भी जा रहे हैं ऑल द वे बेस्ट। सुन रहे हैं आप आरजे आनंद को। आपको बताते चले, आज 21 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड जंक फूड डे। अब यार जंक फूड की बात आती है तो बहुत सारे फ्रेंड मेरे ऐसे हैं जो जंक फूड बहुत पसंद करते हैं। इनफैक्ट आप में से भी कई लोग होंगे जो जंक फूड की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं। हालांकि पता सबको है भैया, ज़्यादा जंक फूड खाएंगे तो अपन ही जंक बन जाएंगे, बॉडी में जंग ही लग जानी है, लेकिन फिर भी हम जंक फूड को अवॉइड नहीं कर पाते हैं यार। बिकॉज पता नहीं क्यों हमारा जो इससे लगाव हो गया ना, हमें सच्ची वाली मोहब्बत होगी एकदम 100% वाली, है ना। तो आज 21 जुलाई को हर साल वर्ल्ड जंक फूड डे मनाया जाता है और पिज्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स जैसी चीज़ें भले ही स्वाद में लाजवाब लगती हो, लेकिन अगर इन्हें आप रोज़ाना अपनी डाइट में लेते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है मेरे दोस्त। हाँ जी, इस दिन का मकसद सिर्फ जंक फूड खाना ही नहीं बल्कि लोगों को ये याद दिलाना भी है कि स्वाद के साथ साथ आपका स्वास्थ्य भी ज़रूरी है, यानी कि आपकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभार पसंदीदा फास्ट फूड का मज़ा लेना बहुत अच्छी बात है ना। इट्स नॉट अ बैड हैबिट, बट लगातार अगर आप उसको अपनी थाली में सर्व कर रहे हैं तो भैया ये आपकी बॉडी के अंदर ना आप जंक को डाल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी रहें, सुरक्षित रहें, तो आप अपनी थाली में रोज़ ताज़े फल, हरी सब्जियां, पौष्टिक भोजन आप ज़रूर लें और उनको इम्पॉर्टेंट भी दें। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। देखिए तो जंक फूड जो है सिर्फ पसंद किया नहीं जाता, उसको बड़े चाव से खाया भी जाता है, लेकिन डेली अगर आपके घर में छोटे बच्चे जंक फूड की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं या आप ज़्यादा जंक फूड का शिकार हो रहे हैं तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए, डोंट डू दिस, ये मत कीजिए गाइस, ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इसीलिए आज वर्ल्ड जंक फूड डे के मौके पर एक सजेशन डेफिनेटली आपका मैं चाहूँगा, आपका मैसेज भी चाहूँगा। वैसे आपका फेवरेट क्या है जंक फूड में, कौन सी चीज़ें जो आपको बहुत पसंद है, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज या फिर फ्रेंच फ्राइज या गोलगप्पा, जो भी आपको लगता है व्हाटएवर, आप मुझे डेफिनेटली बता सकते हैं आपका फेवरेट क्या है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जंक फूड डे जो है आज सेलिब्रेट किया जाता है, एक अवेयरनेस वाला दिन, इसी पे मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। आप बताओ आपका फेवरेट जंक फूड कौन सा है, कौन सी चीज़ है जिसे खाए बिना आप नहीं रह सकते हैं जंक फूड में, या यार ये चीज़ तो मैं डेफिनेटली छोड़ सकता हूँ। सो प्लीज़ टेल मी 9837 8986 8986 स्टूडियो का नंबर, बहुत सिंपल है। अभी लौट कर आते हैं, बताते हैं कार्तिक आर्यन के बारे में बहुत ही स्पेशल एंड अमेजिंग इन्फॉर्मेशन इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर।
1: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
5: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
6: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
7: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
8: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है,
9: लेकिन सोनिया
8: डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं,
9: नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन।
10: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
0: मैंने आपसे पहले भी पूछी है, मैं फूल भी हूँ, मैं फल भी हूँ, ठीक है जी, बहुत ही खूबसूरत एक पहेली है जिसका आंसर आपने करना है, एंड ऑफ कोर्स अगर आप इसका जवाब देंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। एंड सीरियसली गाइस, आपको जो है इसका आंसर डेफिनेटली पता है, मुझे पता है, और आप बहुत इजीली इसका आंसर भी कर दोगे डेफिनेटली। तो एक बार फिर से मैं जो हूँ अपनी पहेली को दोहरा रहा हूँ, और आप इसका जवाब ज़रा मुझे ज़रूर पहुँचाइएगा, एंड आई एम श्योर आप इसका जवाब देंगे। ढेर सारे लोगों ने तो मुझे सही जवाब दे भी दिए हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं फूल भी हूँ, फल भी हूँ, और मैं मिठाई भी हूँ, तो बताओ मेरे भाई मैं क्या हूँ, इसके बारे में आपको मुझे बताना है। अगर आपको पता है इसका जवाब तो डेफिनेटली व्हाट्सएप करेंगे आप, फूल भी हूँ, फल भी हूँ और मिठाई भी हूँ, तो बताओ मैं क्या हूँ। अगर आपको राइट आंसर पता है तो मैसेज करो ना यार।
11: नमस्ते बहनों
0: और भाइयों, आप सुन रहे हैं आनंद को, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी आते हैं ना, 9:19 हो गए स्टेशन क्लॉक में।
11: कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत, ये सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और तीन बजाती हुई

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाहे चाहे चाहे
3: बिंदास मॉर्निंग,
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

अमेजिंग सॉन्ग, अमेजिंग वाइब और गाना भी बहुत ही अमेजिंग था यार। वेलकम बैक यू वंस अगेन, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप किसी टोल प्लाजा के आसपास रहते हैं तो आप रोजाना उसी रास्ते पर सफर करते हैं, तो आपके लिए एक राहत की खबर यह है कि भैया आपको बताते चलें, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल जो है लोकल टोल पास बनवाने की प्रक्रिया जो है वो पूरी तरीके से अब डिजिटल कर दी गई है। एग्जैक्टली, अब लोग राजमार्ग यात्रा ऐप के जरिए घर बैठे ही कुछ ही मिनट में लोकल पास बनवा सकेंगे और पूरे महीने का टोल प्लाजा से जो है अनलिमिटेड सफर वो कर सकेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी एंड बेटर गुड न्यूज़ है कि भैया अब आप राजमार्ग यात्रा ऐप के जरिए घर बैठे ही अपना लोकल पास जो है वो डेफिनेटली बनवा सकते हैं। सो आई थिंक ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है एंड आई एम श्योर ये बहुत काम की भी है यार। थैंक यू वेरी मच यार, ये अच्छी अच्छी चीज़ें जब होती है ना हमारे आसपास में तो बहुत ही बढ़िया वाली यू नो एक वाइब फील होती है। एनीवेज, ट्यूसडे की सुबह है, आपको बताते चले व्हाट्सएप एक नया फीचर इनरोल हुआ है। देखिए वो ये है कि जब आप अपने स्टेटस लगाते हो नीचे के, जब आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं और आपको लगता है कि यार उसको एडिट करने की नीड है, अब तो अगर वो लगा दिया तो फिर वो पहले एडिट नहीं होता था, आपको डिलीट ही करना पड़ता था अपना स्टेटस, उसके बाद आप दोबारा से उसको रीपोस्ट करते थे। बट अभी क्या हो रहा है कि यू नो अगर आप किसी वजह से आपने कोई गलत टेक्स्ट नीचे लिख दिया है तो आप वहीं पर जब आप स्टेटस लगाते हैं तो ऊपर तीन डॉट होते हैं वहाँ पर जाएंगे तो उसमें एक एडिट का ऑप्शन आएगा जिस पर आप जो है अपने टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं एंड उसके बाद फिर से आप अपने व्हाट्सएप टेक्स्ट को दोबारा लिख सकते हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन जो है फीचर और अपडेट आने के बाद व्हाट्सएप ने काफ़ी सारी चीज़ें चेंज की। जब आप व्हाट्सएप पे किसी का स्टेटस लाइक करोगे तो पहले बहुत सारे ग्रीन हार्ड आते थे लेकिन अब बॉल्स आने शुरू हो जाएंगे। जब आप किसी का स्टेटस लाइक करोगे तो आप नोटिस करना ढेर सारे बॉल्स एक साथ जाएंगे, तो ये एक बहुत ही यू नो अट्रैक्टिव सी और बहुत ही ब्यूटीफुल सी चीज़ जो है व्हाट्सएप ने की चेंज। ऐसी अच्छी अच्छी खबरें आपके लिए लेकर आते रहते हैं। एक बहुत ही प्यारा मेरे पास जोक आया है, हाय गुड मॉर्निंग आनंद जी कैसे हालचाल हैं, ये लिखते हैं कि मास्टर जी शांति किस घर में रहती है, एंड उनके स्टूडेंट ने जवाब दिया यानी कि सोनू ने, जिस घर में पति और पत्नी दोनों मोबाइल चलाते हो वहां शांति रहती है। भाई मुझे मारो, ये तो आपने बहुत ही अलग ही जो है भेज दिया है हमें। दोस्तों सावन शुरू होने वाला है जिसको लेकर ढेर सारी तैयारियां भी चल रही हैं एंड बहुत सारे जो है रूट ड्राइवर होंगे डेफिनेटली, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं एसपी ट्रैफिक से, तो डेफिनेटली फिर हम आपको बताएंगे कहां कहां पर क्या चल रहा है। उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारत में पहली बार डेंगू वैक्सीन को मंजूरी मिली है, 4 से 60 साल तक के लोगों को लगेगी ये डोज एंड इसका नाम क्या होगा ये जानना भी तो ज़रूरी है, वो डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगा। लेकिन भारत में पहली डेंगू वैक्सीन जो है वो मिल चुकी है एंड इसको मंजूरी मिल गई है, 4 साल से लेकर 60 साल तक के लोगों को ये डोज मिल सकेगी। और आपको बता दें अब एक बहुत ही अच्छी खबर ये भी है कि भैया अभी मुरादाबाद में एक नई ट्रेन का जो है वो शुभारंभ हुआ है, अगर आप रामनगर से सीधा देहरादून जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये ट्रेन अवेलेबल है मुरादाबाद से भी एंड ये ट्रेन आपको ढेर सारे स्टेशन पर जब ये निकल के जाएगी तो बहुत सारे लोगों का जो है डेफिनेटली बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। अगर आप रामनगर से देहरादून जाना चाहते हैं तो मुरादाबाद, नजीबाबाद, भोजपुर टाइप के जो स्टेशन हैं छोटे छोटे वहाँ पर भी ये ब्रेक देगी और वहाँ की यात्रियों के लिए एक फैसिलिटी भी है कि वो आराम से ट्रेन में अपनी जर्नी का आनंद उठा पाएंगे। तो अगर आप रामनगर से देहरादून जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये ट्रेन बहुत ही बेस्ट होने वाली है जो मुरादाबाद से होकर ही निकलेगी लिसनर्स। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि पहले जब लोग रामनगर जाते थे तो उन्हें ट्रेन्स

चेंज करनी पड़ती थी, लेकिन अब जो है ना, अब आपको कोई भी चीज़ चेंज या एक्सचेंज करने की नीड नहीं है। आप सीधा रामनगर से देहरादून जा सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी ट्रेन का जो है शुभारंभ हो गया है अपने मुरादाबाद में। चलिए, ऐसी खबरें जो है आप तक पहुंचती रहेंगी। आपके मैसेज अभी शामिल करने वाला हूं। एक मैंने पहली भी पूछी है, मैं फूल भी हूं, मैं फल भी हूं और मैं मिठाई भी हूं, बताओ क्या है मेरा नाम मेरे भाई। अगर आपको पता है सही जवाब तो डेफिनेटली आप मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं 9837896896 पे, एंड देखते हैं कितने लोगों को पता है सही जवाब। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, यह है बिंदास मॉर्निंग ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आप सुन रहे हैं। ट्यूजडे की सुबह में ढेर सारी बातें हो रही हैं आपके साथ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर। लौट कर आते हैं जरा सी देर में। आई विल बी राइट बैक, डोंट गो एनीवेयर।

0: भैया, इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
1: तीस वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
2: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
1: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
3: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
4: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
5: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIG करो, स्वच्छता की जिद करो।

क्या बात है, इट्स ब्यूटीफुल ट्रैक अभी आप एंजॉय कर रहे थे, और मैं सच बताऊं तो ऐसे ब्यूटीफुल ट्रैक सुन के मज़ा आ जाता है यार आपको। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कांवड़ यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है, क्योंकि अब जो है ऑलमोस्ट ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, ज़्यादा टाइम तो वैसे भी बचा ही कहाँ है अब सावन आने में, तो उसकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से मुरादाबाद तैयारी कर रहा है। एंड आपको बताते चले कांवड़ पथ के जो गड्ढे वगैरह हैं वो सब कुछ उसकी साफ सफाई शुरू हो गई है, एंड जो ये कांवड़ यात्री हैं इनके लिए सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से चल रही हैं, पूरी प्लानिंग बहुत बढ़िया चल रही है ताकि हमारे मुरादाबाद में जो कांवड़ती भाई हैं उनको कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो सारी चीज़ों को जो है बहुत अच्छे से अब किया जा रहा है, साफ सफाई का जो ये मामला है वो लगातार बढ़ गया है। एंड बस गाइज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यार आप भी जो हैं साफ़ सफाई डेफिनेटली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हमारी गवर्नमेंट की नहीं होती, हमारी भी होती है कि हमारे आसपास के एरिया को हमें साफ़ सुथरा रखना है, हमें उसको और भी ज़्यादा चमकदार बनाना है। आपको बता दें प्रदेश के 24 ज़िलों में जो है आज भी बारिश का जो अलर्ट है वो बताया जा रहा है भाई साहब कि आज भी बारिश हो सकती है, लेकिन बाहर का मौसम तो सुबह देखने के बाद लग नहीं रहा था कि आज बारिश हो सकती है, लेकिन भाई कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ पता नहीं है बॉस। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, ये अपन की जो पुतली घर रोड है ना, और ये जो आगे चल के मंझोले वाली रोड है भाई साहब, इसमें इतने गड्ढे हैं ना, इतने गड्ढे हैं मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, आपकी गाड़ी की हालत ख़राब हो जाएगी, इतने गड्ढे बने भरे हुए हैं, पता नहीं ये गड्ढे कब जो है आई डोंट नो सही होंगे, इतने गड्ढे बन चुके हैं कि बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो मुद्दा है ना इस पर डेफिनेटली फिर किसी और दिन बात करेंगे, 101% बात करेंगे। चलिए श्रोताओं आगे बढ़ते हैं, और बाकी अभी मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आपने जो मैसेज किए उसके लिए थैंक यू वेरी वेरी मच, इतने प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल मैसेज के लिए हम आपका दिल से थैंक यू करना चाहते हैं, एंड थैंक यू सो मच गाइज आपके प्यारे प्यारे मैसेज के लिए। गुड मॉर्निंग पहुँचाते हैं हमें यहाँ पर रमन, ये लिखते हैं हाई आनंद हाउ यू, कैसे हैं आप, बहुत ही बढ़िया हैं जी। और एक और मैसेज हमारे पास पहुंच गया है, गुड मॉर्निंग सर, हाय माय नेम इज साधना, आपका नाम बहुत प्यारा है साधना जी, वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। एंड अभी बात कर लेते हैं मुरादाबाद की कुछ तीन बड़ी कड़क खबरों पर जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी आपके साथ शेयर करना आज की सुबह, बिकॉज आप आनंद को सुन रहे हैं तो ऑफकोर्स यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी होती है कि क्या कुछ खास चल रहा है शहर के अंदर, ये डेफिनेटली आपको बताएंगे। उससे पहले आपको बता देता हूँ आज का वेदर, 28 डिग्री अभी दिखा रहा है यहाँ पर, एंड ये जो है 24 तक जो है आगे पहुँच सकता है, बादल छाए रहेंगे और बीच में हल्की फुल्की बारिश पड़ने की भी संभावना बताई जा रही है। तो भैया देखिए आज का मौसम डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बाकी आप भी हमारे साथ ऐसी अच्छी चीज़ें शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप के जरिए। मैंने जो पहली पूछी थी उसका जवाब मोहसिन अंसारी जी एकदम पहुँचाते हैं करेक्ट वाला, और साथ में लिखते हैं कि मुझे जंक फूड में मोमोज बहुत पसंद है, आय हाय हाय क्या बात है भैया, सुबह सुबह इनको मोमोज पसंद आ गए हैं। 942 हो गए हैं, थैंक यू वेरी मच। और बाकी ढेर सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सतेंद्र जी जुड़ चुके हैं हमारे पास आज की सुबह, मेरी पहेली का एकदम सही जवाब दे रहे हैं, क्या बात है सतेंद्र जी, कंग्रेचुलेशन। जिस चीज़ की बात कर रहा था ढेर सारे लिसनर्स ने जो है मुझे उसके राइट आंसर कर दिए, इसी बात पे गाना आपके लिए डोप शुप का ओल्ड वर्जन निकालो 90s वाला। हाँ ओए होए ट्यूसडे की सुबह आफ्टर लॉन्ग टाइम ही गाना सुन रहे हैं, आपको मजा आ जाएगा यार, सच बता रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन ट्रैक है, ओए होए क्या बात है, ओए लेडीज एंड जेंटलमैन।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग,
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681। 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद,
2: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक,
1: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई,
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी,
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
1: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
3: कोई मिल गया,
1: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा, संतरी FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। क्या बात है यार, बिंदास मॉर्निंग सुन रहे हैं आप। एक कड़क सवाल, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं एक बहुत ही प्यारी बात। हेलो जी, ट्यूसडे की सुबह आनंद के साथ हैं आप लेडीज एंड जेंटलमैन। आज की मॉर्निंग बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, आई वुड आस्क यू दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। उससे पहले आपको बता दूं आज के दिन एक बहुत ही कमाल की कल क्लासी मूवी रिलीज हुई थी, एंड दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग मूवी। यू थिंक अबाउट भास्कर एंड इसके अलावा प्रेम और साथ में दो और कमाल की सोनी कुड़ी जो बहुत ही अमेजिंग लगी थी इस मूवी में। संतोषा साथ में मूवी आई थी, बहुत ही प्यारी मूवी थी एंड बहुत ही बढ़िया मूवी थी। इसमें गोविंदा जी का नाम भास्कर था एंड बहुत ही अल्टीमेट मूवी थी। इसका एक गाना छोटा सा प्ले करने वाला हूँ यहाँ पर आपके लिए, एंड आप मुझे आइडेंटिफाई करके बताएंगे आज की सुबह में कौन सी फिल्म की बात कर रहा हूं। आज पूरे के पूरे 19 साल हो गए इस मूवी को रिलीज हुआ, एंड दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग मूवी। बहुत ही प्यारी फिल्म है, बहुत ही प्यारी मूवी है, एंड ऑफ कोर्स यार इसके गाने बहुत ही अल्टीमेट थे, मूवी का क्लाइमेक्स बहुत अच्छा था और मूवी भी सच में यार मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगी थी ये मूवी। एंड एक साथ दो कमाल के हीरो ने जो है इसमें एंट्री मारी थी, बहुत ही बढ़िया फिल्म थी यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब इतनी बढ़िया मूवी मैं सच बता रहा हूं, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। लास्ट वाला जो इसका टीएन था यार, क्या कमाल का था। उसमें गाना हुआ था लास्ट में जब जो भास्कर जी हैं उनकी हीरोइन की शादी किसी और के साथ हो रही होती है, तो तब वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं, बहुत ही यू नो धाकड़ तरीके से एंट्री लेते हैं वो इस मूवी में। बहुत ही अच्छी मूवी है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आज जो मूवी, मतलब आज के दिन इस मूवी को पूरे 19 साल हो रहे हैं रिलीज हुए, 2007 में फिल्म आई थी, एंड उसकी का एक थोड़ा सा म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ गाने का, तो आप बताएंगे मुझे कौन सी फिल्म की बात कर रहा हूँ मैं आज की सुबह। ये रहा आज की फिल्म का म्यूजिक। बहुत ही कमाल की फिल्म थी, बहुत

0: कमाल की गाने थे और बहुत ही कमाल की एक्टिंग की थी इसमें गोविंदा ने, गोविंदा एंड कैटरीना कैफ को मैंने स्क्रीन पे देखा था फर्स्ट टाइम इस मूवी के अंदर, एंड दिस इज वेरी वेरी अमेजिंग सॉन्ग। ये गाना भी बहुत अच्छा है, ये मूवी बहुत कमाल की। अगर आप समझ गए कौन सी फिल्म की बात कर रहा हूँ मैं, तो प्लीज मुझे नाम बताइए उसी की फिल्म का, एक गाने का छोटा सा मुखड़ा, आई मीन छोटू सा एक चुटकी सॉन्ग वाला म्यूजिक। आज के दिन रिलीज हुई थी ये 2007 में मूवी, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके बताइए कौन सी फिल्म के बारे में बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट विच मूवी, यानी कौन सी मूवी है ये मुझे आप बताओ यार मैसेज करके। चलो जी व्हाट्सएप करो आप अपने नाम के साथ, अपने शहर के नाम के साथ अपना सही जवाब।
1: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलान।
2: अरे तो भाई गुस्सा क्यों होते हो, यहाँ इंसाफ भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी, एंटरटेनमेंट भी, क्योंकि आपसे आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 जो कहता है रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और दिल से कहिए जियो बिंदास।

क्या गाना है यार, बहुत ही बढ़िया फिल्म, बहुत ही अच्छा गाना है। एक बार फिर से वेलकम बैक है आप सभी का, और आपसे कह रहा हूँ आप कहीं मत जाना। अभी जो है आपके पास, यहाँ पर मैं 10 बजे तक तो हूँ ही, और 10 बजने में अभी थोड़ा सा टाइम तो है मेरे यार। मैं आपको बता रहा था भैया, आज 21 जुलाई को हर साल नेशनल जंक फूड डे मनाया जाता है, एंड इस पे हम ढेर सारी बातचीत कर रहे थे, एंड बहुत सारे मैसेजेस आप लोगों ने किए हैं, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। सो थैंक यू सो मच यार अपनी अपनी ये पसंद बताने के लिए, और जो मैंने आपसे छोटी पहेली पूछी थी उस पे भी बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। और ये जो वीक चल रहा है वो चल रहा है नेशनल आइसक्रीम वाला वीक, तो अगर आप आइसक्रीम खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो ये जो सप्ताह है वो आपके लिए है। एंड अभी हाल ही में हमने आइसक्रीम डे भी मनाया, तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी आगे बढ़ते हैं, और आपसे हम कहना चाह रहे हैं आज की सुबह अगर आप हमारे शो में पार्टिसिपेट कर चुके हैं तो बस आप हमारे साथ ट्यून इन रहिए, थोड़ी देर में जब लौट कर आएंगे तो डेफिनेटली आपसे बात करेंगे। रोहित शर्मा का एक बहुत ही अच्छा जो है दिलचस्प वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल कर रहा है, बहुत ट्रेंड कर रहा है आज की सुबह, एंड जिसने साबित कर दिया है कि वह अपने फेवरेट दाल चावल जो उनका फेवरेट खाना है उन्हें बहुत ही पसंद है। उन्होंने अभी एक हाल ही में एक पॉडकास्ट में अपने फेवरेट खाने के बारे में जो है जिक्र किया, उनसे पूछा गया कि आपका फेवरेट खाना क्या है, तो रोहित जी ने दाल चावल ही कहा था, बिकॉज इंग्लैंड के दौरान जो है जब वो इस दौरे पर थे इंग्लैंड के, तो बताया जा रहा था कि भैया भारतीय टीम लंदन स्थित इंडिया जो है वहाँ पर एक किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाने के लिए गए, तो वहाँ पर उन्होंने जो है बहुत सारे व्यंजनों में सबसे ज़्यादा जो पसंद किया वो अपने फेवरेट फूड को चुना, यानी कि अपने इंडियन खाने को दाल चावल को जो है उन्होंने चुना, और वो उसी को उसका वीडियो भी एक वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे, जो बहुत ज़्यादा आज भी ट्रेंड कर रहा है, एंड अभी भी वो जो है बहुत ज़्यादा अपने इस खाने को पसंद करते हैं, एंड दिस इज़ वेरी वेरी अमेजिंग वीडियो, एंड आप देखेंगे तो आपको प्यार हो जाएगा इस वीडियो से। एंड मैं सच्ची बता रहा हूँ गाइज, एक्चुअली ना जो खाना हमारे इंडियंस का होता है वो दाल चावल, वो हम सभी का बड़ा फेवरेट होता है यार। हम इंडियंस का बहुत बड़ा दिल होता है, हम कहीं भी चले जाएं लेकिन अपने इंडियन कल्चर को नहीं छोड़ते, अपने रिचुअल्स को नहीं छोड़ते, और अपने खाने को तो बिल्कुल नहीं भूलते यार। तो वही रोहित शर्मा जी ने दाल चावल को कहा है आई लव दाल चावल, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। यू नो लंदन में भी देसी स्वाद देखने को मिल रहा है, जहाँ लोग लंदन अमेरिका यूएस यूई जाके कुछ अलग ढूंढते हैं, वहीं हमारे क्रिकेटर भी अपने इंडियन खाने को पसंद कर रहे हैं यार, यही तो यूएसपी है हमारे खाने की। इतना सारा फूड वैरायटी होने के बाद भी उन्होंने सिर्फ अपने वाले दाल चावल को चुना, अपने इंडियन फूड को चुना, ये वाली बात सुन के फैंस काफ़ी एक्साइटेड हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं ये वाली बात को, एंड रोहित शर्मा की इस बात को जो है काफ़ी लोग लाइक भी कर रहे हैं, इनफैक्ट ये बहुत ज़्यादा कैची बन गया है फिलहाल। चलिए भाई एक बार फिर से आपको बताते चलिए, यूपी ने एक बार फिर से जो है रफ्तार पकड़ ली है, यानी कि भारत मौसम विज्ञान ने एक बार फिर से जताया कि भैया एक बार फिर कई जिलों में जो है रेड अलर्ट जारी करते हुए कहा कि अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश होने की संभावना बताई जा रही है, इसकी चेतावनी भी दी गई है। तो भैया अगर आपको नहीं पता तो अभी मैंने आपको बता दिया कि भैया पूरे प्रदेश में एक बार फिर से बारिश होने की जो है संभावना जताई जा रही है। कुछ शहरों के नाम इन्होंने जो है यहाँ पर शामिल किए हैं, जैसे बताया जा रहा है कि भैया आजमगढ़, बलिया, मुआऊ, गोरखपुर, संत कबीर नगर, एंड साथ ही साथ बस्ती एंड कुशीनगर, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, सीतापुर, हरदोई, फरुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, बाराबंकी, अयोध्या, अम्बेडकर, सहारनपुर, हाथरस, आगरा, मुरादाबाद, बिजनौर, अहमदाबाद, अमरोहा, इन सभी एरिया में जो है भारी बारिश होने की संभावना बताई जा रही है आने वाले अगले 24 घंटों के दौरान। चलिए गाइज, मैंने आपसे एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था, अगर आपने उसके जवाब दे दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। मैंने कहा था आज के दिन सन 2007 में एक बहुत ही कमाल की कल्ट क्लासिक फिल्म रिलीज हुई थी, एंड बहुत ही अच्छी मूवी थी, गोविंदा का नाम भास्कर था, कटरीना कैफ के साथ नजर आए, बहुत ही प्यारी फिल्म, बहुत ही प्यारे गाने थे। इसी फिल्म के गाने का एक छोटा सा म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ। अभी इतना पैसा में इतना ही मिलेगा, आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो फटाफट से आज की सुबह, व्हाट्सएप करके भी बता सकते हो यार 9837896896 पर, कि अभी जो आप बेसिकली यहाँ पर म्यूजिक सुन रहे हो कौन सी फिल्म का, यार मैं कौन सी फिल्म की बात कर रहा हूँ पता है आपको, तो फटाफट मैसेज करो यार 9837896896 पर। सोनू की, T2 की स्वीटी से गाना, इतना लंबा नाम था भाई मुझे मारो, कितने लंबे लंबे नाम हो गए ना आजकल मूवी के। चलो जी फिलहाल आगे बढ़ते हुए इस गाने को सुनते हैं, गुड मॉर्निंग।

0: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय
3: बिंदास मॉर्निंग।
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
5: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
6: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
5: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
7: आवश्यक सूचना 400 KV बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास UP कॉरपोरेशन के मझोला 400 KV उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
8: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
9: कौन है? मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं। नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन।
6: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: चुल।
1: क्या बात है, चुल तो मुझे भी होती कि हर दिन हर मॉर्निंग आपके लिए कुछ ना कुछ नया और स्पेशल लेकर आऊं। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, 10:07 हो रहे हैं, आप जहां भी जा रहे हैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, ट्यूसडे की सुबह आनंद को सुन रहे हैं आप, ये है आपके शहर का स्टेशन ऑफ द नेशन, दिस इज एफएम मुरादाबाद, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। और यार क्या सुपर से भी ऊपर वाले मैसेज किए आपने, जोरदार तालियां। आज की सुबह मैंने आपसे पूछा था कैसी कल क्लासी फिल्म जो है बहुत ही कमाल की फैंटास्टिक मूवी रिलीज हुई थी आज ही के दिन 2007 में, एंड आज इसको पूरे 19 साल हो गए हैं रिलीज हुए, एंड इसी की मूवी का एक गाने का छोटा सा इंट्रो म्यूजिक प्ले किया था मैंने। क्या सॉन्ग है, व्हाट अ सॉन्ग, कटरीना कैफ, लारा दत्ता, सलमान खान, गोविंदा पर जो है पिक्चराइजेशन, ये गाना और मूवी भी बहुत ही बढ़िया थी। सलमान खान ने इसमें लवगुरु का रोल प्ले किया था, बहुत ही बढ़िया मूवी थी। अब तो यार मैंने सारे क्लूज आपको दे दिए, बिकॉज हमारे साथ जुड़ चुके हैं ना आज की सुबह हमारे लकी वाले कॉलर, आइए इनसे बात करते हैं कौन कहां से जुड़े हैं एंड क्या इनको पता है सही जवाब। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं?
2: ठीक है सर, गुड मॉर्निंग सर
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद में, अपना शुभ नाम बताएं एक बार।
2: सत्येंद्र सिंह सर।
1: सत्येंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिंदास मॉर्निंग शो में, पूरे मुरादाबाद आपका स्वागत करता है आज की सुबह। क्या करते हैं सर आप?
2: थैंक यू सर।
1: सर आप क्या करते हैं अभी, प्रोफेशनली क्या करते हैं?
2: मैं सर जॉब करता हूँ सर।
1: अच्छा अच्छा, जॉब करते हैं, बहुत ही बढ़िया सर, किस चीज में जॉब है आपका?
2: उत्तर प्रदेश पुलिस सर।
1: अरे वाह, क्या बात है सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आप कहीं जा रहे हैं क्या सर अभी?
2: सर मैं ससुराल जा रहा था सर अपनी।
1: अच्छा, अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कहाँ निकल रहे हैं सुबह सुबह?
2: मैं सर मुरादाबाद से निकला था, फरीदपुर ससुराल है सर मेरी।
1: अच्छा, अरे वाह, बहुत बढ़िया।
2: और वाइफ दोनों साथ में जा रहे थे तभी मैंने लगाया था सर, और ये एक्चुअली मूवी मैंने सर कल ही देखी थी।
1: अरे वाह, क्या बात है
2: जी,
1: इसीलिए सडन आपको एकदम याद आ गया। हाँ
2: हाँ, पूरा मैं देखने आया था, थोड़ा देखा था मैंने, लेकिन जब नाम मैंने सुना सर तुरंत ही मुझे एकदम याद आ गया।
1: बहुत बढ़िया। अच्छा, पोस्टिंग कहाँ चल रही है आपकी सर?
2: पोस्टिंग सर बरेली चल
1: रही है। बरेली चल रही है, वेरी नाइस। तो छुट्टी पे आए हैं घर घूमने?
2: हाँ सर, छुट्टी आया था।
1: अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फिर कब जाने वाले हैं?
2: कल जाऊंगा सर।
1: क्या बात है सर, आप इतना अच्छा काम करते हैं, हमारी देश की जो है सेवा में हमेशा समर्पित रहते हैं, तो आपके लिए तो हमारे लिए वैसे भी दिल से एक बड़ा वाला सलाम निकलता है सर आप लोगों के लिए।
2: थैंक यू सर,
1: बिल्कुल सर, आपसे बातचीत करके सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है, थैंक यू वेरी वेरी मच।
2: मुझे भी सर बहुत अच्छा लगा सर
1: जी। ये जो मूवी थी इसका नाम बता दें एक बार सर।
2: पार्टनर सर।
1: बिल्कुल सही जवाब है सर, थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाहते हैं सर, सुबह सुबह रेडियो पे तमाम लोग आपकी आवाज सुन रहे हैं
2: जी,
1: कुछ मैसेज देना चाहेंगे सर आप चलते चलते?
2: हाँ सर, मैं कहना चाहूंगा सभी जो मतलब सुखी रहें, सेफ रहें, और सही से अपना जर्नी सेफ जर्नी करें सर।
1: बिल्कुल सर, मतलब जो जहाँ भी जा रहे हैं वो सेफली गाड़ी चलाएं।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल सर।
1: मौसम कैसा हो रहा है बाहर का सर?
2: मौसम ठीक है सर, हल्की धूप, हल्की छांव, बादल छाए हुए हैं।
1: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, मौसम कुल मिला के अच्छा हो रहा है सर।
2: अच्छा है सर,
1: बहुत बढ़िया। अच्छा सर,

0: रेडियो सुन के कैसा लगा सुबह सुबह? मजा आया?
1: बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। मैं जब भी सर गाड़ी से निकलता हूँ तो मैं रेडियो ही चलाता हूँ पक्का।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब मजा आ जाता है
1: जी। एकदम बहुत बढ़िया सर, एकदम टाया था। एक तो बिल्कुल सब क्षेत्र की बात पता चल जाती है सर, जो भी होता है आसपास।
0: बिल्कुल, गीत संगीत के साथ साथ आपको सारी जानकारियां भी मिलती हैं। रेडियो का फायदा तो सबसे बड़ा यही है। बिल्कुल सत्येंद्र जी, आपसे बात करके बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच, आप जुड़े, बहुत बहुत बधाई हो आज की सुबह आपको जी। और मुझे उम्मीद है कि आपको डेफिनेटली हमारे साथ बात करके अच्छा लगा होगा
1: जी। बहुत बहुत अच्छा।
0: चलिए सर, आपका दिन शुभ रहे, पहुंचिए आप अपनी जर्नी पर। ऑल द बेस्ट सर, नमस्कार सर, बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो ये सत्येंद्र जी जुड़े थे, उत्तर प्रदेश पुलिस में जो है ये ड्यूटी करते हैं, एंड हमारे साथ आज की सुबह जुड़े। बहुत मजा आया सर से बातचीत करके। सर थैंक यू सो मच, कंग्रेचुलेशन आज की सुबह। आपको ढेर सारी जो है शुभकामनाएं देना चाहते हैं, बिकॉज आज की मॉर्निंग तो आप ही बनते हैं हमारे शो के सुपरस्टार। जोरदार तालियां सत्येंद्र जी आपके लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों ने भी एकदम सही जवाब दिया है। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। आज की सुबह पूछा था मैंने कि गाना कौन सी फिल्म का है और कौन सा गाना है। अब इसी गाने को सुनते हैं, 10:12 हो गए, मेरा जाने का टाइम भी हो गया है। तो कुछ लोगों के व्हाट्सएप आए थे यहाँ पर, गीता जी और साथ में बबली जी, लक्ष्मी कश्यप एंड संतोष जी, ये सब हमारे साथ जुड़े हैं पूरी फैमिली के साथ सही जवाब के साथ। एंड विकी सागर जुड़ चुके हैं, रेडियो वाले आनंद को वेरी गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए हमारे पास सही जवाब पहुंच रहा है यहाँ पर उमेश कुमार जी का लोधीपुर से। एंड अगला मैसेज हमारे पास पहुंचा है यहाँ पर पिंकू जी का, ग्राम बिजना से स्मार्ट टीलर साहब सही जवाब दे रहे हैं। हाय सर, गुड मॉर्निंग, आपकी पहली का आंसर है गुलाब जामुन। निखत फातिमा जुड़ चुकी है, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब था यार। टीना जुड़ चुकी है मेरे साथ आज की सुबह कुंदनपुर से। एंड नौनेश कुमार जी सही जवाब के साथ जुड़े हैं। एंड इसके अलावा हाय गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं, ये जुड़े हैं मोहसिन अंसारी साहब मेरे साथ आज की सुबह सही जवाब के साथ। पार्टनर इज द राइट आंसर, सपना जी जुड़ चुकी है। रामपुर से जुड़े हैं हमारे साथ शमा जी, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। एंड रिजवान खान साहब सही जवाब पहुंचा रहे हैं। साथ में राशिद जुड़ चुके हैं आज की मॉर्निंग। ईदगाह से शफी अहमद अंसारी, रईस दूला अंसारी भी जुड़ चुके हैं प्रोग्राम में। एंड बीबी राधिका जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग। रिहाना जुड़ चुकी हैं। एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हालचाल है। बाबू अंसारी साहब जुड़े हैं रहमत नगर छप्पर वाली मस्जिद से। एंड इसके अलावा राजू पाल जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। एंड ये बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से जुड़े हैं, चमन लाल साहब पुतली घर रोड से जुड़े हैं। एक मैसेज आया, कीर्ति गाय जुड़ चुकी हैं हमारे साथ गायत्री नगर से। सहारनपुर से जोन रोजी पल विलीस मेरे साथ जुड़े हैं आज की मॉर्निंग। लिखते हैं, ये दुनिया कहने को तो अपनों का मेला है, पर ध्यान से देखो तो हर कोई अकेला है। वाह वाह, हाय गुड मॉर्निंग दुर्गेश जी, थैंक यू सो मच एवरीवन आज की सुबह जुड़ने के लिए। आप लोगों ने मेरी मॉर्निंग को सुपर डुपर लाउड बना दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की सुबह आप मेरे साथ जुड़े, मुझे बहुत अच्छा लगा, लवली टॉकिंग टू यू एवरीबॉडी। रोहित राणा हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़े हैं सही जवाब के साथ, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ आप जुड़े, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी तरफ से ऑल द वे बेस्ट आप सभी को, आप जहाँ भी जा रहे हैं, आपका ये दिन और भी मंगलमय हो जाए, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ। एक और मैसेज मेरे पास पहुंच गया है यहाँ पर, नंबर के 4 डिजिट है 8644। सर अपना नाम लिख देते तो मजा आ जाता। वेल आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग आज की सुबह। क्या बात है यार, व्हाट अ अमेजिंग सॉन्ग। कुछ टेक्स्ट मैसेज भी आए, 10:14 हो गए, इमीडिएटली पढ़ते हुए आगे बढ़ूंगा और यहाँ से खिसकूंगा भाई, जाने का समय हो गया है। ये अफरोज फातिमा से जवाब पहुंचाती हैं आज की मॉर्निंग हमारे पास टेक्स्ट मैसेज पे। गुड मॉर्निंग, हाय कैसे हाल चाल है, शगुन का मैसेज आ रहा है। एंड एक हमारे साथ नेहा भी जुड़ चुकी है, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हुए आज की मॉर्निंग। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं।
2: आप कैसे हैं, आशा करते हैं आप अच्छे ही होंगे। मैं सपना शर्मा बोल रही हूँ, नगर पंचायत पागवाड़ा से। आपने जो पहले पूछी थी उसका आंसर है गुलाब जामुन।
0: क्या बात है, आप गुलाब जामुन खिला भी दीजिए।
2: राधे राधे,
0: राधे राधे। जोरदार तालियां, थैंक यू सपना जी। आप अपने गले का जरा ख्याल रखिए, मुझे लग रहा है थोड़ी सी तबीयत नाशाद है आपकी। कोई बात नहीं, गेट वेल सून, आई होप आप लोग जल्दी से स्वस्थ रहें, हो जाएं, मस्त हो जाएं, और फिर जब अगली बार वॉइस पहुंचाएं तो और भी अच्छे से पहुंचाएं। चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर, रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। आरजे आनंद की तरफ से हैव अ ग्रेट डे, बाय।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
2: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
2: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
0: मुरादाबाद
1: से संपर्क कीजिए।
2: नियम और शर्तें लागू।
0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट FM रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705070552।
5: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
6: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग मुरादाबाद, नमस्कार आदाब, सुप्रभात, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी खुशी। दोस्तों आज बहुत ही खूबसूरत सा दिन है ट्यूसडे का। मंगलवार का दिन है और आज अष्टमी भी है, तो आप सभी को महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों वक्त हुआ है 10:26 राइट नाउ और आप सभी का फेवरेट शो लेकर खुशी हाजिर है मॉर्निंग मसाला, जहां पर ढेर सारी बातें होती हैं, इन्फॉर्मेशन भी मिलती है और इंटरटेनमेंट का डोज भी मिलता है, उसके बिना तो अधूरा है ना शो। और दोस्तों आपको पता है बाहर का जो वेदर है वो बड़ा ही खूबसूरत सा है। देखिए धूप तो है हल्की हल्की, लेकिन हाँ हवाएं भी बड़ी प्यारी सी चल रही हैं ठंडी ठंडी। जब मैं आ रही थी तो मेरे हेयर उड़ रहे थे, मैंने कहा ओ हो हो बस भी करो अब नज़र लग जाएगी खुद को। वैसे दोस्तों आप मुझे बताइएगा आज की मॉर्निंग आप अभी क्या कर रहे हैं इस टाइम राइट नाउ, बिजी हैं काम में या फिर रेडियो सुन रहे हैं या अभी ऑफिस की ओर जा रहे हैं या ऑफिस पहुँच चुके हैं। और दोस्तों आज के दिन की शुरुआत करते हैं खूबसूरत सोच के साथ, अपनी हंसी के मालिक खुद बनो कि अपनी हंसी के मालिक ना खुद बनिए, क्योंकि इस दुनिया में रुलाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन मुस्कुराने की वजह अक्सर हमें खुद ही बनना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि किसी का इंतज़ार मत कीजिए कि कोई आएगा वही आपको मुस्कुराने का मौका देगा तभी आप मुस्कुराएं, ना ना ना ना, आप खुद से भी खुश हो सकते हैं। दोस्तों ज़िंदगी में ना हर दिन एक जैसा नहीं होता, कभी खुशियां होती हैं कभी चुनौतियां, लेकिन अगर हमारी मुस्कान किसी और के व्यवहार पर निर्भर करेगी तो हम कभी सच्ची खुशी महसूस ही नहीं कर पाएंगे। याद रखिए खुश रहना कोई किस्मत नहीं बल्कि एक आदत है, और जो इंसान हर हाल में मुस्कुराना सीख जाता है ना वही ज़िंदगी का असली विजेता बन जाता है। तो आज खुद से एक छोटा सा वादा कीजिए, मैं अपनी खुशी की चाबी किसी और को नहीं दूंगी या नहीं दूंगा, ठीक है। अपनी मुस्कान की मालिक ना आप खुद बनिएगा, किसी दूसरे के हाथ में मत थामिएगा ये चाबी। हैव अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शाइनिंग एवरीवन, क्योंकि आपकी एक मुस्कान किसी की पूरी सुबह खूबसूरत बना सकती है, तो प्लीज मुस्कुराइए। और भी बातें करेंगे हम आपसे, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि आप भी मुझे अपना मैसेज पहुँचाइएगा। आज के मॉर्निंग नंबर मैं आपको बताती हूँ 9837896896, और कुछ बेहतरीन ट्रैक आप सभी के लिए आज की सुबह। आप कहीं मत जाइए, बस यूं ही स्माइल करती रहिए। और हाँ, जो हमारी फीमेल्स इस समय में सुन रही हैं, बहुत थक गई है ना आप सुबह से काम करते करते। देखिए घर में बहुत सारे काम होते हैं, मैं समझ सकती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा ना अपने लिए भी वक्त निकालिए, थोड़ा सा आराम से बैठ जाइए, पानी वानी पी लीजिए।

हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग. वंस अगेन आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6. और दोस्तों, सच में आप जब क्यूट से स्माइल करते हैं ना, तो बहुत ही प्यारे लगते हैं आप सब. माय डियर लिसनर्स, जब आप मुस्कुराते हो ना, तो यकीन मानिए सिर्फ आपका चेहरा ही नहीं, बल्कि आपके आसपास का माहौल भी खिल उठता है. तो मुस्कुराने में ना कोई कंजूसी मत करना, ठीक है? मैं बार बार आपसे कहती हूँ. और एवरीवन, हमारे पास इतने सारे मैसेज आए हैं आज की सुबह, क्या बात है दोस्तों. आपने तो कमाल ही कर दिया मॉर्निंग में, सुबह सुबह इतने खूबसूरत, इतने प्यारे प्यारे मैसेज. हो, चलिए तो सिलसिला शुरू करते हैं दोस्तों. यहाँ पर जो आपके संदेश आए हैं उनको मैं जल्दी से शामिल करती हूँ और जरा देख लेते हैं हम भी, हमारे श्रोताओं ने आज की सुबह क्या पहुँचाया है. उनके दिल की बातें भी जानना बहुत ज़रूरी होता है.

और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है दीप्शी काका, ये न्यू मुरादाबाद से हमारे साथ में कनेक्ट हुई है, कहती हैं हैप्पी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे मैम, कैसे हैं आप? मैं बहुत ही अच्छी हूँ दीप्शिका, थैंक यू सो मच डियर। एंड उसके अलावा और भी मैसेज यहाँ पर आए हैं, और ये मैसेज हमें पहुँचाया है मधुबनी बिहार से मोहम्मद शाबिद परवाना जी ने, कहते हैं गुड मॉर्निंग आरजे खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। उसके अलावा एक और मैसेज हमें मिला है यहाँ पर, ये मैसेज आया है हमारे पास नेपा नगर एमपी से सुदर्शन शाह पल्लवी शाह प्रखर शाह जी का, कहते हैं गुड मॉर्निंग आरजे खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और ये कहते हैं कि आज की सुबह ना मैम हमें एक बहुत ही खूबसूरत से गाना सुनना है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। एग्जैक्टली राइट, तभी तो मैं बोलती हूँ आप सभी से दोस्तों कि देखिए जिंदगी का ना हमें नहीं पता है नेक्स्ट पल कैसा क्या होगा, कुछ नहीं मालूम होता है, किसी को भी नहीं पता होता है, तो इसीलिए अपने जो प्रेजेंट टाइम है ना उसमें जीना सीखिए, कल की टेंशन मत लीजिए और जो हुआ है उसको भूलकर आगे बढ़िए, क्योंकि जो बीत चुका है उसे वो तो वापस ठीक किया नहीं जा सकता है, और जो आने वाला है वो हमें पता नहीं कि क्या होगा, तो जो हमारे पास है उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो, उसमें खुश रहो। जब आप इस पल को बेहतरीन बनाएंगे ना तो आपका आने वाला पल भी ना खूबसूरत हो जाएगा। और उसके अलावा हमारे पास एक और मैसेज यहाँ पर आया है, ये हमें मैसेज पहुँचाते हैं राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जी, जमुना देवी साहू और प्रेम पूजा दुष्यंत प्रांजल समीक्षा अपना मैसेज हमें पहुँचाती हैं आज की सुबह। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है झारखंड से, दादा बाबू रोड ग्रीडी झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान जी हमें मैसेज पहुँचाते हैं, कहते हैं आरजे खुशी जी हमारा आदाब कबूल कीजिएगा, आपको भी आदाब सर, थैंक यू, आपने इतने प्यार से मैसेज हमें पहुँचाया है। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है जिला अमरोहा नई बस्ती फतेह खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी जी का, और ये कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, हेलो गुड मॉर्निंग खुशी मैम, कैसे हैं आप? निखत फातिमा जी का मैसेज आया है और कहती हैं कि आज की सुबह मैम एक प्यारा सा गाना हमें सुनवा दीजिएगा, और इन्होंने बड़ी प्यारी सी लाइनें लिखी हैं कि हर इंसान को सिर्फ एक ही जिंदगी मिलती है, हर एक इंसान को एक ही जिंदगी मिली है, हर कोई इसे खुशी खुशी जीने का हकदार है, इसलिए किसी को भी ऐसी तकलीफ या बुरी यादें देकर मत जाइए जिन्हें वह पूरी उम्र संभाल ना सकें। एग्जैक्टली यार, अगर किसी को देना ही है ना तो अच्छी चीज़ें गिफ्ट कीजिए। अच्छी चीज़ें गिफ्ट करने का मतलब है कि किसी को अगर कॉम्प्लीमेंट देना है तो अच्छा सा दीजिए, किसी के दिन को खूबसूरत बनाइए। जब आप किसी के चेहरे पर स्माइल लेकर आते हैं ना तो आपका दिन भी यकीनन एवरीवन ब्यूटीफुल हो ही जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है दुर्गेश सैनी जी का, ये हमारे साथ जुड़े हैं कल्याणपुर मुरादाबाद से, कहते हैं खुशी मैम आपका शो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, धन्यवाद सर। तो चलिए दोस्तों, और भी मैसेज यहाँ पर लगातार बैक टू बैक आ रहे हैं, सभी को हम शामिल करेंगे एंड कुछ खूबसूरत गीत सुनते हैं, और उसके बाद आज क्या कुछ है वो सब आपको पता लगेगा। धीरे धीरे खुशी के साथ आप बने रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमें संदेश पहुँचाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। नंबर मैं अगेन आपको बता देती हूँ 9837896896, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर निकट सर्किट हाउस दिल्ली रोड मुरादाबाद
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी हाई शुगर पील या हार्ट प्रॉब्लम किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज बांझपन का आधुनिक इलाज पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा अत्याधुनिक लेवर रूम OT SICU MICU हमारी पहचान है एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा
5: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर चार योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद कॉल नाउ 9412211111

Thank you very much.

तो दोस्तों अभी आपने ब्यूटीफुल ट्रैक सुना, कैसा लगा आपको? बताओ बताओ, अच्छा लगा ना? ओहो, हमारी सखियाँ तो काम वाम छोड़ कर डांस करना शुरू कर दिया था उन्होंने। ओ कि खुशी जी ने हमारा फेवरेट गाना प्ले कर दिया है। कभी कभी ना मतलब कुछ गाने बड़े प्यारे होते हैं जो दिल को बड़ा सुकून भी दी जाते हैं और दिल भी प्रसन्न हो जाता है। हाँ, और दोस्तों मैं आप सभी का अगेन वेलकम करती हूँ एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो चल रहा है मॉर्निंग मसाला, खुशी आपके साथ है जो आपके लिए लेकर आती है ढेर सारी खुशियाँ। और टाइम भी मैं आपको बता देती हूँ, 10:56 हो चुके हैं। और दोस्तों आज का दिन बहुत ही पावन और शुभ माना जाता है। आज माँ पार्वती जयंती और मासिक दुर्गा अष्टमी का पावन अवसर है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माँ पार्वती शक्ति, प्रेम, समर्पण, सौभाग्यवती और सौभाग्य और परिवार की सुख समृद्धि की देवी होती हैं। उन्होंने अपने तप, धैर्य और अटूट विश्वास से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। उनका जीवन हमें यही सिखाता है कि सच्ची निष्ठा, धैर्य और विश्वास से हर कठिनाई पर विजय पाई जा सकती है। तो वही मासिक दुर्गा अष्टमी माँ दुर्गा की आराधना का विशेष दिन है। इस दिन श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करने से जीवन में साहस, सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप सभी श्रोताओं को माँ पार्वती जयंती एवं मासिक दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ पार्वती और माँ दुर्गा आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, सौभाग्य और अपार खुशियां लेकर आए। और दोस्तों आप भी मुझे अपने मैसेज पहुंचाइएगा आज की सुबह। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है शमा जी का रामपुर से, और ये कहती हैं, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। इन्होंने एक प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है आज की सुबह, हम पूरा प्रयास करेंगे इसको प्ले करने का। शुक्रिया आपने अपना मैसेज पहुँचाया है शमा। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है रानी नांगल से रिहाना जी का, और ये कहती हैं, खुशी जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है कश्मीर से महराजुद्दीन जी का, कहते हैं, आरजी खुशी जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और ये कहते हैं कि हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आप हमें इतना मिस मत कीजिए सर, हम तो एवरीडे आते हैं ना बातचीत करने आप सभी से। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास आया है, आरजी खुशी जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, कैसा रहा आपका बर्थडे सर? बहुत ही अच्छा, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था, उसे कहीं ज़्यादा बहुत ही खूबसूरत था। और ये कहते हैं कि खुशी मुझे एक ट्रैक सुनवा दीजिएगा नेहा कक्कड़, साथ में टोनी कक्कड़ की बड़ी प्यारी सी आवाज़ में, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। हाँ श्योर सर, ये गाना हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग पहुँचाते हैं सुरेश कुमार जी। उसके अलावा एक और मैसेज आया है, हाय खुशी मैम गुड मॉर्निंग, आई एम खुशी। ओके, अरे वाह, इधर भी खुशी उधर भी खुशी। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, प्रस्तुत करता जी को हमारा नमस्कार, आपको भी नमस्कार। ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं नीरज जी। नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है, प्रिय मित्र खुशी जी को नमस्कार, ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं गणेश प्रसाद हुजदार काठमांडू से। कहते हैं कि मेरे लिए आप कोई भी गीत सुनवा दीजिएगा, आपकी प्रस्तुति काफ़ी अच्छी रहती है, धन्यवाद सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है अजीत कसाना जी का, साथ में माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं और आदित्य कसाना जी हैं। रदावली जिला मुरादाबाद से अपना मैसेज पहुंचाते हैं, राधे राधे आपको भी, राधे राधे सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहां पर आया है मुरादाबाद से, रणवीर सिंह जी मैसेज पहुंचाते हैं, खुशी मैम गुड मॉर्निंग, कहते हैं कि उठकर देखिए सुबह का नज़ारा, उठकर देखिए सुबह का नज़ारा, धूप छाँव भी है और मौसम भी है प्यारा, सो गए चांद छुप गया तारा, कबूल कीजिए गुड मॉर्निंग हमारा। अरे वाह क्या बात है, इतने प्यार से गुड मॉर्निंग आप विश करेंगे तो कैसी खुशी एक्सेप्ट नहीं करेंगे बताइए हमें। और चांदनी फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं, सुनवाएंगे सर, बस थोड़ा सा धैर्य रखिएगा आप।
और आज पार्वती जयंती भी है, तो एक प्यारा सा गाना तो बनता है आज की सुबह माँ पार्वती और शिव जी के लिए। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं एक प्यारा सा ट्रैक, उसके बाद हम आपसे करेंगे गुफ्तगु। और भी अपडेट है जो मुझे आप तक पहुँचानी है, तो बने रहिएगा, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: आइए आप भी भागीदार बनिए, वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 से जुड़िए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
4: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

हाँ जी दोस्तों, अभी आपने ये अमेजिंग ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी पटियाला हाउस से लॉन्ग द लश्कारा। और मैंने कहा अपने दोस्तों को सुबह सुबह आज थोड़ा सा नचाते हैं। दोस्तों आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है मॉर्निंग मसाला, खुशी है आपके साथ। और दोस्तों आपको बता देते हैं कि आज कौन सा खास स्पेशल डे मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज मनाया जाता है विश्व जंक फूड दिवस। तो चलिए हेल्दी बातें कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ की बातें करना, फिटनेस का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों देखिए, बर्गर, पिज़्ज़ा, चीज़ और कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब क्या होते हैं ना, स्वाद भले ही कुछ मिनटों की खुशी दे, लेकिन अगर इन्हें रोज़ की आदत बना लिया जाए ना, तो ये हमारी सेहत पर बुरा असर डाल सकते हैं। इसीलिए जैसे दोस्तों मोटापा, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और दिल से जुड़ी कई समस्याओं का खतरा भी बढ़ सकता है। तो क्यों ना आज छोटा सा संकल्प लें, स्वाद के साथ साथ सेहत को भी उतनी ही अहमियत देंगे आप। एंड आजकल के मैंने देखा है यूथ को, आजकल की जो जेंजी है वो ज़्यादा जंक फूड की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, एंड तभी इतनी सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जंक फूड खाइए, मना नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी खाने में ठीक है। अगर आप रेगुलर उसको अपनी डाइट में ले रहे हैं तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। दोस्तों आप डाइट में ताज़े फल, हरी सब्जियां, दालें, सैलड, दही, नारियल पानी और घर का बना पौष्टिक भोजन शामिल करें। याद रखिए दोस्तों, हेल्दी फूड इज़ द बेस्ट फर्स्ट फूड। ओके, तो आज का एक मेरा सवाल भी है, बड़ा इंटरेस्टिंग था, इसी से जुड़ा हुआ। मैंने कहा कि आज विश्व जंक फूड दिवस है, तो अपने दोस्तों से बात कर लेते हैं, उनसे हम जानते हैं। आज दोस्तों आपको हरी सब्जियों में कौन सी सब्जी सबसे ज़्यादा पसंद है? हाँ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ना बड़े नखरे होते हैं हरी सब्जियाँ खाने में, लेकिन आज तो पता चल ही जाएगा हमारे श्रोताओं से कि उनको कौन सी हरी सब्जी सबसे ज़्यादा पसंद है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि आपको हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा कौन सी सब्जी आपको पसंद है, आपकी फेवरेट है, बताइए। पालक, मेथी, लौकी, तुरई, भिंडी या फिर कोई और, अपना जवाब हमें बताइए। ओह हो, इतना कंफ्यूज मत होइए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने पूछा है, और सबके घर में यही पूछा जाता है ना एवरी मॉर्निंग नाश्ता करने के बाद कि आज खाने में क्या बनेगा। तो मुझे बताइए कि आपको हरी सब्जी में कौन सी ग्रीन सब्जी आपकी फेवरेट है, ग्रीन वेजिटेबल्स बताइए जो आपकी फेवरेट है, जो आप बड़े शौक से खाते हैं। जब तक आप अपने जवाब पहुंचाते हैं, तब तक हम और भी संदेशों को यहाँ शामिल कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है ललिता कश्यप जी का, नवीन नगर मुरादाबाद से। कहती हैं गुड मॉर्निंग आरजी खुशी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको मैम। कहते हैं कि मैम नाश्ता कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच मैम, मैं सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके आती हूँ। कहती हैं कि कल की पार्टी बहुत ही अच्छी हुई आपकी। हाँ जी मैम, बहुत ही अच्छे से हमने सेलिब्रेट किया, एंड आप सबका प्यार, ब्लेसिंग्स हमें मिली, और भी ज़्यादा कल का दिन स्पेशल हो गया था, और ये ब्लेसिंग्स, ये प्यार ऑलवेज हमारे साथ रहेगा। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है नैमूल अकरम जी का, सिरसवा दोराहा से। कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी जी, कैसे हाल है आपके? बहुत बढ़िया है हम, बताइए सर आप कैसे हैं? उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास आया है सोनू कुमार जी का, सेक्टर 10 बुद्धि बिहार से। आरजी खुशी जी गुड मॉर्निंग, आपका शो बहुत ही अच्छा लग रहा है, थैंक यू जी। तो दोस्तों आप भी मुझे बताइए कि आपको ग्रीन वेजिटेबल्स में से कौन सी सबसे ज़्यादा पसंद है, कौन सी आपकी फेवरेट है, ग्रीन वेजिटेबल्स बताइए बताइए, इतना सोचिए मत, जल्दी से बताइएगा।

0: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
0: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद
0: से संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।
3: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
4: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
5: कोई मिल गया,
6: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
7: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है RJ खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद RJ खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने बहुत ही अमेजिंग ट्रैक सुना, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। और इस ब्यूटीफुल ट्रैक की रिक्वेस्ट हमें भेजी थी विकी सागर जी ने। तो चलिए दोस्तों, अब जरा ग्रीन टॉक हो जाए। बताइए, हरी सब्जियों में से आपकी सबसे फेवरेट कौन सी सब्जी है? पालक, मेथी, लौकी, भिंडी, तुरई या फिर कोई और? और हाँ, सिर्फ नाम ही नहीं बताना है आपको, आपको बताना है कि वो सब्जी आपको क्यों पसंद है, उसके स्वाद की वजह से या फिर सेहत की वजह से। जल्दी से अपने जवाब हमें पहुँचाइएगा, हम भी तो जाने हमारे श्रोताओं की कौन कौन सी ग्रीन सब्जियां फेवरेट हैं। हमारी फीमेल्स तो अच्छे से बता पाएंगी क्योंकि वो कुकिंग करती हैं और वो सब्जियां बनाती भी हैं। तो जल्दी से अपने मैसेज में पहुंचाइएगा। और हमारे पास यहाँ पर बड़ा ही खूबसूरत सा मैसेज आया है रितिका का। ये कहती हैं कि मैम गुड मॉर्निंग, और कहती हैं कि मुझे ग्रीन सब्जियां बहुत पसंद हैं। कहती हैं कि रितिका कहती हैं, खुशी मैम मैं मुरादाबाद से बात कर रही हूँ, और मुझे हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा पसंद है पालक पनीर, मम्मी के हाथ का बहुत टेस्टी लगता है, माय ऑल टाइम फेवरेट, स्वाद भी कमाल का है और सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छा है। वैसे रितिका, पालक पनीर ना मेरे को भी बहुत पसंद है। एंड मुझे पसंद है माय बिग ब्रदर के हाथ का, क्योंकि बड़े भैया बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं और वो खाना भी बहुत टेस्टी बनाते हैं। तो जब भी वो पालक पनीर बनाते हैं ना, तो मैं सबसे ज़्यादा खाती हूँ अपनी फैमिली में। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है दीपशिका का, और साथ में पूजा भी हैं। कहती हैं, हेलो मैम कैसे हैं आप? मैं बहुत ही अच्छी हूँ। और ये कहते हैं कि आपकी आवाज़ बहुत प्यारी लगती है, जब आप मुस्कुराकर सबसे बातें करती हैं ना, तो हमारे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। थैंक यू सो मच पूजा। कहती हैं कि मुझे भिंडी सबसे ज़्यादा पसंद है, अगर कुरकुरी भिंडी बन जाए तो मैं दो रोटी से ज़्यादा खा लेती हूँ। हरी सब्जी में मेरी पहली पसंद हमेशा भिंडी ही रहेगी। ओके, तो दोस्तों आप क्यों पीछे हैं, जल्दी से मुझे बताओ आपकी ग्रीन सब्जी कौन सी पसंद है। जी हाँ, ग्रीन वेजिटेबल्स में बताइए कौन सी आपकी फेवरेट है, हमसे मत छुपाइए। और हमारे पास कुछ और भी मैसेज आए हैं यहाँ पर, एंड ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं बबली अनजान, गीता कश्यप, साथ में इनकी फैमिली भी हैं, लक्ष्मी कश्यप जी हैं, संतोष कश्यप जी हैं। गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास आया है बीजना मुरादाबाद से, राजवीर सिंह जी हमें मैसेज भेजते हैं, साथ में कुणाल यादव हैं, हर्ष यादव हैं, मनीष यादव हैं, अंशिका यादव हैं और भी इनके फ्रेंड्स हैं, सभी के साथ ये हमें गुड मॉर्निंग विश करते हैं, थैंक यू। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है महाराष्ट्र से बबलू सैनी जी का। कह रहे हैं, खुशी जी कैसे हाल है आपके? बहुत ही अच्छे हैं हम सब। तो चलिए जल्दी से अपने मैसेज हमें पहुंचाइएगा दोस्तों, हमें इंतज़ार है। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है उमेश कुमार प्रजापति जी का। कहते हैं, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। कहते हैं, मैम हमें हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा पसंद है आलू गोभी की सब्जी, बहुत अच्छी लगती है। अरे वाह, क्या बात है, आलू गोभी की सब्जी, हाँ बहुत अच्छी लगती है। एंड मिक्स वेज भी बहुत पसंद आती है मेरे को, उसमें बहुत सारी सब्जियाँ होती हैं। ज़्यादा खाना पीने की बातें कर रहे हैं ना हम, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस समय ना बहुत सारी जो हमारी फीमेल्स हैं वो खाना बनाने की तैयारी कर रही हैं, तो हम सोच रहे हैं थोड़ी सी उनकी भी हेल्प हो जाए। क्यों एवरीवन, शायद उनको यहाँ से कोई आइडिया मिल जाए।

0: Book your package now and get your visa instantly.
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा. चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर. चार योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री. साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है. ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट. विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद. कॉल नाउ 9412211111.
2: कोई मिल गया.
3: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6. ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने. बातें होती हैं दिल से दिल तक. यादों का सितारा, गीतों का सहारा. मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा. सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो. बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए.

हेलो दोस्तों, आपने अमेजिंग ट्रैक सुनाई पंजाबी गाना और खुशी फिर से हाजिर हो गई है आप सभी का फेवरेट शो लेकर मॉर्निंग मसाला। वक्त हुआ है 11:44 और दोस्तों हमारे पास यहाँ पर खूबसूरत मैसेज आ रहे हैं। हमारे श्रोता बोल रहे हैं कि खुशी जी, हमें मालूम नहीं था कि कल आपको बर्थडे था, हमने बाद में पता चला, तो आपको हैप्पी बर्थडे बर्थडे, थैंक यू सो मच। एंड हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है ऋषि अरोड़ा जी का चंदौशी से, कहते हैं आरजी खुशी जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच ऋषि भैया। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास राधिका का आया है, कहती हैं गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी डियर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है राशिद नाजिका और इन्होंने बस अपना नाम लिखा है, उसके अलावा कुछ नहीं भेजा है। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का, साथ में शहीद शारिक अली जी हैं, महराज अंसारी जी हैं और बाबू अंसारी जी हैं, कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी जी, कैसी हैं आप, आपका शो मॉर्निंग मसाला बहुत ही अच्छा लग रहा है, गाने भी बहुत प्यारे प्ले कर रही हैं आप। कहते हैं कि कल आपका शो लेट में सुनना शुरू किया था, थोड़ा बिजी होने की वजह से, तब पता चला कि आपका बर्थडे है। हमने ही कहा कि ललिता कश्यप जी का फोन भी आया था, जब तक मैंने आपको मैसेज लिखा जन्मदिन की मुबारक देने के लिए, तब तक आपका शो कंप्लीट हो चुका था। एंड आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो, आप हमेशा ऐसे ही खुश रहें, सदा मुस्कुराती रहें, इसी तरह से हम सब के लिए अच्छे अंदाज में प्रोग्राम पेश करती रहें, बहुत बहुत शुक्रिया सर। एंड हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज भी आए हैं और ये हमारी टेक्स्ट मैसेज वाली सखियाँ क्या पहुँचाती हैं, ज़रा पढ़ लेते हैं उनकी दिल की बातें भी। यहाँ पर अमरोहा से नेहा जी ने मैसेज हमें पहुँचाया है, कहती हैं खुशी मैम कैसी हैं आप, मैं बहुत ही अच्छी हूँ नेहा जी। और इन्होंने भी एक प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये मैसेज हमें पहुँचाती हैं, फूल खिलते रहें जिंदगी की राहों में, हंसी चमकती रहे आपकी निगाहों में, कदम कदम पे मिले खुशी की बहार आपको, यही दिल देता है दुआ बार बार आपको, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक, आपको बहुत मुबारक हो, हमेशा आप खुश रहें। एंड मुझे एक सॉन्ग सुनना है मैम, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, आपको क्या गिफ्ट चाहिए। ओहो अफरोज, थैंक यू सो मच यार, गिफ्ट की कोई नीड नहीं है, आपने इतना प्यारा सा मैसेज हमें पहुंचा है ना, ये हमारे लिए सबसे अनमोल गिफ्ट है। ओके और ये कहती है कि आपने मैम मालूम किया है कि आपकी हरी सब्जियां कौन कौन सी फेवरेट हैं, तो मैं बताना चाहूँगी पालक और फूल गोभी की सब्जी मुझे बहुत पसंद है। और कहती हैं कि मेरे बड़े भाई का फेवरेट भी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू अफरोज, आपने अपने मैसेज हमें पहुँचाया है। और सच में आपकी शायरी बहुत प्यारी थी, एकदम ना हमारे दिल को टच करके गई है, तो उसके लिए शुक्रिया आपका। एंड नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर किसका आया है, ये मैसेज हमें पहुँचाती हैं प्राची पीतल नगरी से, कहती हैं हेलो मैम कैसे हैं आप, मैं बहुत अच्छी हूँ यार, इतने प्यार से हालचाल पूछोगे ना तो जो इंसान ठीक ना हो ना वो भी ठीक हो जाएगा, वैसे मैं हमेशा खुश रहती हूँ और अपने दोस्तों को भी खुश रखने का प्रयास करती हूँ। तो चलिए एक सुनते हैं अमेजिंग ट्रैक, उसके बाद फिर से लौट कर आते हैं, आप कहीं मजा आएगा, यूं ही मुस्कुराइए।

0: थैंक यू सो मच अफरोज, आपने इतने प्यारे गाने को हमें डेडिकेट किया। जन्मदिन पर इतना खूबसूरत गीत आपने हमें डेडिकेट किया, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। ढेर सारी दुआएं, एंड सच कहूँ इससे प्यारा बर्थडे गिफ्ट मेरे लिए और क्या हो सकता है। आपका ये प्यार, आपकी दुआएं और आपका अपनापन मेरे दिल को छू गया। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे और आपकी हर इच्छा पूरी करें और आप यूं ही मुस्कुराती रहें, खिलखिलाती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। मेरा दिल सच में, मेरा दिल और मेरा दिन दोनों खूबसूरत हो गए हैं, दोनों आज एकदम चमकने लगे हैं, शाइन कर रहे हैं। और हमारे पास कुछ वॉइस नोट भी आए हैं तो मैं उसको भी प्ले कर लेती हूँ जल्दी से कि सर ने क्या पहुँचाया है आज की सुबह।
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं ये चेक करना चाह रहा था कि मेरा मैसेज आता है तो फिर मैं वॉइस मैसेज करूँ आपको। कल मैंने आपका शो सुना था, कल आपने बताया था, लोगों ने बल्कि बताया था कि आपकी वर्सिटी है और बहुत बहुत मुबारक हो आपको इस चीज़ की, ताकि मुझे भी पता देर में चला है और आज मैंने वॉइस मैसेज करके आपको कहा है। ओके बाय। ये मैंने मैसेज भेजा है, वॉइस मैसेज, पाकिस्तान कराची से राशिदास साहब ने।
0: तो ये विश हमें आई है पाकिस्तान से, सर ने भेजा है अपना वॉइस नोट। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड उसके अलावा कुछ और भी यहाँ पर मैसेज आए हैं और ये मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है रूपाली का, कहती हैं हाय मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग डियर। कहती हैं कि आपकी सॉन्ग सिलेक्शन बहुत ही अच्छा होता है, थैंक यू। बट इस ये सारा क्रेडिट मेरे को नहीं जाता है, हमारे श्रोताओं को भी जाता है क्योंकि उनकी भी बड़ी प्यारी प्यारी रिक्वेस्ट यहाँ पर होती हैं। तो दोस्तों अभी मेरे जाने का वक्त हो गया है, लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, खुशी फिर से वापस आने वाली है। सी यू सून एवरीवन, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मिलेंगे आपसे 3 से 5 बहुत सारी अपडेट के साथ और आपकी प्यारी प्यारी फरमाइशों के साथ। और हमारे पास एक मैसेज और आया है यहाँ पर, खुशी जी को इन्होंने क्या कहा है, अच्छा खुशी जी को हम क्या खुशी दें, खुशी जिंदगी, इतनी खुशी आपकी ज़िंदगी में, इतनी खुशियाँ आए कि दिन भी कम पड़ जाए। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया। आकाश चौधरी जी का मैसेज हमारे पास आया है मुरादाबाद से, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना प्यारा ब्लेसिंग्सफुल मैसेज आपने मुझे भेजा है और मैं ज़रूर अपने बर्थडे, आपने बोला है कि अपने जन्मदिन के लिए आप अपने पसंद का कोई भी ट्रैक प्ले कर दीजिएगा, तो श्योर सर ये तो कमांड मेरे हाथ में है। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। तो दोस्तों मुलाकात करते हैं 3 से 5, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।

0: जो भारत ने कई देशों के साथ किए हैं। मंगल मिलन नाम से आयोजित बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन चलाने में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बात की। उन्होंने नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना के बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री तमांग ने बताया कि प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने राज्य के प्रति प्रधानमंत्री के अटूट समर्थन, गहरी चिंता और मजबूत एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त किया। इस बीच सिक्किम में एनएचपीसी तिस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अब तक 9 शव बरामद किए जा चुके हैं। सुरंग के अंदर करीब 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्योडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय आतंकवादी संगठन आईएसआई के भर्ती मामले में बंगलुरु में 8 परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रवर्तन एजेंसी ने कहा कि आरोप पत्र से पता चला है कि आरोपी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन से जुड़े थे और बंगलौर के भोले भाले युवाओं को आईएसआईएस में शामिल होने के लिए प्रेरित कर कट्टरपंथी बना रहे थे। भारतीय शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर के सत्र में 0.3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स 289 अंक गिरकर 77,420 पर और निफ्टी 72 अंक गिरकर 24,167 पर पहुंच गया। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू हो गई है। इस समय महिला सिंगल्स के पहले दौर में भारत की देविका सिहाग और पुरुष सिंगल्स में SS प्रणय अपने अपने मुकाबले खेल रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
2: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
2: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
3: मुरादाबाद
1: से संपर्क कीजिए।
2: नियम और शर्तें लागू।

बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर। चार योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीज एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: रेडियो सुन रहे सभी श्रोताओं को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। पिछले कार्यक्रम के बाद जिस तरह लोगों ने सवाल पूछे हैं उससे पता चलता है कि अब लोग टीवी को लेकर खुलकर बात करना चाहते हैं और यही बदलाव सबसे जरूरी है, क्योंकि साथियों टीवी की लड़ाई सिर्फ अस्पताल में नहीं जीती जाती, यह लड़ाई घरों में, परिवारों में, गाँव में और समाज के भीतर जीती जाती है। जितनी जल्दी लोग बीमारी को समझेंगे उतनी ही जल्दी लोग जाँच कराएंगे और जितनी जल्दी जाँच कराएंगे ही जल्दी इलाज शुरू होगा।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन भैया आज की शुरुआत में एक ऐसा सवाल से करना चाहती हूँ जो शायद हजारों लोगों के मन में होता है। अगर किसी व्यक्ति की जांच में टीवी निकल आती है उसके मन में क्या चाह है? कई लोग घबरा जाते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि अब जिंदगी खत्म हो गई, कुछ लोगों को लगता है कि टीवी का मतलब मौत है, क्या वकाई ऐसा है?
0: बिल्कुल नहीं आरजी रीना, मैं बताना चाहूँगा कि आज पूरे कार्यक्रम में सबसे पहला संदेश यही है कि टीवी का इलाज संभव है, टीवी पूरी तरह ठीक हो सकती है। आज भारत में लाखों लोग टीवी से पूरी तरह ठीक होकर सामान्य जीवन जी रहे हैं। समस्या बीमारी नहीं, समस्या है बीमारी को छिपाना, समस्या है जांच में देर करना और समस्या है दवा बीच में छोड़ देना। अगर मरीज समय पर इलाज शुरू करे और डॉक्टर की सलाह के अनुसार पूरा कोर्स करे तो अधिकांश मामलों में टीवी ठीक हो जाती है।
1: लेकिन भैया कई बार लोग इलाज शुरू कर तो देते हैं फिर बीच में छोड़ देते हैं, और मुझे याद आ रही है कि एक घटना जो शायद हमारे श्रोताओं के लिए भी सीख बन सकती है।
0: हाँ बिल्कुल आर्जेरीना, ऐसा भी हो सकता है, एक सच्ची घटना सुनाना चाहता था। कुछ साल पहले पास वाले एक कस्बे में राम बाबू नाम के एक व्यक्ति रहते थे, उम्र लगभग 50 साल, रिक्शा चलाकर परिवार का गुजारा करते थे, मेहनती आदमी था, लेकिन उन्हें शराब की लत लगी थी। सुबह काम, शाम को शराब, धीरे धीरे उन्हें खांसी रहने लगी। पहले उन्होंने ध्यान नहीं दिया, फिर वजन कम होने लगा, शाम को बुखार आने लगा, रात में पसीना आता। लोग कहते जांच करा लो, लेकिन वह हंसकर टाल देता, कहता है अरे कुछ नहीं होगा, 2 दिन आराम कर लूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। करीब 2 महीने बाद हालात बिगड़ गए, जब अस्पताल में पहुँचे जाँच हुई तो टीबी निकली, डॉक्टर ने दवाई शुरू कराई, 6 हफ्तों में उन्हें राहत महसूस होने लगी, खांसी कम हुई, बुखार कम हुआ, ताकत लौटने लगी। लेकिन उन्होंने यही सबसे बड़ी गलती कर दी थी, उन्होंने सोचा अभी तो मैं ठीक हो गया हूँ, दवा लेना बीच में ही बंद कर दिया, फिर कभी लेते कभी नहीं लेते और शराब नहीं छोड़ी, फॉलो अप जांच भी नहीं कराई और ना ही वो जांच कराने गए,
1: यानी बीमारी अंदर ही अंदर बनी रही।
0: बिल्कुल, और कुछ ही महीनों बाद पहले से ज्यादा गंभीर रूप के साथ वापस लौट आई ये बीमारी। दोबारा जांच हुई और इस बार पता चला कि उन्हें दवा प्रतिरोधक टीवी यानी MDR टीवी हो गया है। अब इलाज ज्यादा कठिन था, दवाइयाँ बदलनी पड़ी, अस्पताल के चक्कर लगाए गए, कमाई रुक गई, परिवार परेशान हो गया और दुर्भाग्य से क्योंकि उन्होंने बहुत देर कर दी थी और इसका इलाज को गंभीरता से नहीं लिया था, उनकी हालात लगातार बिगड़ती गई और कुछ ही समय बाद उनका निधन हो गया।
1: बहुत दुखद कहानी है, लेकिन इससे एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि टीबी से मौत केवल बीमारी की वजह से नहीं होती, कई बार इलाज अधूरा छोड़ने की वजह से भी होती है।
0: बिल्कुल आरजी रीना, और इसीलिए मैं श्रोता से कहना चाहता हूँ कि दवा शुरू करना महत्वपूर्ण है, लेकिन दवा पूरी करना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। टीबी का इलाज का कोई दर्द की गोली नहीं है कि 2 दिन में खाई और छोड़ दी, यह एक पूरा उपचार है, जितनी अवधि डॉक्टर ने बताई है उतनी अवधि तक जो है लेनी होगी ये दवा, तभी बीमारी जड़ से खत्म होगी।
1: तो भैया अब जरा विस्तार से समझाइए, जब किसी व्यक्ति में टीबी की पुष्टि हो जाती है तो इलाज कैसे शुरू होता है? क्या हर महीने मरीज को एक जैसी दवा मिलती है या क्या इलाज महंगा होता है और सरकार इसमें क्या मदद?
0: बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आर्चेरीना, सबसे पहले श्रोताओं को यह जान लेना चाहिए कि भारत सरकार के राष्ट्रीय टीवी उन्मूलन कार्यक्रम यानी कि NTEP के तहत टीवी की जांच और इलाज पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध है। सरकारी अस्पतालों में, स्वास्थ्य केंद्रों पर और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से मरीजों को न सिर्फ दवाई दी जाती है बल्कि इलाज के दौरान लगातार निगरानी और सहायता भी दी जाती है। इलाज का तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि मरीज को सामान्य टीवी है या दवा प्रतिरोधक टीवी, और आगे की चर्चा हम इन्हीं दोनों प्रकार पर विस्तार से समझेंगे। खांसी रहे 2 हफ्तों से पार, जांच कराना है समझदार, टीवी हारेगी हम जीतेंगे, इलाज पूरा करके ही रुकेंगे।
1: स्वागत है साथियों, ब्रेक से पहले हमने जाना कि टीबी का इलाज संभव है, लेकिन इलाज को बीच में छोड़ देना कितना खतरनाक हो सकता है। हमने राम बाबू की कहानी भी सुनी जिसने लापरवाही की और बीमारी को गंभीर बना लिया। अब सवाल यह है कि जब किसी व्यक्ति में टीबी की पुष्टि होती है तो उसका इलाज आखिर होता कैसे है? सेहतिया भैया, सबसे पहले हमें सामान्य टीबी के इलाज के बारे में बताइए।
0: बिल्कुल आरजी रीना जी, सबसे पहले मैं सभी श्रोताओं को एक अच्छी खबर देना चाहता हूँ। अगर किसी व्यक्ति को सामान्य टीबी या टीबी यानी दवा के प्रति संवेदनशील टीबी है तो उसका इलाज पूरी तरह सफल है और सरकार यह इलाज मुफ्त में उपलब्ध कराती है। जाँच में टीबी की पुष्टि होने के बाद डॉक्टर मरीज के वजन और स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार दवाइयाँ शुरू करते हैं। ये दवाइयाँ एक नहीं बल्कि कई दवाइयों का मिश्रण होती है जिन्हें फिक्स डोज कॉम्बिनेशन या सुनिश्चित खुराक संयोजन कहा जाता है।
1: मतलब एक गोली में कई दवाओं का असर।
0: बिल्कुल आरजी रीना, इससे मरीज के लिए दवा लेना आसान हो जाता है और इलाज अधिक प्रभावी बनता है। लेकिन यह एक बात समझना बहुत जरूरी है कि कई मरीज दवा शुरू करने से कुछ ही हफ्तों के बाद बेहतर महसूस करने लगते हैं, खांसी कम हो जाती है, बुखार उतर जाता है और वजन फिर से बढ़ने लगता है और ताकत लौटने लगती है, और यही सबसे बड़ा खतरा शुरू होता है। कई लोग सोचते हैं कि अब बीमारी खत्म हो गई है इसीलिए दवा देना खुद को वो बंद कर देते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि लक्षण कम होने का मतलब ये नहीं है कि शरीर के सारे कीटाणु खत्म हो गए हैं। अगर दवा बीच में ही छोड़ दी गई तो कीटाणु बच सकते हैं और यही बचे हुए कीटाणु बाद में फिर सक्रिय होकर बीमारी को वापस ले आ सकते हैं।
1: यानी मरीज को अच्छा महसूस हो रहा हो तब भी दवा जारी रखनी चाहिए।
0: बिल्कुल आरजी रीना, टीबी का इलाज डॉक्टर द्वारा बताई गई पूरी अवधि तक ही लेना जरूरी है। कोई भी दवा अपनी मर्जी से बंद नहीं करनी चाहिए। साथियों, सिर्फ दवा लेना ही काफी नहीं है, मरीजों को समय समय पर फॉलोअप जांच भी जरूर करानी चाहिए। कई बार डॉक्टर मलगम की जांच या दूसरी जांच कराते हैं ताकि यह पता चल सके कि इलाज सही दिशा में किया जा रहा है या नहीं।
1: मतलब इलाज सिर्फ गोली खाने का नाम नहीं बल्कि नियमित निगरानी भी उसका हिस्सा है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने आरजी रीना।
1: भैया, पिछले कार्यक्रम में हमने बच्चों में टीबी की भी बात, क्या बच्चों का इलाज अलग होता है?
0: हाँ, बच्चों को विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। बच्चों में टीबी के लक्षण कई बार बड़े लोगों जैसे स्पष्ट नहीं होते। कभी सिर्फ वजन नहीं बढ़ता, कभी भूख कम लगती है और कभी लंबे समय तक बुखार रहता है। इसलिए यदि किसी बच्चे को लंबे समय से खांसी है, बुखार है, वजन घटे या फिर घर में किसी को टीबी के मरीज संपर्क का इतिहास हो तो उसकी जाँच कराना जरूरी है। बच्चे का इलाज भी मुफ्त उपलब्ध है लेकिन दवाओं की मात्रा उनके वजन के अनुसार तय की जाती है और माता पिता से मैं कहना चाहूँगा कि बच्चा थोड़ा ठीक दिखने लगे तब भी दवा बिल्कुल बंद ना करें। पूरा कोर्स करने के बाद ही आप बच्चे की दवा बंद कराएं। और जरूरी बात, जितना जरूरी बड़ों में है उतना ही जरूरी छोटे बच्चों का भी ध्यान रखना जरूरी है।
1: साथियों, एक बात जो बार बार सामने आ रही है वह है इलाज को पूरा कराना, लेकिन कई बार मरीज आर्थिक तंगी, कमजोरी या पोषण की कमी के कारण इलाज जारी नहीं रख पाते। क्या सरकार इस दिशा में भी काम करती है?
0: हाँ, सरकार यह समझाती है कि टीबी केवल दवा की बीमारी नहीं है, यह पोषण, आर्थिक स्थिति और समाज सहयोग से भी जुड़ी है। इसीलिए सरकार ने निश्चय पोषण योजना शुरू की है। इसके तहत टीबी मरीजों को पोषण से संबंधित सहायता के लिए आर्थिक सहयोग दिया जाता है ताकि वे इसके दौरान बेहतर भोजन ले सकें, क्योंकि टीबी और कुपोषण का रिश्ता बहुत गहरा है। अगर शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता तो बीमारियों से लड़ना और स्वस्थ होना दोनों ही मुश्किल हो जाता है।
1: और निक्षय मित्र क्या होता है, इसका नाम भी लोग काफी सुनते हैं?
0: निश्चय मित्र वास्तव में एक बहुत ही अच्छी पहल है। इससे समाज के लोगों की समस्याएं स्वयं सेवा संगठन, स्कूल, कॉलेज या उद्योग या कोई इच्छुक व्यक्ति टीबी के मरीज की सहायता कर सकता है। कोई पोषण किट दे सकता है, कोई राशन उपलब्ध करा सकता है और कोई भावनात्मक सहायता दे सकता है। इसका उद्देश्य यह है और संदेश देना है कि टीबी के मरीज अकेले नहीं है, पूरा समाज उनके साथ खड़ा है।
1: बहुत महत्वपूर्ण बात। अब मैं आज के सबसे गंभीर विषय पर आना चाहती हूँ। और निक्षय साथी?
0: निक्षय साथी आमतौर पर परिवार का जिम्मेदार सदस्य है है या देखभाल करने वाला व्यक्ति होता है। वह मरीज को समय पर दवा देने और उसको याद दिलाने में हेल्प करता है, डॉक्टर के पास जाने में मदद करता है, किसी परेशान या दुष्प्रभाव पर स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क कराता है और इलाज पूरा करवाने में सहयोग करता है। कई बार एक जिम्मेदार निश्चय साथी मरीज को दवा छोड़ने से बचा सकता है।
1: बहुत महत्वपूर्ण बात। अब मैं आज के सबसे गंभीर विषय पर बात करना चाहूंगी, MDR TB। लोग इसका नाम सुनते ही डर जाते हैं, आखिर यह क्या होता है?
0: MDR TV यानी TV सरल भाषा में कहे तो ऐसी TV जिसमें सामान्य दवाएं प्रभावी नहीं रह जाती। यह अक्सर तब होता है जब मरीज दवाइयां बीच में छोड़ देता है, नियमित रूप से दवा नहीं लेता है या इलाज को सही तरीके से पूरा नहीं करता है। राम बाबू की कहानी इसका उदाहरण थी। जब टीवी के कीटाणु बार बार अधूरे इलाज झेलते हैं तो वे कुछ दवाओं के खिलाफ प्रतिरोधक विकसित कर लेते हैं और फिर सामान्य इलाज कम नहीं करते।
1: सुनकर डर लगता है, क्या MDR TV का इलाज संभव है?
0: बिल्कुल आर्जेरीना संभव है। यह संदेश लोगों तक पहुंचना चाहिए कि पहले MDR TV यानी टीवी का इलाज लंबा और कठिन माना जाता है, लेकिन अब भारत में काफी प्रगति की है। आज कई पात्र मरीजों के लिए VPALM नामक आधुनिक उपचार पद्धति उपलब्ध कराता है। इसमें वेटाविग्लिन, प्रोटोमैनिड, लाइनजोलिड और मोक्सीफ्लोसासिन जैसी दवाइयों का उपयोग किया जाता है। यह पहले की तुलना में अधिक प्रभावी और कई मामलों में क्रम छोटा उपचार विकल्प साबित हो रहे हैं, लेकिन यह निर्णय डॉक्टर की जांच रिपोर्ट और दवा प्रतिरोधक की स्थिति देखकर लेते हैं।
1: मतलब मरीज खुद फैसला नहीं करेगा कि कौन सी दवा लेनी है?
0: बिल्कुल नहीं। MDR TV का इलाज विशेषज्ञ डॉक्टर की निगरानी में ही होना चाहिए, लेकिन इसके लिए विशेष जांच की जाती है और मॉलिक्यूलर टेस्ट और दवा प्रतिरोधक जांच, इन रिपोर्ट के आधार पर सही दवा का चयन किया जाता है।
1: भैया, क्या कुछ दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं भी टीवी के इलाज को प्रभावित करती हैं?
0: बहुत ज्यादा। उदाहरण के तौर के लिए मधुमेह, पान, डायबिटीज। यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज और टीवी दोनों है तो दोनों का इलाज साथ साथ कराना जरूरी है। अनियंत्रण शुगर टीवी को गंभीर बना सकती है। इसी तरह HIV से प्रभावित लोगों में टीवी का खतरा अधिक होता है, इसीलिए दोनों सेवाओं को जोड़कर देखा जाता है। तंबाकू और धूम्रपान फेफड़ों को कमजोर करते हैं और स्वस्थ होने की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं। और शराब
1: की बात तो राम बाबू की कहानी में भी सामने आई थी।
0: बिल्कुल, अत्यधिक शराब न केवल शरीर को कमजोर करती है बल्कि दवा नियमित लेने की आदत को भी प्रभावित करती है। कई मरीज नशे की वजह से दवा भूल जाते हैं या इलाज छोड़ देते हैं।
1: अगर घर में किसी एक व्यक्ति को टीबी हो जाए तो बाकी परिवार को करना चाहिए?
0: सबसे पहले घबराने की जरूरत नहीं है आर्जेरीना। दूसरों की बात परिवार के सदस्यों की स्क्रीनिंग करानी चाहिए, विशेषकर बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों को जरूर, क्योंकि कई बार बीमारी शुरुआती चरण में कोई लक्षण नहीं दिखाती। सरकार निकट संपर्क में रहने वाले लोगों के लिए टीबी प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट यानी रोकथाम संबंधित उपचार भी उपलब्ध कराती है ताकि बीमारी सक्रिय होने से पहले रोकी जा सके।
1: और घर में संक्रमण रोकने के लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए?
0: सबसे पहले तो घबराने की जरूरत नहीं है, ती आसान बात है। कमरे में हवा आने जाने दें, खिड़कियों और दरवाजे को खुला रखें, खांसते या छींकते वक्त रुमाल का इस्तेमाल करें, कपड़ा या कोहनी का उपयोग करें और साथ ही खुले में थूकने से बचें और डॉक्टर की सलाह का पालन करें। इन छोटे छोटे कदमों से परिवार के बाकी सदस्य भी को भी सुरक्षा की मदद मिलती है।
1: सेहतिया भैया, आज की पूरी चर्चा को अगर कुछ महत्वपूर्ण संदेश में समेटना हो तो आप क्या कहेंगे?
0: श्रोताओं, आठवीं बात याद रखना आग्रह करना चाहूँगा। पहला, टीवी की पूरी तरह ठीक हो सकती है। दूसरी, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में जांच और इलाज मुफ्त है। तीसरी बात, दवा कभी भी बीच में ना छोड़ें। और चौथी बात, फॉलोअप जांच और डॉक्टर की सलाह का पालन करें। पांचवी बात, पोषण और आराम और परिवार को सहयोग दें और साथ ही साथ इलाज का महत्वपूर्ण इच्छा बने। छठी बात, MDR TV उपचार योग्य इसलिए निराश ना हो, साथ ही परिवार के सदस्यों की स्क्रीनिंग कराएं। और आठवीं, टीवी मरीजों से भेदभाव नहीं, उनका सहयोग करें।
1: बहुत सुंदर संदेश। साथियों, याद रखिए, टीवी कोई अभिशाप नहीं, एक बीमारी है और बीमारी का इलाज होता है। समय पर जांच, नियमित दवा, अच्छा पोषण और परिवार सहयोग, यही स्वस्थ होने का रास्ता है। आइए, कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हम लेते हैं सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे, दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। दवा न छोड़े बीच सफर में छुपी है पूरे असर में। पोषण सहयोग उपचार सही टीवी हारेगी जीतेंगे सभी।
1: क्या बात है श्रोताओं, इसी के साथ लेते हैं हमें यहाँ से जाने की इजाजत। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में।

0: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIGG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIGG करो, स्वच्छता की जिद करो।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभकारी और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। श्रोताओं कहते हैं कि बच्चे की पहली नींव उसके शुरुआती 2 साल में पड़ती है। इसी दौरान बच्चे का शरीर और दिमाग तेजी से बढ़ता है। अगर इस समय सही पोषण मिले तो बच्चों का भविष्य मजबूत बन सकता है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि लोग समझ पाते कि बच्चे को कब क्या और कितनी मात्रा में खिलाना चाहिए। बस यही उलझन दूर करने के लिए आज हमारे साथ हैं टीकन भाभी। भाभी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो सेहत सही लाभकारी में। भाभी, जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो परिवार के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होता है, अब बच्चे को क्या खिलाएं और कितना खिलाएं। बहुत लोग तो यह सोचते हैं कि दूध ही काफी है, असल में सही तरीका क्या है?
1: देखिए, जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है उसी समय से उसे माँ के दूध के साथ साथ ऊपर का खाना भी देना शुरू कर देना चाहिए। इसे ही हम ऊपरी आहार कहते हैं और ये सिलसिला लगभग 2 साल की उम्र तक चलता है।
0: मतलब दूध के साथ साथ अब खाना भी जरूरी ही हो जाता है?
1: हाँ बिल्कुल, बच्चा इस उम्र में तेजी से बढ़ता है, उसका शरीर मजबूत बने, दिमाग का विकास हो, इसके लिए सिर्फ दूध काफी नहीं है। अब उसे अलग अलग तरह का खाना चाहिए। दिन भर में कोशिश करें कि बच्चे को कई तरह का खाना खिलाए। जब खाने में विविधता होगी तभी बच्चे का विकास पूरी तरह से हो पाएगा।
0: अच्छा भाभी, तो बच्चे के खाने में क्या क्या देना चाहिए?
1: बच्चे के भोजन में प्रोटीन होना बहुत जरूरी है, इसके लिए दालें और अनाज सबसे पहले अच्छा विकल्प है। और जैसे ही मसूर या अरहर की दाल का पानी या बिल्कुल घुली हुई दालें, ये बच्चे को ताकत देगी और उसका शरीर स्वस्थ बनेगा। इसके साथ ही दूध और दूध से बने पदार्थ की भी बहुत अहमियत है, इससे बच्चे को कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और वसा मिलती है। या फिर मूंग दाल की बिल्कुल पतली खिचड़ी, ये सब चीजें बच्चे की हड्डियों को मजबूत करती हैं। अब सब्जियों की बात करते हैं, गहरी हरी पत्तेदार सब्जियां बच्चे को जरूरी खनिज और ताकत देती है, ये उनके स्वास्थ्य विकास के लिए आवश्यक है। हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए, सी के फोलेट, कैल्शियम, अनाज, आयरन, मैग्नीशियम जैसे कई महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व तो बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, आंखों की रोशनी बढ़ाते हैं, एनीमिया से बचने और शरीर के विकास में मदद करते हैं। अगर परिवार में अंडा और मांस खाया जाता है तो वो भी बच्चे को अंडे की जर्दी या हड्डियों का सूप दिया जा सकता है, ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। लेकिन अगर घर में मांसाहारी नहीं चलता तो कोई दिक्कत नहीं, बस दूध और दूध से बने पदार्थ की मात्रा थोड़ी बढ़ा दे। और हाँ, विटामिन ए के लिए पीले और नारंगी रंग के फल और सब्जियां बहुत जरूरी हैं, जैसे गाजर, पपीता या आम। ये बच्चे की आंखों की रोशनी और इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, इस सब को मसलकर बच्चे को दिया जा सकता है।
0: भाभी, बच्चे का खाना तो आपने साफ साफ समझा दिया, लेकिन क्या और कुछ खास बात का ध्यान रखना चाहिए?
1: बिल्कुल, सबसे पहले तो बच्चे को स्तनपान जरूर कराते रहना चाहिए, ये किसी भी हालत में बंद नहीं होना चाहिए। दूसरा, बच्चे के खाने में हर दिन थोड़ा सा घी या तेल जरूर डालना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, इससे बच्चे को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है और उसका शरीर चुस्त तंदुरुस्त रहता है।
0: भाभी, लोग ये समझ गए होंगे कि बच्चे को क्या क्या खिलाना चाहिए, लेकिन असली उलझन बची है कि कितने खिलाएं और कितनी बार खिलाएं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, ये जानना बहुत जरूरी है कि बच्चे को कितनी मात्रा में और कितनी बार खाना देना चाहिए। अगर मात्रा ही नहीं होगी तो बच्चा या तो भूखा रह जाएगा या फिर उसे खाना हजम करने में दिक्कत होगी।
0: हाँ भाभी, ये तो जरा विस्तार से समझाइए।
1: देखिए आरजे खुशी, जब बच्चा 6 से 8 महीने का होता है तो उसे आधी कटोरी खाना दिन में 2 बार देना चाहिए। ये कटोरी कोई बड़ी कटोरी नहीं बल्कि लगभग 250 ग्राम की होनी चाहिए। फिर जैसे ही बच्चा 9 से 11 महीने का हो जाए तो आधी कटोरी खाना दिन में में 3 बार देनी चाहिए। इसके साथ 1-2 बार हल्का फुल्का नाश्ता भी दे सकते हैं। जब बच्चा 12 से 23 महीने का हो जाए तब उसका खाना भी बढ़ाना पड़ता है। इस उम्र में उसे पूरी कटोरी 3 बार देनी चाहिए, साथ ही 1 से 2 बार हल्का नाश्ता भी जरूरी है।
0: सीधी बात तो ये है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसके खाने की मात्रा और बराबर खिलाने का तरीका भी बढ़ना चाहिए।
1: बच्चे का शरीर और दिमाग इसी समय तेजी से विकसित होता है। अगर माता पिता भोजन का ध्यान रखें तो बच्चा तंदुरुस्त रहेगा और उसका भविष्य भी मजबूत बनेगा।
0: भाभी, एक बात मैं अक्सर देखती हूँ, कई बार माँ बच्चे को खिलाते वक्त खुद टीवी देखने लगती हैं या मोबाइल पर बात करने लगती हैं। कुछ तो उसके खेलते समय मुँह में खाना डाल देती हैं। क्या ये तरीका सही है?
1: नहीं आरजे खुशी, ये बिल्कुल गलत है। बच्चे को खिलाते समय माँ या जो भी खिला रहा है उसका पूरा ध्यान सिर्फ बच्चे पर होना चाहिए। बच्चा छोटा है, कभी गले में अटक सकता है, कभी खाना गिर सकता है, तो ऐसे में लापरवाही भारी पड़ सकती है।
0: हाँ, ये तो सही बात है। बहुत लोग तो बच्चे को अपने खाने की थाली से ही थोड़ा थोड़ा खिलाते रहते हैं।
1: ये भी ठीक नहीं है। बढ़ते बच्चों को उसका खाना हमेशा अलग कटोरी में और चम्मच से ही देना चाहिए। इससे साफ सफाई बनी रहती है और बच्चा धीरे धीरे खाने की आदत भी सीख लेता है।
0: भाभी, एक और समस्या है कि बच्चे को खुश करने के लिए कई बार लोग जूस, चॉकलेट, चिप्स या बिस्किट दे देते हैं। सोचते हैं कि बच्चा चुप हो जाए।
1: यही तो सबसे बड़ी गलती है आरजे खुशी। ये सब चीजें बच्चे के शरीर को कोई फायदा नहीं देती बल्कि नुकसान ही पहुंचाती है। बच्चे की छोटी सी भूख अगर ऐसे चीजों से भर गई तो असली पोषण खाना वो खा ही नहीं पाएंगे। इसीलिए बच्चे को इससे दूर ही रखना चाहिए।
0: और भाभी, क्या 6 से 23 माह के बच्चे के लिए भी स्तनपान जरूरी होता है?
1: हाँ, बिल्कुल जरूरी होता है। लोग अक्सर सोच लेते हैं कि जैसे ही बच्चा ऊपर का आहार खाने लगता है तो माँ को दूध देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सही नहीं है। 6 महीने के बाद जब हम बच्चे को ऊपर का आहार देना शुरू करते हैं तब भी माँ का दूध उतना ही महत्वपूर्ण रहता है। माँ के दूध में ऐसे पोषण तत्व और एंटीबॉडी होती है जो बच्चे की सेहत को मजबूत बनाते हैं और उसे बीमारियों से बचाने की ताकत देते हैं। मतलब माँ का दूध बच्चे की रोग प्रतिरोग क्षमता बढ़ाकर उसे ठीक होने में मदद करता है।
0: भाभी, जब बच्चे की परवरिश की बात होती है तो अक्सर लोग माँ पर ही सारी जिम्मेदारियाँ डाल देते हैं, लेकिन क्या बच्चे को संभालना सिर्फ माँ की ही जिम्मेदारी है?
1: नहीं आरजे खुशी, बच्चे की परवरिश पूरे घर की जिम्मेदारी है। खासकर पिता और दादी की खास भूमिका होती है। अगर ये दोनों सहयोग करें तो माँ का बोझ बहुत हल्का हो जाता है और बच्चा अच्छे से पल पाता है।
0: पिता की जिम्मेदारी क्या होती है?
1: देखिए, पिता की जिम्मेदारी है कि वो माँ को स्तनपान कराने के लिए प्रोत्साहित करे और उसका साथ दे। पिता का बच्चे के साथ खेलना और देखभाल में सहयोग भी जरूरी है। जब माँ डॉक्टर के पास जाए या किसी सामुदायिक कार्यक्रम में हिस्सा ले तो पिता को भी उसके साथ जाना चाहिए। इससे माँ को मानसिक सहारा मिलता है और पिता को ध्यान रखना चाहिए कि घर में जो खाना बने उसमें बच्चे के लिए पोषण वाला सामान जरूरी हो, जैसे पीली दालें, गहरे हरे पत्ते वाली सब्जियां, दूध और दूध से बने पदार्थ। अगर घर में मांस खाया जाता है तो अंडा और मांस भी बच्चे के लिए उपलब्ध कराना चाहिए।
0: सही कहा भाभी। और दादी की क्या भूमिका होती है?
1: दादी को होना चाहिए कि वो माँ को स्तनपान कराने के लिए हमेशा प्रेरित करे। घर के छोटे मोटे काम जैसे खाना बनाना, चाय बनाना, बाजार से सामान लाना, ये सब अगर दादी कर ले तो माँ को बच्चे की देखभाल के लिए ज्यादा समय मिलता है। दादी,
2: प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे। उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा।
3: मंगल मिलन नाम से आयोजित बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर हंगामे के बीच संसद की अलग अलग समितियों के चुनाव के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किए गए। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। उनके आग्रह के बावजूद विपक्षी सदस्य नीट तथा विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर नारेबाजी करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी 12 बजे के स्थगन के बाद बैठक फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन विपक्ष ने उनकी बात नहीं मानी। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना के बाद बचाव कार्यों के सिलसिले में आज मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री तमांग ने बताया कि प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बातचीत कर बचाव कार्य और स्थिति की जानकारी ली। इस बीच राज्य में NHPC तिस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि अब तक 9 शव बरामद किए जा चुके हैं। करीब 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में स्वीकृति मिल चुकी है। भारत ने वाणिज्यिक पोत MV गोल्डन लियो पर हुए हमले के संबंध में आज दिल्ली में रूस के प्रभारी राजदूत व्लादिमीर लादनोव को तलब किया। 19 जुलाई को इस जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीय मारे गए थे। हमले की कड़ी निंदा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर करते हैं। मंत्रालय ने बताया कि श्री लादनोव से कहा गया कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना और इसके कारण निर्दोष नागरिकों की जान जाना स्वीकार्य नहीं है। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर के सत्र में 0.3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 217 अंक गिरकर 77,491 पर और निफ्टी 60 अंक गिरकर 24,179 पर पहुंच गया। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में आज SS प्रणय और देविका सिहाग सिंगल्स में अपने अपने मुकाबले हार गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई BP, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्ची की सुरक्षा हमारा वादा। हाँ जी दोस्तों, कैसे हाल चाल है? मैं आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। एक बार फिर से आपका पुनः स्वागत करते हैं आपके फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है सोच बदलो। जी हाँ साथियों, अगर हमारी सोच बदलेगी, हमारे समाज की सोच बदलेगी तो हमारा देश अपने आप बदल जाएगा। एक बार फिर से आनंद हाजिर हो गया इस प्रोग्राम को लेकर और आज हमारा मुद्दा बहुत ही खास और विशेष और अहम और महत्वपूर्ण है। सारे शब्दों का मैंने इस्तेमाल कर लिया है श्रोताओं। एक बार फिर से सबसे पहले आपका वार्म वेलकम करते हैं आपके फेवरेट स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। और इस प्रोग्राम को आज मैं अकेला होस्ट नहीं कर रहा हूं, मेरा साथ दे रही है हमारी प्यारी सी को एंकर कुमकुम। बहुत

0: हेलो, आज हम इस पे एक बहुत ही अहम मुद्दे पर डिस्कस करने वाले हैं इस प्रोग्राम में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे डिजिटल दुनिया की, जहाँ दोस्ती भी ऑनलाइन है, काम भी ऑनलाइन है और पहचान भी ऑनलाइन है। आजकल तो खाना पीना भी ऑनलाइन है, क्यों कुमकुम जी? कपड़े जी हाँ, भी ऑनलाइन है,
1: अब तो हमें जो चाहिए वो ऑनलाइन मिल जाता है।
0: इनफैक्ट मजे की बात यह है, आजकल मेकअप भी ऑनलाइन है। आप नहाकर मत आओ, फिल्टर लगाओ, आपका मेकअप भी आ जाता है। तो सब कुछ तो ऑनलाइन हो गया है। लेकिन इस डिजिटल जमाने में जितनी चीजें मेरे और आपके लिए आसान है ना कुमकुम, उतनी ही खतरनाक भी है। क्यों?
1: हाँ, सही कहा ना मैंने? सोशल मीडिया से हमारे कनेक्शंस और लोगों तक जा सकते हैं जो निगेटिव रहते हैं हमारे लिए।
0: करेक्ट करेक्ट। और हम वो सारी चीजें जाने जाने में शेयर भी कर देते हैं जिसका हमारे जो हेटर्स हैं वो वेट कर रहे होते हैं कई बारी। तो श्रोताओं, आज इन सब मुद्दों पे बात करेंगे। आप बिल्कुल चिपक के बैठिएगा अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 पे। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ, चलिए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद पुनः मिलेंगे। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: बहुत ही खूबसूरत गाना, क्या बात है। मतलब बच्चन साहब और रेखा जी पर पिक्चराइजेशन, बड़ा ही प्यारा गाना था। आपको कैसे लगा कुमकुम ये गाना?
1: जी ये तो मेरा एक फेवरेट गाना हो गया।
0: अरे वाह, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है गुल खिले हुए। और देखिए भाई साहब, निगाहों में गुल नहीं, आजकल निगाहों में सोशल मीडिया के एप्स खुले हुए हैं, कहीं पर इंस्टाग्राम, कहीं पर व्हाट्सएप, कहीं पर फेसबुक और कहीं स्नैपचैट और पता नहीं ब्ला ब्ला ब्ला एक्सेट्रा एक्सेट्रा। शायद अगर हम उनके बारे में बात करेंगे तो हमारा समय कम पड़ जाएगा। वैसे तुम्हारा फेवरेट कौन सा ऐप है, जरा ये बताओ। तुम सबसे पहले उठते ही कौन सा ऐप खोलती हो मोबाइल में?
1: एक्चुअली मैं व्हाट्सएप खोलती हूँ।
0: देखा, व्हाट्सएप के दीवाने भी भरे पड़े हैं, मुझे पता है गाइज, आप भी व्हाट्सएप चलाते हो दोस्तों, मैं जानता हूँ। मैम दीदी जी, सुबह उठते ही व्हाट्सएप मत चलाया करो। फैमिली ग्रुप्स में गुड मॉर्निंग भी आ जाता है ना सुबह उठते ही, मुझे पता है। तुम्हारे पास किसका गुड मॉर्निंग आता है सबसे पहले?
1: एक्चुअली मेरी फैमिली का ही आता है।
0: ये लो भाई, आजकल जमाना बड़ा डिजिटल हो गया, फैमिली के साथ बैठे हैं फिर भी ऑनलाइन गुड मॉर्निंग कर रहे हैं।
1: हाँ, जी नहीं, मेरी हाँ, तो
0: आपकी शादी हुई तो बात अलग है। जी हाँ, वो तो फिर चलो समझ सकता हूँ, लेकिन ये जो व्हाट्सएप पे फैमिली ग्रुप्स है ना, इसमें जो लोग खेलते हैं गुड मॉर्निंग, हमको भी कभी कभी अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों खैर, जितनी मजे की चीज है ना सोशल मीडिया, उतनी घातक और खतरनाक भी है। क्यों कुमकुम? क्योंकि मुझे लगता है कि आज हम जो जी रहे हैं वो एक डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, जहां हर चीज हमारे लिए बहुत आसान हो गई है, बहुत कन्वीनियंट हो गई है, बट कहीं ना कहीं हमारे लिए रिस्क भी बढ़ गया है। डिजिटल स्कैम्स लगातार हो रहे हैं, हम इन पे बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं। चीजें बहुत आसान हो गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी अगर सावधानी हम नहीं रखेंगे तो चीजें खराब भी हो सकती हैं।
1: हाँ, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल भी दे सकती हूँ।
0: हाँ प्लीज।
1: जैसे कि डेटिंग एप्स हैं।
0: हाँ, अरे वाह, बताओ बताओ।
1: डेटिंग एप्स पे जो गर्ल्स अपने पार्टनर्स ढूंढ रही होती हैं, कई बार उनके साथ भी फ्रॉड हो जाता है, या बॉयज के साथ भी हो जाता है।
0: ट्रू। आजकल तो लड़के लड़कियां बन के घूम रहे हैं, व्हाट्सएप पे आईडी बनाते हैं और इंस्टाग्राम पे भी, और आपको मैसेज करेंगे ये वो। इनफैक्ट सबसे मजे की बात तो ये है कि आजकल आप ही के दोस्त के नाम की आईडी बना के आपसे पैसे लूट रहे होते हैं लोग।
1: जी राइट।
0: ये भी बहुत हो रहा होता है, कभी हुआ है तुम्हारे साथ ऐसा?
1: मेरे साथ तो नहीं, बट मेरी फ्रेंड के साथ हो चुका है, क्योंकि उसके साथ तो मैंने ही करा था।
0: आइयो रामा भाई, सबसे बड़ी यहाँ पर क्राइम, साइबर क्राइम बैठी हुई है, क्या कह रहे हो?
1: बट वो एक प्रैंक था।
0: अच्छा प्रैंक था, बट यार ऐसे प्रैंक मत किया करो, दिक्कत हो जाती है। वेल, इसे जोक सपाट दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा नया प्रोग्राम जिसका नाम है सोच बदलो, और अगर हम बदलेंगे तो सोच बदलेगी, और सोच बदलेगी तो समाज अपने आप बदलेगा। और आज हमारे इस प्रोग्राम का टॉपिक है सोशल मीडिया सिक्योरिटी, यानी कि खुद को ऑनलाइन सुरक्षित रखना भी जरूरी है। तो तुम क्या मानती हो कुमकुम, ऑनलाइन जितनी सारी चीजें आजकल हमें मिल रही हैं, इसमें क्या रिस्क भी है?
1: जी हाँ, अगर हम अपनी सारी चीजें ही सोशल कर देंगे तो सारी चीजें लोगों को पता चल जाएंगे, और जिससे हमारी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी।
0: और लोग करते हैं यार
1: जी,
0: अगर लोग चाय भी पी रहे हैं उसकी फोटो, थोड़ी देर बाद सैंडविच खा रहे हैं उसकी फोटो, कहीं जा रहे हैं उसकी फोटो, मैं गाइस यहाँ हूँ मैं वहाँ हूँ।
1: एक्चुअली लोकेशन इंस्टाग्राम पे मोस्ट ऑफ डालते हैं कि लोकेशन के साथ कि हाँ हम यहाँ जा रहे हैं,
0: और जबकि वो आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है।
1: जी, आप पैसे निकाल लें एटीएम से तब आप ऑनलाइन हैं, लाइव आ रहे हैं, ये सारी चीजें गलत है।
0: गॉट इट, बिल्कुल सही कहा इसने। और श्रोताओं, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों आज हर कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप यूज कर रहा है, लेकिन कई बार हम जाने अनजाने में अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन खुद ही शेयर कर देते हैं, जैसे इन्होंने कहा, जैसे कि लोकेशन। एग्जैक्टली, फोन नंबर भी हम कई बार डाल देते हैं ना जब हम आईडी बना रहे होते हैं। आजकल तो खैर लोग कुछ कुछ तो ऐसे हैं जो अपना आधार कार्ड भी डाल देते हैं भाई, जबकि वो नहीं डालना होता है, दिस इज फुल ऑफ प्राइवेसी, बट क्या ही कर सकते हैं। देखिए हमारा डेली रूटीन है, मानते हैं, एक तो आदत भी हो गई है कहीं ना कहीं कुमकुम इस चीज की ना, हमें कि उठते ही हर चीज शेयर करनी है, हर चीज को दिखाना है,
1: सोशल मीडिया का कीड़ा बनना हो गया है एक तरह से।
0: करेक्ट करेक्ट, मतलब पूरे आदि बन चुके हैं हम
1: जी।
0: अगर एक दिन के लिए सोशल मीडिया बंद कर दिया जाए तो पता नहीं लोग क्या हाल होगा,
1: आदि दुनिया रुक जाएगी।
0: सच बोल रही है यार, ये तो मुझे भी लगता है। तो दोस्तों यहीं से शुरू होता है खतरा, यानी कि हैकर्स या फिर फ्रॉड जिन्हें हम कहते हैं। और आज छोटी छोटी जानकारियां आपके लिए लेकर आए हैं, और आज का हमारा टॉपिक हमने आपको बता ही दिया है जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जी हाँ श्रोताओं, सोशल मीडिया सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, कैसे आप बच सकते हैं सोशल फ्रॉड से, इस पे हम चर्चा करेंगे। कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको जरूर ध्यान में रखनी है, सोच बदलो प्रोग्राम के अंतर्गत आपके साथ तमाम बातें साझा करेंगे। आप कहीं मत जाइए, एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद पुनः लौट कर आ रहे हैं मैं और कुमकुम।

0: क्या गाना था यार, मजा आ गया किशोरदा की आवाज सुन के। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बिल्कुल बताओ, कल का तो नहीं पता, लेकिन आज भी अगर आपने चीजों को सही से मैनेज नहीं किया तो बिल्कुल कल का कुछ पता नहीं चलेगा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ बताता हूँ अभी आपको, लेकिन उससे पहले आप सभी का खुली बात के साथ स्वागत है जी। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफ एम मुरादाबाद 89.6 FM, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, सोशल मीडिया सिक्योरिटी। बहुत जरूरी है आजकल, जहां सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, हर कोई इस्तेमाल करता है। इस सोशल मीडिया में थोड़ी थोड़ी सावधानी भी बहुत जरूरी है, थोड़ी नहीं पूरी सावधानी बहुत जरूरी है। इसी पर चर्चा कर रहे हैं, प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। तो मेरे साथ दे रही है कुमकुम जी। कुमकुम, आपको कैसे लगा ये गाना और आप क्या कहना चाहेंगी इस गाने के बारे में?
1: ये गाना तो बहुत अच्छा था और मैं इस प्रोग्राम के बारे में कहना चाहूंगी, सोशल मीडिया सिक्योरिटी, यानी हाँ खुद को आप ऑनलाइन कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इसके बारे में भी और आगे बताएंगे। इतने हम आनंद जी से जानते हैं कि क्या बोलना चाहिए।
0: देखो यार, मैं यही बोलना चाहता हूँ, देखिए सोशल मीडिया पे ना जो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें अक्सर अवॉइड करनी चाहिए, और ये गलतियां हम डेली करते हैं, जैसे कि हम कोई भी ऐसा नॉन लिंक हमारे पास आता है इंस्टा या फेसबुक पे, हम तुरंत क्लिक कर देते हैं। कई बार व्हाट्सएप पे आता है, हम तुरंत क्लिक कर लेते हैं, और ये लिंक पे क्लिक करना ही सबसे बड़ा रिस्क होता है। दूसरा, तुम्हें भी पता होगा, हर फ्रेंड रिक्वेस्ट हमारे पास 2 मिनट में आती है। ऐसे ऐसे लोगों की आती है जिनको हम जानते भी नहीं है और कहीं हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। और एक और बात, कई बारी होता है ना कि हम अपना पासवर्ड बहुत कमजोर बनाते हैं, कई बारी अपना फोन नंबर रख लेते हैं, कई बारी 1, 2, 3, 4, 5 रख लेते हैं, हमें लगता है ये हमारे लिए कन्वीनियंट है, लेकिन ये पासवर्ड हैकर्स बहुत आसानी से हैक कर सकते हैं और आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड भी हो सकता है, स्कैम हो सकता है सोशल मीडिया वाला। दूसरी बात, सबसे अहम जो आपको याद रखनी है, किसी को भी अपना OTP नहीं बताना है, ये तो आप भी जानती हैं।
1: शेयर नहीं करना चाहिए।
0: बिल्कुल, आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे OTP को लेकर?
1: OTP को लेकर मैं शेयर करना चाहूंगी कुछ बातें, जैसे कि हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल्स होती हैं, हमारे सोशल मीडिया के सारे अकाउंट्स के एप्स के जो भी होते हैं उसका OTP आता है, जो हम कभी कभी दोस्तों में अपनी आईडी बताने के चक्कर में शेयर कर देते हैं, लेकिन ये हमें नहीं करना चाहिए। OTP तो बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहिए। सो दोस्तों याद रखिए, OTP वन टाइम पासवर्ड नहीं होता, only to person, यानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कुमकुम ने, जो पासवर्ड है ये सिर्फ आपके लिए है, आप ही का बनाया हुआ है, और आप इसका सही इस्तेमाल करें और हर किसी के साथ अपनी पर्सनल डेटा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी साझा ना करें। इसी को ध्यान में रखते हुए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अंतराल, आप कहीं नहीं जाएंगे, सुनते रहेंगे कुमकुम और आनंद को। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
2: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
4: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है, ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें, और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
5: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया सुरक्षा की, क्योंकि आज हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा ऑनलाइन दुनिया में बीतता है। सोशल मीडिया आखिर क्या सच में हमारे लिए जितना लाभदायक है, क्या उतना खतरनाक भी है? तो चलिए इस पर बात करते हैं। श्रोताओं, आज हम फोटो वीडियो शेयर करते हैं, अपनी लोकेशन बताते हैं, परिवार और दोस्तों से जुड़ते रहते हैं, निजी विचार और जानकारी पोस्ट करते रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आपकी पोस्ट कौन कौन देख रहा है और उस जानकारी का इस्तेमाल कैसे हो सकता है? सोशल मीडिया पर ज्यादा जानकारी साझा करना आपको ठगी, पहचान की चोरी और ब्लैकमेल का शिकार भी बना सकता है। तो चलिए एक रेडियो ड्रामे के जरिए मैं आपको ये बात बताता हूँ कि एक पोस्ट कई मुसीबतें लेकर आ सकता है। रोहन, दोस्तों मैं परिवार के साथ 7 दिन के लिए मनाली जा रहा हूँ, ये रहा होटल का नाम और पूरा ट्रेवल प्लान। रोहन, तुम्हारे अकाउंट से मैसेज आया है, तुम फंस गए हो या पैसे चाहिए? क्या? मैंने ऐसा कुछ नहीं भेजा, किसी ठग ने रोहन की पोस्ट से जानकारी लेकर उसके नाम से नकली प्रोफाइल बना ली, उसके दोस्त को मैसेज भेज दिया, मैं मुसीबत में हूँ, तुरंत पैसे भेज दो। कुछ दोस्तों ने पैसे भी भेज दिए हैं। सोशल मीडिया पर कुछ खतरे ऐसे हैं जो आम हैं, जैसे कि फर्जी प्रोफाइल, पहचान की चोरी, फोटो और वीडियो का गलत इस्तेमाल, ब्लैकमेल या मार्फिंग, फ्रॉड लिंक और गिफ्ट स्कैम, लोन या इनाम का लालच। कई बार ठग आपकी प्रोफाइल से आपका जन्मदिन, आपका मोबाइल नंबर, आपके परिवार की जानकारी इकट्ठा करके आपके पासवर्ड का अंदाजा भी लगा लेता है। अगर आपको कुछ ऐसे संकेत दिखते हैं तो आप जरूर सतर्क रहिए। अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट आना, आप इनाम जीत गए हैं जैसा मैसेज आना, बैंक या लोन का ऑफर सोशल मीडिया से, किसी करीबी के नाम से अचानक पैसे मांगना, संदिग्ध लिंक। याद रखिए, हर प्रोफाइल असली नहीं होती। सोशल मीडिया को आखिर सुरक्षित कैसे रखें? आपकी प्रोफाइल प्राइवेट होनी चाहिए, मजबूत और अलग पासवर्ड होना चाहिए, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू होना चाहिए। अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें, अपनी लोकेशन सार्वजनिक रूप से पोस्ट न करें, निजी दस्तावेज या पहचान संबंधी जानकारी साझा न करें। महिलाओं और छात्रों को मैं कुछ खास सलाह देना चाहूँगा। सोशल मीडिया पर अक्सर महिलाओं को फर्जी प्रोफाइल से परेशान किया जाता है, छात्रों को फर्जी स्कॉलरशिप या जॉब ऑफर दिया जाता है, इसलिए अनजान लोगों से चैटिंग में सावधानी रखें। फोटो और वीडियो सोच समझ कर शेयर करें, ब्लैकमेल होने पर चुप न रहें। अगर सोशल मीडिया फ्रॉड हो गया हो तो आपका अकाउंट हैक हो जाए, कोई फर्जी प्रोफाइल बन जाए, ब्लैकमेल किया जाए, तो आप तुरंत 1930 पर कॉल करें और आप अपनी शिकायत www.cybercrime.government.in पर भी जाकर कर सकते हैं। साइबर सुरक्षा की अधिक जानकारी के लिए आप www.staysafeonline.com पर जा सकते हैं। सोशल मीडिया से जुड़े 7 ऐसे नियम मैं जो आपको बताना जा रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी हैं। कम से कम निजी जानकारी शेयर करें, हर फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें, मजबूत पासवर्ड रखें, संदिग्ध लिंक से बचें, लोकेशन सार्वजनिक ना करें, शक हो तो तुरंत उसे रिपोर्ट कर दें। श्रोताओं, सोशल मीडिया हमें जोड़ता है लेकिन सावधानी के बिना नुकसान भी पहुंचा सकता है। लाइक और शेयर से पहले एक बार जरूर सोचें। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया FM मुरादाबाद 89.6 MHz से। कार्यक्रम से अलविदा लेने से पहले मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते वक्त कुछ सावधानी जरूर बरतें। जैसा कि बताया गया कि हर किसी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी है। अगर आपने अपना पासवर्ड कमजोर बनाया है तो ऐसा करें कि उस पासवर्ड को स्ट्रांग बनाकर रखें। अपनी प्रोफाइल किसी के साथ साझा न करें। अगर आप अपनी फैमिली के साथ पोस्ट भी कर रहे हैं अपनी फोटो, तो कोशिश करें आप लोकेशन वहां पर ना साझा करें। अगर आपके पास कोई भी मैसेज आता है जिसमें पैसे की लेन देन के बारे में बात हो रही है, तो उसे इग्नोर करें। सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारे लोग आपको इन्वेस्टमेंट के लिए भी उकसाते हैं, तो उन चीजों से बचकर रहें। जितनी सावधानी आप बरतेंगे उतना आप सुरक्षित रहेंगे। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो एक बार जरूर सोचें कि शायद ये सोशल मीडिया आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है, तो उतना ही इस्तेमाल करें जिससे आपको कोई परेशानी ना हो।
0: तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये जो जानकारी सुनी इस पे आप जरूर अमल करेंगे, गौर करेंगे और इन छोटे छोटे बिंदुओं को अपने जीवन में आप जरूर उतारेंगे। और भैया, ईच वन टू खींच वन, आप भी अप्लाई करें, औरों को भी करवाएं। तो ये छोटी सी जानकारी इस प्रोग्राम के जरिए, जिसका नाम है सोच बदलो, जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी तब तक हम यहीं पर अटके रह जाएंगे, क्यों कुमकुम? तो इसीलिए हमारा मुद्दा भी यही है कि सोच बदलना जरूरी है, और सोच बदलने के साथ साथ छोटी छोटी चीजों का बदलना जरूरी है, डेली रूटीन की हैबिट को बदलना जरूरी है। अच्छा, मान लो कुम, आज हम सोशल मीडिया सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, जहां दिन भर में तमाम 50 फोटो हम शेयर करते हैं, 100 लाइक्स हमारे पे आती है, नहीं आती है तो हम बड़े डिप्रेशन में हो जाते हैं, यार मेरी पड़ोसन की फोटो पे 50 लाइक आए हैं, मेरे पे 2 ही आए हैं, ये सोच के भी लोग तनाव में चले जाते हैं।
1: जी हाँ, बहुत सारी लेडीज भी ऐसी होती है, बहुत सारे पड़ोसी भी ऐसे होते हैं कि हाँ भाई ये उठ रहा है और हम नहीं उठ रहे, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना चाहिए,
0: बिल्कुल
1: ऐसा सोच के। अच्छा, मान लीजिए अगर आनंद जी आपको वो इंस्टाग्राम पे कोई लिंक सेंड करे कि हाँ आपने 50 लाख की लॉटरी जीती है और आपका भाग्य खुल चुका है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे?
0: देखो यार, अगर 50 लाख की लॉटरी या 25 लाख की लॉटरी का मेरे को कोई मैसेज आता है और वो कहेगा कि पहले लिंक क्लिक करो, तो मैं एक्साइटमेंट तो सबको होगी, मैं जरूर सोचूंगा, लेकिन मैं करूंगा नहीं, क्योंकि हो सकता है वो 50 लाख का मुझे लालच दिया जा रहा हो।
1: जी हाँ, ऐसा मेरे भाई के साथ भी हो चुका है।
0: अच्छा?
1: तो पक्का बोला था, मतलब? कि आपकी लॉटरी में बाइक निकली है।
0: कौन सी वाली थी, स्प्लेंडर या कौन सी?
1: सुपर बाइक।
0: सुपर बाइक या केटीएम बाइक?
1: नहीं, सुपर बाइक थी वो, एक जो कि यहाँ नहीं था, इंडिया से बाहर का था। उसमें बोला गया था कि आप दिल्ली आ जाओ, दिल्ली आके ले लो और 15,000 रुपए पहले जमा कर दो।
0: अरे बाप रे, तो मतलब ये तो धड़ाधड़ वाला धोखाधड़ी था यार। तो मतलब किया तो नहीं भाई ने ऐसा?
1: नहीं, भैया ने बोला कि आप हमारी पहले बाइक खुद लेके आओ, अगर आप हैंड टू हैंड देंगे तब हम आपको दे देंगे।
0: ओके, तो ये तो चलिए अच्छा बोला भैया ने, थैंक गॉड। तो इससे कहीं ना कहीं आप बच गए
1: जी,
0: है ना। दोस्तों ऐसे आए दिन हमारे साथ भी होते हैं, और जैसे इन्होंने बोला कि अगर आपको कोई बोलता है कि आपके इंस्टाग्राम पे रैंडमली कोई मैसेज आता है, कंग्रेचुलेशन आप जीत चुके हैं 10 लाख रुपए का लॉटरी पैकेज, इस पे लिंक पे क्लिक करें एंड अपने अकाउंट में जल्दी से विड्रॉल करें पेमेंट, तो आपको ना ये बेवकूफी नहीं करनी है, आपको सावधान और सतर्कता के साथ स्मार्टनेस के साथ काम करना है, आपने उस लिंक को इग्नोर करना है। रिसेंटली 2 दिन पहले ही मेरे इंस्टाग्राम पे आया था रिक्वेस्ट में, बट मैंने उसको डिलीट किया, और मैंने एक दो लोगों से पूछा भी, क्योंकि कभी कभी होता है हमें चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन जब हमने कोई लॉटरी खेली नहीं है तो हम जीतेंगे कहां से, सबसे बड़ा क्वेश्चन। दूसरी बात यह है, अगर आपने जाने जाने में ऐसे लिंक पे क्लिक कर भी दिया तो बॉस आपका जो अकाउंट है वो हैक हो जाएगा, जो आपकी मेहनत की कमाई है वो भी कैसे लूट जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कहते हैं ना दोस्तों, लालच से बचिए और समझदारी को अपनाइए, बहुत जरूरी है। फिलहाल एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम की ओर से ये आपके शहर का पहला सामुदायिक रेडियो जो आपको कहता है सोच बदलिए, अपने इरादों को बदलिए और थोड़ी सी नई सोच को अपनाइए, है ना, स्मार्ट सोच को अपनाइए। आप सिर्फ पुरानी चीजों पर नहीं रहना है, स्मार्ट सोच का मतलब यही है कि जो सोचने का तरीका है वो थोड़ा स्मार्ट बनाइए। जैसे डिजिटल हम सोचते हैं ना कि यार सब चीजें आसान हो जाएं, वैसे थोड़ा सोच को भी आसान बनाइए। बहुत ज्यादा अगर थका दोगे तो कहीं ना कहीं जाने जाने में लिंक पे क्लिक कर दोगे, और लिंक पे क्लिक किया तो लॉस हो जाएगा, क्यों
1: जी। राइट, आपको अपने माइंड को एक्टिव रखना है, जिससे कि आप खो ना जाए और लिंक पे क्लिक ना कर जाए।
0: फिलहाल तो हम दोनों खोने वाले हैं अभी एक खूबसूरत गाने में, उसके बाद हम दोनों लेंगे जाने की इजाजत, लेकिन जाने से पहले कुछ और अहम और महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे, तो एक म्यूजिकल ब्रेक, फिर लौट कर आते हैं मैं और कुमकुम।

0: बिल्कुल जी, मैं भी यही कहता हूँ अक्सर अपने इंस्टाग्राम को देख के कि तू है जहाँ मैं हूँ वहीं, क्योंकि इंस्टाग्राम के बिना तो यार बड़ा अधूरा सा लगता है यार कुमकुम। मगर एक दिन भी रील ना डालो, फोटो ना डालो, तो ऐसा लगता है यार कुछ तो मिस था आज के दिन में। बट वही चीज अगर हम गड़बड़ कर देते हैं तो वो हमारे लिए घातक भी हो जाती है। रिसेंटली किस्सा बताता हूँ, मेरे पड़ोस में एक फैमिली के यहाँ पे शादी थी और वो लोग बाहर जा रहे थे शादी सेलिब्रेट करने, बट उनका एक बेटा जो भाई साहब सोशल मीडिया पे हर एक अपडेट डालता है, मतलब छोटी छोटी अपडेट, अब ये अपडेट उनके ऊपर भारी पड़ गई। उन्होंने सारी लोकेशन वगैरह सब डाल दी कि हम दो दिन के लिए शादी में जा रहे हैं, ये वो। अब उसके बाद जो उनके हेटर्स हैं, या यू कह सकते हैं जो मौके की फिराक में थे, उन्हें मौका मिला, घर में जाके चोरी कर ली। अब उससे बहुत बड़ा लॉस हो गया परिवार को जब ये पता लगा, तो सिर्फ किस वजह से हुआ, सोशल मीडिया की वजह से। तो सोशल मीडिया जितना अच्छा है ना गाइज, जितना आपको हैपनिंग और प्यारा साउंड करते हुए नजर आता है, जितने हम खुश दिखाई देते हैं, एक्चुअल में उतने होते नहीं है। वेरी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको लिटरली बताऊं कुमकुम, कुछ चीजें तो सोशल मीडिया पर सिर्फ दिखावा चल रहा है, है ना?
1: आजकल दिखावे की दुनिया है।
0: है, आई नो दैट, बट इस दिखावे की दुनिया में जो फेक चीजें उनसे भी बचना है यार, नहीं
1: right.
0: तो फिर आपके साथ दिक्कत हो जाएगी। और चलते चलते मैं और कुमकुम जो है बस आपसे यही कहना चाहते हैं कि सोशल मीडिया हमारी जिंदगी आसान बनाता है, लेकिन छोटी सी गलती हमें बड़ी परेशानी में भी डाल सकता है। एग्जैक्टली exactly. तो बस याद रखिए, सेफ रहिए, सतर्क रहिए, जो आप कर रहे हैं अच्छे से करिए, लेकिन हर चीज को अपलोड मत करिए, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी फोटो का कौन गलत इस्तेमाल कर ले। AI का जमाना है आजकल, तो वैसे भी गर्दन किसी और की होती है, बॉडी किसी और की होती है, तो उसका शिकार आप ना हो, हम ना हो, इसलिए सावधानी ही सबसे बड़ी सतर्कता है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, फिर और मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है सोच बदलो। तब तक के लिए मैं आरजे आनंद लेता हूँ आपसे इजाजत, अनुमति, और कुमकुम आप भी चलो बाय करो।
1: बाय।
0: बस भी इतना ही बोलेगी, अभी उसको ज्यादा थोड़ा सा जो है मतलब सीखने की जरूरत है, अभी उसको ज्यादा आ नहीं रहा है, इसने प्यार से बोला बाय। चलो ठीक है, चलो मैं अपना थैला उठाता हूँ, लाओ। अरे मेरा ये फेस वॉश तो रख दो। अरे बाबा मेरी सनस्क्रीन भी रखो इसमें। एक तो गाइस धूप बहुत हो रही है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप घर से बाहर जा रहे हैं ना तो अपने थैले के अंदर सनस्क्रीन और ये काला चश्मा। मेरा चश्मा कहाँ गया यार? कुमकुम मेरा चश्मा है क्या? अच्छा ये, हाँ। तो गाइस आप लोग भी अपना चश्मा, पानी की बॉटल और ये सनस्क्रीन सब अपने साथ रखिए और ख्याल रखिए, और डिजिटली थोड़ा सा एक्टिव रहिए, बट सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ।
1: आपके हाथ में
0: क्या बात है, बिल्कुल मेरे हाथ में मेरा थैला दो। चलो बाय गाइस।

0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
1: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
0: पर पापा।
1: अरे बेटा बस मैं यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
4: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
2: हेलो जी, कैसे हालचाल हैं? आप सुन रहे हैं आरजी आनंद को, ये है आपका फेवरेट स्टेशन ऑफ द नेशन, दिस इज एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं प्रोग्राम में, आप सभी का फेवरेट, जिसका नाम है हेलो डॉक्टर। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद होते हैं जिसपे हम कुछ ना कुछ खास डिस्कस कर रहे होते हैं आपकी हेल्थ के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, अगर हमारी बॉडी अच्छी है, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही ब्यूटीफुल डॉक्टर मौजूद है, एंड शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट। कौन है ये? बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी बातें करती है और बहुत ही अल्टीमेट सी यू नो वाइब आ रही है मुझे इनके साथ यू नो बात करते हुए। अभी वो सारी वाइब आपको फील होंगी रेडियो पे। वेल, आप सभी का भी वेलकम बैक है इस्तकबाल एक बार फिर से। एंड बिना किसी देरी के मैं अपनी बातों को यहीं पे ब्रेक दूंगा और मैम की तरफ आपको लेके चलूंगा। सो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में। वेलकम टू हेलो डॉक्टर प्रोग्राम। हाउ आर यू? कैसे हैं आप?
3: मैं बढ़िया हूँ, एंड आई एम ऑल्सो ऑब्लाइज्ड टू बी हियर ऑन योर शो।
2: थैंक यू वेरी मच मैम। और मैं चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस को प्लीज थोड़ा अपने बारे में बताएं, आप करेंटली कहाँ वर्किंग हैं, आप क्या करती हैं?
3: जी, मैं डॉक्टर राशिका गुप्ता हूँ। मैंने मेरे यूजी पीजी एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है। देन आई हैव वर्कड इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल दिल्ली। देन उसके बाद कुछ फेलोशिप्स करी, एंड फाइनली नाउ आई एम वर्किंग इन एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल मुरादाबाद।
2: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सो देखा, मैंने कहा था ना मैम बहुत ही अल्टीमेट तरीके से बात करी, क्योंकि आपको अल्टीमेटली वो एक फील यू नो आएगी बातों में। और ये जो कॉन्वर्सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे आपके साथ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। तो लेकिन पहले मैम से पूछते हैं कि मैम आपको स्टेशन आके कैसा लगा, हमारे यहाँ की वाइब्स, यहाँ का यू नो एनवायरमेंट कुछ कहना चाहेंगे आप? हालांकि डॉक्टर फील्ड में है, वहाँ की एनवायरमेंट अलग होती है, वाइब अलग होती है।
3: डॉक्टर्स एंड यू आर नॉट सेपरेट, ठीक है? हमारे पेशेंट मतलब वी आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी।
2: एब्सोल्युटली।
3: तो इट इज ऑलवेज देयर, इट इज ऑलवेज अ टू वे कन्वर्सेशन। आप नहीं है तो हम नहीं है, तो इस चीज को सॉर्ट आउट करना चाहिए। एक जो वो मोनोपोली बन रही है कि डॉक्टर्स बात नहीं करते, सो आई वांट टू ब्रेक दैट मोनोपोली कि नहीं यार, आप हमारे लिए जरूरी है, आपकी हर कंप्लेन हमारे लिए जरूरी है। आई शुड बी ऑलवेज अवेलेबल टू यू। थिंग्स आर देयर कि हम कभी कभी बिजी होते हैं, अपने शेड्यूल्स में बिजी होते हैं, हम नहीं ध्यान रख पाते, बट द थिंग इज जब आप मेरे सामने हो, मेरे ओपीडी में हो, तो द कंसल्टेशन शुड बी 100%। मतलब ऐसे कुछ वाइब्स नहीं आनी चाहिए कि मैं ये ना बोलूं, मैं बोलूं, नहीं, आप मुझे सब चीज बताओ। जो 15 मिनट आपने ओपीडी का मेरा लिया है, दैट शुड बी कम्प्लीट।
2: दैट्स वेरी नाइस मैम, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। That's great, ma'am. Thank you so much, क्योंकि मुझे लगता है कि अपनी जिम्मेदारी जब हम समझने लगते हैं तो चीजें और भी इजी हो जाती है हमारे लिए, है ना? So guys, I hope आपको डेफिनेटली मजा आएगा इस कॉन्वर्सेशन में, और आज बहुत सारी बातें होंगी, और मैं मतलब बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत कम सिचुएशन में ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जिनसे हम वो बातें पूछना चाहते हैं जो क्वेश्चन आप हमें भेजते हैं बेसिकली। और आज हमारे पास आप ही के क्वेश्चन हैं जो हम मैम से पूछने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैम, आई वॉन्ट टू आस्क यू, दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन, ये किसी लिसनर का नहीं है, ये मेरे अंदर का क्वेश्चन है कि जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है वो कौन होती है, उनका क्या रोल होता है? बिकॉज मुझे लगता है कि हम पुरुषों को भी जानने का राइट है।
3: जी जी बिल्कुल, पुरुष जानेंगे तभी औरतें जानेंगी। एक्चुअली लोगों को ये लगता है गायनेकोलॉजिस्ट सिर्फ एक जच्चा बच्चा डॉक्टर होती है। हाँ, जैसे पुराने जमाने में दाई का होता था।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल,
3: ठीक है? तो यानी कि डिलीवरी कराएगी या नॉर्मल कराएगी या सिजेरियन कराएगी, ठीक है? बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। देयर आर लॉट ऑफ चीजें, देयर इज अ रेनबो डिसऑर्डर्स जिसके बारे में गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप आ सकते हैं। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, हार्मोन डिसऑर्डर्स, आजकल फीमेल्स में बढ़ गया है कि दे डोंट मैरी आफ्टर 35 इयर्स, सो देयर आर लॉट ऑफ हार्मोनल इश्यूज, ठीक है? देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक पीसीओडीज इमर्जिंग, जिसको आजकल हम पीएमओएस कहते हैं, बट इट इज ऑल एंडोक्राइन रिलेटेड। तो गायनी आपकी एक ओवरऑल हेल्थ की पार्टनर होती है। तो सिर्फ डिलीवरी और बच्चा से हमारा मतलब नहीं है, इट इज ऑलवेज रिलेटेड। तो क्योंकि वी आर फीमेल, तो वी कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड बेटर, एंड डिलीवरी हमने भी, वी हैव गॉन थ्रू दैट फेज, तो इट इज ऑलवेज रिलेटेबल।
2: ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम ये एक्सप्लेन करने के लिए। अब हमें और मेरे जैसे बहुत सारी यंगस्टर को, जेंसी को पता चल गया कि गायनेकोलॉजिस्ट होते क्या है, उनका क्या रोल होता है। सो मैम, हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है कि आपको भी पता है आजकल का लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, इनफैक्ट एवरीबॉडी, सब लोग बिजी है, सबको लाइफ में सुपर फास्ट जाना है, सब लोग बहुत भाग रहे हैं। बट ऐसे में ना हमारी घर की जो मम्मियां हैं, दीदी हैं, या हमारे घर की जो वुमेन्स हैं, वो अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देती, अपनी हेल्थ पे बहुत कम टाइम दे पाती है। उन्हें हस्बैंड को देखना है, बच्चों को देखना है, एंड और भी बहुत सारी चीजें उन्हें संभाल दी है, बट उन्हें खुद को नहीं देखना है, बहुत कम टाइम में खुद को टाइम दे पाती है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? स्टार्टिंग में उन्हीं से करूंगा।
3: एक्चुअली मैं भी फीमेल हूँ, मेरी भी फैमिली है, सो इट इज लाइक दैट ओनली, कि अगर बच्चे को फीवर आ रहा है और मुझे फीवर आया है, आई विल ओनली से कि चलो
2: बच्चे को दिखा लाते हैं।
3: आई हैव लॉट ऑफ पेशेंट्स, अभी कल की कहानी बताती हूँ। देयर वर टू पीपल, ठीक है, हमारे स्टाफ की पेशेंट थी, मदर, बेटी ने अपना पर्चा बनाया फॉर इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। अब द मदर वॉज देयर, तो बेटी ने अपना दिखा के उसके बाद बोली कि मैम मम्मा को भी प्रॉब्लम है, आप देख लो। तो आई वॉज लाइक कि बताइए क्या प्रॉब्लम है। शी डिनाइड, बोली नहीं मैम, घर में मेरे सब बीमार है, मेरे फादर इन लॉ की डायलिसिस चल रही है, मेरे हस्बैंड को फीवर आ रहा है, बेटी को इरेगुलर मेंसेस है, मैं अब अफोर्ड नहीं कर सकती। अब प्रॉब्लम क्या थी कि उनके मेंसेस के बीच में उनको इरेगुलर पीरियड्स आ रहे, विच कुड बी इंडिकेशन ऑफ समथिंग वेरी बैड,
2: वेरी बैड।
3: तो इन्वेस्टिगेशन एट टाइम इज इम्पोर्टेंट, ताकि हम इंटरवीन कर लें। तो आई टोल्ड हर कि आप पर्चा मत बनाओ, एक जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन होते हैं हम जो पैप स्मेयर और अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता करते हैं, आप वो करा लो, डोंट गो फॉर मल्टीपल चीजें, बट एक स्क्रीन करके, क्योंकि अगर आप अपना ध्यान रखेंगी तभी आप अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे। अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, ठीक है, आपको पैर में दर्द है, सर में दर्द हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आपके बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा चलो घूमने, तो यू विल फील वेरी मतलब इरिटेटेड कि नहीं यार नहीं जाना मुझे, आप घर पे भी चिल्लाओगे, हस्बैंड से भी लड़ोगे। तो योर हेल्थ इज द प्राइमरी हेल्थ, अगर आप अपने आप में स्वस्थ नहीं है तो आप और लोगों की टेक केयर नहीं कर सकती, और ये 100% बात है, इसमें कोई इफ एंड बट बिल्कुल नहीं है।
2: Absolutely. तो जो लोग देख भी रहे हैं यहाँ पे गाइस, सुनने के साथ साथ लोग हमें देख भी रहे हैं, हम डिजिटली सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं, तो जो लोग देख रहे हैं उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्पेशली लेडीज को मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपना ध्यान जरूर रखें और बहुत अच्छे से रखें।

0: हेल्थ चेकअप बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इफ यू डायग्नोज एट अ अर्ली स्टेज द ट्रीटमेंट कैन बी मच मोर इजियर.
1: ठीक है.
0: अब 20 से 30 साल की अगर आपकी उम्र है, 20 to 30 ईयर्स, तो वी रिकमेंड कि 1 to 2 साल में आप अपना ईयरली चेकअप करा लें, जिसमें आपका थायराइड इंक्लूडेड है, आपके हार्मोन टेस्ट इंक्लूडेड है, शुगर, बीपी, ये सबका एक नॉर्मल रूटीन टेस्ट. एक बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग की हम बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं पैप स्मियर, जो कि आज ओवरऑल ओवर इंडिया एक बहुत बड़ा टॉपिक हो गया है, दैट इज पैप स्मियर. ठीक है, इसकी हम रिकमेंड करते हैं कि एवरी फीमेल शुड अंडरगो अ पैप स्मियर 21 to 65 ईयर्स ऑफ एज. ठीक है, हर 3 साल पे कराना है, कोई बहुत बड़ा टेस्ट नहीं होता. एक स्पैचुला से आपकी सर्विक्स को बस ब्रश से रब किया जाता है और सैंपल ले लिया जाता है. इट इज अ ओपीडी प्रोसीजर. आप हमारे पास आएंगे और 5 मिनट में प्रोसीजर करके हम भेज देंगे. करता क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायग्नोस करता है सर्वाइकल कैंसर के प्री कैंसरस न्यूज जो है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर इस वक्त ग्रोइंग स्टेज पे है. इवन इतना ज्यादा हो रहा है कि एक सरकार एक हेल्थ कैंपेन रन कर रही है, जिसके बारे में आपने भी सुना होगा, विच इज की वैक्सीन एचपीवी वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लगवा रहे हैं. अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है कि आई गेट पेशेंट इन ओपीडी कि मैम वो जो सरकारी वैक्सीन है वो लगवा ले. पीपल मिसकंसेप्शन ये हो रहा है कि दिस कॉजेज इनफर्टिलिटी, दिस कॉजेज इरेक्टाइल डिसफंक्शन इन मेल्स, बट ऐसा नहीं है. कोई इज अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है, दैट डजंट मीन कि वो आपके बुरे के लिए.
1: करेक्ट करेक्ट.
0: गवर्नमेंट इज रनिंग कि
1: एब्सोल्युटली
0: अब पोलियो इरेडिकेट हो गया हमारे. ठीक है, एक टाइम पे इतना सारा पोलियो का केस मिलता था, बट बिकॉज गवर्नमेंट इंटरवेंट तो उसके बाद उसके केसेस आने कम हो गए. अब गवर्नमेंट एक कोशिश कर रही है कि सर्वाइकल कैंसर और इतनी महंगी वैक्सीन जिसकी एक डोज लगभग 3,000 to 4,000 rupees की है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट.
1: फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल.
0: उसमें भी बहुत प्रॉब्लम है लोगों को. अब एक इसमें 2-3 तरह की वैक्सीन होती है, सर्वरेक्स, गार्डेसिल, ये सब वैक्सीन होती है. डोजिंग का भी है कि 9 to 15 ईयर्स है तो 2 डोज वैक्सीन लगानी है 0 to 6 months के इंटरवल पे. और एक और वैक्सीन है जो कि अगर आप एज ज्यादा है, 15 साल से ऊपर है, तो यू कैन गो फॉर 3 डोज वैक्सीन. ठीक है, और ये लगवानी चाहिए. इट इज अ वेरी गायनेकोलॉजिस्ट रिकमेंडेड वैक्सीन. आई गेट पेशेंट्स एंड आई एम ऑन दिस सोशल मीडिया, आई वॉन्ट टू से कि यार लगवा लो, ये अच्छा है, सब अपनी बच्चियों को लगवाएं. और जो भी रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल्स हैं टिल 45 इयर्स, आप प्लीज इसे लगवाएं. दूसरी चीज, एक मेमोग्राफी की स्क्रीनिंग, बिकॉज द ब्रेस्ट कैंसर इज इंक्रीजिंग रेट. तो वो 40 साल के बाद मेमोग्राफी हम कहते हैं कि आप ईयरली नहीं पॉसिबल है तो कम से कम 2 ईयरली बाय ईयरली आप मेमोग्राफी करा लें, प्लस सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक स्क्रीनिंग के तौर पे महिलाओं के लिए हेल्पफुल हो सकती है.
1: ऑल राइट मैम, थैंक यू सो मच. आपने एक मैसेज भी कन्वे कर दिया. यू नो कई बार बहुत सारे पेरेंट्स अभी भी जो हमें सुन रहे हैं, बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में भी लोग सुनते हैं, तो उनको भी ऐसा लगता है कि नहीं, जो एचपीवी वैक्सीन है या जो गवर्नमेंट फ्री वैक्सीन प्रोवाइड करा रही है वो कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज्यादा सही नहीं है. पर आई डोंट नो कि उनको ये मिथ्स या उनका कह सकते हैं कि मेंटालिटी अलग लेवल पे चल रहा है. आप एज ए डॉक्टर क्या रिकमेंड करेंगे उनको?
0: आई वुड से कि प्लीज लगवाइए. ठीक है, इट इज वेरी फ्रेंडली वैक्सीन, कुछ नहीं होता, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है. कोविड के बाद लोगों ने इतने वो डिल्यूजन्स बना लिए कि कोविड वैक्सीन से ही हो गया, कोविड वैक्सीन से ही. कोई भी वायरस की वैक्सीन इसलिए नहीं आती कि आपको हार्म करा जाए.
1: Absolutely.
0: नहीं तो सरकार को तो कोर्ट में सू कर दिया जाएगा.
1: करेक्ट मैम, बिल्कुल.
0: और पहले जब पैसे देके लगाई जा रही थी तो लोग लगवा रहे थे, और जब हम फ्री में उसको लगवा रहे हैं तो लोग ये सोच रहे हैं कि एक सरकार का कोई स्कैम है. नो, इट इज नॉट अ स्कैम. इट शुड बी गिवन 9 to 14 साल की लड़कियों को. प्लीज सब लोगों से रिकमेंडेशन है, मेरी गुजारिश है कि प्लीज आप ये वैक्सीन जरूर लें.
1: एब्सोल्युटली, और हम भी आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज एवी का वैक्सीन आप जरूर कराएं. ये वैक्सीनेशन बिल्कुल फ्री है, इसे बिल्कुल भी अवॉइड ना करें. मैम थैंक यू वेरी मच. आगे बढ़ते हुए मैम, पीरियड्स को लेकर समाज में कई तरह के मिथ्स हैं, बहुत सारी यू नो अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स लोगों ने बनाई हुई है अपने दिमाग में, जहन में. अभी भी 2026 चल रहा है, तब भी बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों के दिमाग से बाहर नहीं निकल रही हैं, जो अपने रिचुअल्स को कल्चर्स को फॉलो करते हैं वो लोग. उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग अभी भी पीरियड्स को लेकर बहुत ज्यादा मिथ्स अपने दिमाग में रखते हैं? यू नो पैड्स मत यूज करो, ये मत करो.
0: पीरियड्स के रिगार्डिंग इतने सारे मिसकंसेप्शन है. आप किचन में नहीं जा सकते, आप पूजा नहीं कर सकते, गंदा खून होता है. ठीक है, अब इफ आई वुड से ये सब नॉर्थ में है. इफ यू सी सनातन धर्म, दे सेलिब्रेट कि जब पीरियड्स आने लगते हैं फीमेल्स को तो एक पूजा स्थापित की जाती है, सब लोगों को बताया जाता है. इट्स सच अ ब्यूटीफुल रिचुअल. क्यों क्यों इसलिए किया जाता है, अब दिस फीमेल इज रेडी फॉर कंसेप्शन, है ना. जिसके पीरियड नहीं आ रहे उससे पूछिए कि उसके माँ

0: आपके लिए कितनी बड़ी ट्रेजेडी है दैट द यूट्रस इज नॉट देयर, यूट्रस इज नॉट वर्किंग, यूट्रस इज नॉट हैविंग बेबी, उस बच्ची की शादी कराना, मतलब होल लाइफ इज मिसमैच. तो जिसको आ रहे हैं इट इज अ वेरी गुड साइन. अब ये मिसकंसेप्शन मुझे लगता है जो बने हैं उसका रीजन ये रहा होगा कि पुराने जमाने में पूजाएं बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल से होती थी.
1: Correct.
0: मंदिर ऊपर हुआ करते थे
1: right.
0: तो लोग सीढ़ियां चढ़ के जाया करते थे.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: और घर के काम ऑब्वियसली सारे काम मैनुअल होते थे तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता था. तो बस आराम देने को बड़े बूढ़ों ने कहा कि इसको 3 दिन का हम रेस्ट दे देते हैं. दैट डजंट मीन कि उसको सोसाइटी से निकाल दिया जाएगा, उसको अछूत समझा जाएगा, ऐसा उन लोग का बिल्कुल भी कंसेप्शन नहीं था. इवन उसको गंदा कहा जाता है. तो मैं ये पूछना चाहती हूँ लोगों से कि अगर वो गंदा ब्लड है तो प्रेगनेंसी में देयर इज नो पीरियड ना, तो उस गंदे ब्लड से हमारा बेबी हो रहा है, हाउ कैन अ बेबी भी गंदा, नहीं हो सकता ना. सो अभी भी अब मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत लोगों को समझाती हूँ, बट जो पुरानी जनरेशन है यानी कि हमारी मम्मी दादी नानी, दे विल गो ऑन देयर पेस, उनको हम नहीं चेंज कर पाएंगे. द थिंग इज जैसे मैंने अपने घर में किया है कि आई डोंट कंसीडर पीरियड एज अ टैबू, आई गो टू टेम्पल्स, आई डू एवरीथिंग एंड दिस माई डॉटर विल फॉलो. ठीक है, मेरी बेटी भी ये सब करने वाली है, बट आई डोंट ट्राई टू चेंज माय मदर. ठीक है, मम्मी जब होती हैं तो आई फॉलो देयर रिचुअल्स की. ठीक है, व्हेन आई एम अलोन एट माय होम आई फॉलो माय रिचुअल्स. तो यही मेरा लोगों से है कि पुराने जनरेशन को अपन नहीं चेंज कर सकते. थिंग इज कि हम चेंज होंगे एंड हमारी नेक्स्ट जनरेशन चेंज होगी. जब इतना लास्ट पहले के जमाने में कोई मोबाइल का यूज नहीं करता था, बिल्कुल भी कोई मोबाइल का, आज कोई मोबाइल के बिना नहीं रह सकता. तो थिंग्स आर चेंजिंग, व्हेन द ओल्ड पीपल आर अपडेटिंग व्हाई कांट वी अपडेट ना.
1: करेक्ट. अच्छा मैम, पीरियड से जुड़ी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो लेडीज अक्सर उनका सामना करती हैं, इवन कुछ लेडीज उसको अवॉइड भी कर देते हैं.
0: एग्जैक्टली.
1: तो उसके विषय में थोड़ा सा यू नो आप बताएं.
0: हाँ, बहुत सारी, जैसे कि पीरियड का कम आना इज डिजीज, पीरियड का बहुत ज्यादा आना इज अ डिजीज. आपको नॉर्मल पीरियड आ रहे हैं और उसमें बीच बीच में स्पॉटिंग हो रही है या गंदा डिस्चार्ज हो रहा है, दैट इज अ डिजीज. ठीक है, अब पीरियड आ रहे हैं लेकिन डिसमिन हो रहा है यानी कि आपको बहुत पेन के साथ हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ डिजीज. तो ये सब बीमारियां हैं. अब पीरियड नहीं आए, एक दो दो तीन महीने नहीं आए तो लोग ये सोचते हैं कि बंद होने वाला है, बट बंद होने की एक स्पेसिफिक एज होती है और एक स्पेसिफिक हार्मोनल प्रोफाइल होता है विच यू विल गो टू अ गायनेकोलॉजिस्ट, तब वो कराएगी. तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर आपके अर्ली पीरियड भी बंद हो रहे हैं, मेरे पास 3 पेशेंट मेरे फॉलोअप में है जो कि 30s की एज में है, 30, 31, 32 एंड 3 साल से एमिनोरिक है यानी कि 3 साल से महीना नहीं आ रहा. हैड दे कम अर्ली आई वुड हैव इंटरप्टेड, बट अब क्योंकि वो क्रोनिकली हो गया है तो इट इज वेरी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू क्योर देम.
1: ओके, वेरी नाइस मैम, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया. सो आई होप जो भी विमेन्स, जो भी लेडीज सुन रहे हैं इस शो को, आई एम श्योर उनको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे होंगे. आज डॉक्टर राशिका गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, एशियन हॉस्पिटल से हमारे बीच में हैं, ढेर सारी प्रॉब्लम्स को जो है यहाँ पे सॉल्व कर रही हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप लोग हमें अक्सर भेजते रहते हैं उस सारे क्वेश्चंस के आंसर मैम यहाँ पे कर रही हैं. एंड मैम थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, आप बहुत अच्छे से चीज़ों को यू नो एक्सप्लेन कर पा रहे हो और हमारे लिसनर्स भी डेफिनेटली कनेक्ट हो पा रहे होंगे इस चीज़ से कहीं ना कहीं.

0: बार बार बाधित हुई। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर हंगामे के बीच संसद की अलग अलग समितियों के चुनाव के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किए गए। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। इसके बावजूद विपक्षी सदस्य नीट तथा विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर नारेबाजी करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में 12 बजे के स्थगन के बाद बैठक फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन विपक्ष ने उनकी बात नहीं मानी। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे को लेकर कल नई दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। इसके बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और कहा कि विपक्ष विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है। संसद के बाहर श्री गांधी ने कहा कि मुद्दा विद्यार्थियों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा है।
1: इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है। ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दैट इज ऑल दे आर सेइंग, नथिंग रॉन्ग विद इट।
0: सरकार ने उन कई सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि कल दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के दौरान एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य

0: जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली में प्रदर्शन से संबंधित कोई मौत नहीं हुई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सिक्किम में नामची जिले में एनएचपीसी तिस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि अब तक 11 शव बरामद किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
1: बारिश और खराब मौसम के बावजूद रेस्क्यू टीम फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित निकलने की पूरी कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि समदंग में 7 किलोमीटर लंबी टनल के अंदर कम से कम 25 लोग फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांगुले से बात की और हालात से निपटने के लिए हर तरह की मदद का भरोसा दिया। इस बीच जिला प्रशासन ने अब तक 7 शवों की पहचान कर ली है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखने के लिए जिला के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश में चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी और कुल्लू जिलों में 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है।
2: किन्नौर जिला के करछम बांध और सिरमौर जिला में गिरी जटोन बांध से अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। स्थानीय प्रशासन द्वारा इन नदियों के साथ लगते इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने व समय समय पर जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। उधर किन्नौर जिला के शलखर और समदो में भूस्खलन और चट्टाने गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर यातायात बाधित हो गया है। वहीं लाहौल स्पीति जिला में भी जहालमा नाले में आई बाढ़ के कारण संपर्क सड़क बह जाने से यातायात बंद है। शिमला जिला के ठियोग उपमंडल में 16 सड़क संपर्क मार्ग भूस्खलन के कारण अवरुद्ध है और चंबा जिला के लाहड़ू नूरपुर मुख्य सड़क में भी टिक्कर गलाधार में भारी भूस्खलन से मार्ग अवरुद्ध हुआ है। रितेश कपूर,
0: आकाशवाणी समाचार, देहरादून। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और मुजफ्फराबाद में तेज से बहुत तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की

की चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, आंतरिक कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में भी 24 तारीख तक ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मासिक आर्थिक सहायता को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये करने की मंजूरी दी है।

कल जारी एक आदेश में राज्य सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई सहायता राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने वाणिज्यिक पोत MV गोल्डन लियो पर हुए हमले के संबंध में आज दिल्ली में रूस के प्रभारी राजदूत

व्लादिमिर लादनोव को तलब किया। 19 जुलाई को इस जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीय मारे गए थे। हमले की कड़ी निंदा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा और

0: स्थिरता कमजोर करते हैं। मंत्रालय ने बताया कि श्री लादानोव से कहा गया कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना और इसके कारण निर्दोष नागरिकों की जान जाना स्वीकार्य नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय आतंकवादी संगठन ISIS में भर्ती से जुड़े मामले में बेंगलुरु में 8 परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। इसमें इकरा वेलफेयर ट्रस्ट, गाइडेंस फॉर मैनकाइंड और बेंगलुरु स्थित अन्य व्यक्ति शामिल हैं। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सरकार का संकल्प दोहराया। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से 11 लोगों की मौत, कई लोग फंसे, बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और भारत ने एक वाणिज्यिक जहाज पर हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के मामले में रूस के दूत को तलब किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। वक्त हुआ है दोपहर के 2:30 और ये वक्त होता है आपके पसंदीदा उस प्रोग्राम का जिसका नाम है एक ही कलाकार। प्रोग्राम शुरू करूं उससे

0: आइए आप भी भागीदार बनिए, वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 से जुड़िए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
2: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
2: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
3: मुरादाबाद
1: से संपर्क कीजिए।
2: नियम और शर्तें लागू।

0: नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून, आदाब, प्यार भरा सलाम। मैं हूँ आपकी दोस्त आरजी खुशी और आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट शो हेलो फरमाइश में। आज का मूड है फुल ऑन मस्त, फुल ऑन म्यूजिकल। तो दोस्तों, चाय की चुस्कियों के साथ आप भी मुझे कॉल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। मैं हूँ आपके साथ आपकी खुशी, लेकर आई हूँ आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ। अब आप सोच रहे होंगे, खुशी जी हमारे लिए कैसे खुशियाँ लेकर आई हैं? देखिए दोस्तों, ये लाइव फोन इन कार्यक्रम है। आप यहाँ पर मुझे कॉल कर सकते हैं और अपने फेवरेट गाने सुन सकते हैं। जब आप अपने फेवरेट गाने सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली खुशी मिल जाती है ना, तो इस खुशी को ना बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अभी फोन उठाइए और मुझे कॉल लगाइए, मैं इंतजार कर रही हूँ आपके फोन का। नंबर मैं आपको बताती हूँ, 9837896896। और मेरे साथ में एक कॉलर भी जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, जानेंगे उनकी भी फरमाइश। हेलो फरमाइश। हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी सर, नमस्कार।
1: नमस्कार दीदी, आप कैसे हैं? मैं
0: जी, मैं बहुत ही अच्छी हूँ। आप बताइएगा कैसे हैं और आपका शुभ नाम क्या है?
1: मेरा नाम लतीफ अहमद है, कश्मीर सोना मार्ग।
0: कश्मीर से आप बात कर रहे हैं, बताइए सर, कश्मीर का वेदर कैसा है अभी, मौसम वहाँ का?
1: बस ऐसा बारिश आ रहा है, 3 दिन से ऐसा बारिश आ रहा है, रुक रुक के बारिश आ रहा है, तेज बारिश आ रहा है।
0: अच्छा, मतलब बारिश ब्रेक भी लेती है उसके बाद फिर से तेज होकर आ जाती है। हाँ, तो कैसे लग रहा है ये वेदर?
1: आज 12 बजे से लेके अभी 3 बजे तक बारिश बहुत गिर रहा है।
0: ओके, तो मौसम इतना सुहाना सा है, बताएगा कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे? आप
1: बहुत ठंडा हो गया, बहुत ठंडा हो गया मौसम
0: जी, तो बताएगा सर आप कौन सा गाना सुनेंगे? आप गर्मी से राहत मिल चुकी है ना?
1: हाँ, गर्मी से राहत
0: जी, तो बताइएगा सर आज कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: इसी बहाना से ये गाना सुनना, मौसम के बारे में गाना।
0: अच्छा ओके, मौसम के ऊपर गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: हाँ हाँ
0: जी, सुनवाते हैं आपको। शुक्रिया आपने हमें कॉल किया सर।
1: शुक्रिया आपका भी, थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक सर की रिक्वेस्ट पर, और आप भी मुझे बिना किसी देरी के जल्दी से कॉल लगाइएगा, मैं इंतजार कर रही हूँ। और वक्त भी मैं आपको बताती हूँ, 3:13।

हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में दोस्तों, तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना फ्रॉम द मूवी जानवर से। एंड मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। देखिए, हम तो बिल्कुल नहीं बदलने वाले और ना ही आप बदलने वाले हो, मुझे मालूम है मौसम तो बदलता रहता है, बट हाँ आप मुझे कॉल करना मिस मत कीजिएगा।

हेलो हाय एवरीवन, वंस अगेन गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक। आप सभी सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6। और अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना अलका याग्निक जी, साथ में मनोहर उदास जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज, आनंद मिलन जी का म्यूजिक एंड समीर जी के लिरिक्स थे दोस्तों। और देखिए, आपका जो प्यार है ना, वो हमें कभी बदलने ही नहीं देगा। आप इतना प्यार करते हैं एफएम मुरादाबाद।

0: से और सभी प्रेजेंटर से कि वो आपकी ओर खींचे चले जाते हैं। और चलिए अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानेंगे उनकी भी फरमाइश यहाँ पर। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, नमस्कार।
1: हाँ नमस्कार मैडम जी, मैं महाराष्ट्र हिंगोली जिला कलमद्री तालुका मोहन सिंह ठाकुर बात कर मैडम।
0: मोहन सिंह ठाकुर जी बात कर रहे हैं महाराष्ट्र से, बताएगा कैसे हैं आप सब?
1: बहुत ही बढ़िया है मैडम जी, अभी तो खेत में ही बैठे थे हमारे।
0: अच्छा।
1: के साथ।
0: ओके अच्छा, ये बताएगा सर महाराष्ट्र का मौसम कैसा है अभी?
1: महाराष्ट्र में बारिश हो रही है मैडम जी, पहले थोड़ी रुक गई थी लेकिन शनिवार से बारिश, शनिवार 2-3 बजे बहुत बारिश हो गई, अभी भी बदली बहुत है, रात को भी थोड़ी थोड़ी हुई थी और होने की संभव है बारिश।
0: अच्छा, अभी बारिश होने की और संभावनाएं हैं?
1: हाँ मैडम
0: जी,
1: सोयाबीन जो हमारे हल्दी कपास तुअर जो थे आप उनको बहुत एक दिलासा मिल गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले छोटे छोटे पौधे थे तो जान नहीं लग रही थी लेकिन आप जान में जान आ गई, खुशी आ गई जरा।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है सर, आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो फाइनली रिजल्ट भी अच्छा ही मिलना चाहिए।
1: हाँ मैडम
0: जी, आप बताइएगा सर आज क्या फरमाइश है आपकी?
1: देखिए महाराष्ट्र में जब बारिश हो रही थी, एक गीत है टेल का फिल्म है और उसमें एक गीत है, मेरे छतरी के नीचे आजा क्यों भीगे रे कमला खड़ी खड़ी, ये पूरी ये थे इकड़ की यो तिकड़।
0: अच्छा ओके सर,
1: उसमें थोड़े मराठी म्यूजिक है और मराठी 2-3 शब्द है, बहुत अच्छा गीत है मैडम जी।
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं ये गीत आपको, धन्यवाद आपने हमें कॉल किया, मोस्ट वेलकम सर।
1: धन्यवाद मैडम जी, धन्यवाद।
0: तो चलिए एवरीवन, ये तो मोहन जी की रिक्वेस्ट हमारे पास आई है महाराष्ट्र से, आप क्यों पीछे हैं? हाँ मुझे पता है आप फोन चला रहे हैं, इंस्टा जो है ना वो स्क्रॉल कर रहे हैं, मैं कहना चाहती हूँ उसको स्किप करो और मुझे कॉल करो, अगर नहीं करोगे ना तो देख लेना हम आपसे नाराज हो जाएंगे, और आप नहीं चाहते ना कि खुशी आपसे नाराज हो, तो जल्दी से कॉल लगाइएगा और ये प्यारा से गाना सुनते जाइए।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIG करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और श्रोताओं, वक्त हुआ है 3:30। मुरादाबाद की अगर मौसम की बात करें तो मुरादाबाद का जो मौसम है ना, बड़ा ही स्पेशल है। अब आप सोच रहे होंगे ये स्पेशल कैसे है। देखिए, कभी तो बारिश हो जाती है, तो कभी बादल हो जाते हैं, तो कभी धूप निकल जाती है। मैं समझ ही नहीं पाती हूँ ये इतना क्यों बदलता है। अगर बारिश होनी है तो बारिश ही हो जाए ना। चलिए दोस्तों, मौसम तो बदलता रहेगा लेकिन हम अपने कॉलर से बात करते हैं, कहीं वो ना बदल जाए। कहने का मतलब है कि कहीं वो कॉल डिस्कनेक्ट ना हो जाए, क्योंकि बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं ना सब। हेलो फरमाइश।
1: हाँ हेलो फरमाइश, सबसे पहले खुशी जी को मेरा मोहब्बत भरा नमस्कार।
0: जी आपको भी नमस्कार सर, बताइएगा क्या नाम है आपका।
1: मैं जिला रामपुर ग्राम जहांगीरपुर से मोहम्मद इशरत आफ़ताब कर रहा हूँ।
0: इशरत जी बात कर रहे हैं, बताइएगा इशरत जी कैसे हाल चाल है आपकी।
1: मैम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हो और मुरादाबाद का मौसम कैसा है मैम ये बताइए।
0: मुरादाबाद का वेदर तो बस ऐसा ही है, कभी बादल हो जाते हैं तो कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप निकल जाती है।
1: हमारी तरफ मौसम ऐसा है, दो समोसा आलू का और चाय हो तो मैम लाइफ बन जाएगी।
0: अरे वाह वाह वाह, तो फिर देर किस बात की, जाइए अभी शॉप पर लेकर आइए दो समोसे और चाय खुद बनाइए आप।
1: मैं तो बढ़िया, समोसा और चाय स्वार गया था, उसके बाद में मैंने आपका केंद्र लगा दिया, काफी अच्छा लग रहा है मैम प्रोग्राम सुनने में।
0: शुक्रिया आपका बहुत बहुत सर। आपने चाय समोसे खाकर हमें कॉल किया है, अकेले अकेले खा लिया, हमें बुलाया भी नहीं आपने, कितनी गलत बात है आपकी।
1: मैम आप आइए, आपको खिलाएंगे जितने खाए जाम में।
0: अरे शुक्रिया, थैंक यू। आपने कहा सर,
1: मैं तो आपको मैम काफी दिनों से बुला रहा हूँ, हमारे रामपुर आइए।
0: जी जी बिल्कुल आएंगे सर, बताइएगा आज क्या सुनना चाहते हैं आप, मौसम इतना प्यारा है तो वहाँ का।
1: मैम आज दो गाने हैं, पहली मूवी है मिट्टी और सोना, गाने के बोल रहे हैं आजा साथी, और दूसरी मूवी का नाम पता नहीं, गाने के बोल याद हैं, जो दिल के पास रहते हैं वो दिल की में तोड़ जाते हैं। मैम आज की आला फरमाइश में आला सुन के लिए कर देना को सुनने वाले।
0: जी बताइएगा।
1: मैम सबसे पहले ये है बीवीपुर से मकसूद भाई, सुहाड़ से है विजय राठौर, और रामपुर से है अमान, साथ में आप और हम।
0: ओके सर ठीक है, सुनवाते हैं गाना, शुक्रिया आपने कॉल किया हमें।
1: थैंक यू, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार आपको भी, मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए श्रद्धे की रिक्वेस्ट पर सुनते हैं प्यारा सा गाना। दोस्तों अगर आप किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं कोई ट्रैक जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, तो बिना किसी देरी के आप कॉल लगा सकते हैं, नंबर मैं आपको बता देती हूँ 9837896896, और सुनते हैं ये ब्यूटीफुल ट्रैक।

0: हेलो हाय एवरीवन, आप सभी का वेलकम है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। और दोस्तों, गाने वही जो आपका दिल चाहे, तो देर किस बात की, जल्दी से फोन उठाइए और मुझे कॉल लगाइए। लेकिन हाँ, अगर आप ऑन द वे कार में हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगी सर एंड मैम कि केयरफुली ड्राइविंग कीजिएगा, सीट बेल्ट जरूर बांध लीजिए और ये जो इतना प्यारा सा मुखड़ा है ना, इस पर स्माइल भी रखिए। हाँ, मुस्कुराते हुए आप बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए जैसे अभी मुस्कुरा रहे हैं। ओहो, यकीन नहीं हो रहा है, सामने मिरर है, जरा देखूं। हाँ, अब लग रहे हैं ना स्मार्ट। ऐसे ही मुस्कुराते रहा कीजिए। देखिए, मुस्कुराहट जो है ना, वो किसी पैसों में नहीं आती है, है ना, तो उसमें कंजूसी क्यों करना। और मुस्कुराने के बहुत सारे फायदे हैं, पता है आपको? अच्छा, नहीं पता है, मैं बताऊंगी, चिंता मत करो यार। चलो अभी बात करते हैं, पहले कौन हमारे साथ जुड़े हैं लिसनर हमारे नेक्स्ट, उनसे बातचीत करते हैं, जान लेते हैं उनकी भी फरमाइश यहाँ पर। हेलो फरमाइश। हेलो
1: जी मैम।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: जी मैम, मेरा नाम है हैदर अली।
0: जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी हम बात कर रहे हैं मैम हरथले से।
0: अच्छा, हरथला से बात कर रहे हैं, बताइएगा क्या करते हैं सर आप?
1: जी हम कारपेंटर हैं।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है सर। और बताइएगा मौसम कैसा है बाहर का अभी?
1: मौसम मैम बड़ा अच्छा हो रहा है, मजा आ रही है, एकदम हल्की हल्की बारिश पड़ रही है, अभी चाय और समोसे ला के खाएंगे।
0: अच्छा, सब चाय समोसे की इतनी बातें कर रहे हैं कि हमें भी भूख लगने लगी है, अब हम क्या करें बताइए सर हमें।
1: तो मैम आपके यहाँ तक आने में मेरे को 10 मिनट लगेंगे, मैं आपके लिए और आपके स्टाफ के लिए चाहता हूँ।
0: अरे अरे, शुक्रिया सर, इतनी मोहब्बत के लिए थैंक यू, आपने कहा हमारा पेट भर गया।

0: अच्छी लग रही है भूख, आप ठीक है? बताइएगा।
1: कल आपका बर्थडे था मैम, मैंने आपको कॉल लगाई थी लेकिन कॉल लगी नहीं पाई मेरी।
0: ओके नहीं सॉरी की कोई बात नहीं है सर, आपने इतने प्यार से अभी कहा ना, तो आज भी हमारा जन्मदिन हो गया है। इतने प्यार से आपने बोला है, दिल से शुक्रिया सर कि आपको हमारा बर्थडे याद था। मुझे लगा कि पता नहीं, वैसे काफ़ी सारे श्रोताओं ने मुझे विश किया और कुछ लिसनर्स को थोड़ा देर से पता लगा तो उन्होंने भी मुझे विश किया। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया सर। बताइएगा आज आप क्या सुनेंगे सर? ओके और ये ट्रैक किन के लिए सुनना चाहते हैं आप ये गाना?
1: ओके
0: ठीक है, आप दोनों ब्रदर्स और तमाम सुनने वाले श्रोताओं के साथ सुनवाती हूँ गाना। आपने कॉल किया, शुक्रिया आपका सर। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक सर की पसंद का और लौट कर आते हैं हम। तब तक आप भी प्रयास कीजिएगा कि आपका भी कॉल जल्दी से लग जाए।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
4: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
5: NAC द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
4: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
5: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
4: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
5: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
0: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।

0: दोस्तों अभी आपने ब्यूटीफुल ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी डंकी से उमा ही अरिजीत सिंह जी की खूबसूरत सी आवाज में, और इस खूबसूरत गीत को लिखा था इरशाद कामिल जी ने, म्यूजिक था प्रीतम का। और दोस्तों इतना खूबसूरत गाने सुनने के बाद ना मेरा मन कर रहा है कि अभी नेक्स्ट कॉलर से भी हम बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि आप सबकी चॉइस ना एक से बढ़कर एक होती है, हमारी दोपहर को तो खूबसूरत बनाती है लेकिन तमाम सुनने वाले श्रोताओं के सफ़र को भी अमेजिंग बनाती है। मतलब जब वो स्टार्ट करते हैं ना अपना सफ़र तो पता नहीं चलता है कैसे कम्प्लीट हो जाता है। तो चलिए विवन अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ में कनेक्ट हुए हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: आहट दिल पे बेवजह नहीं होती, आहट दिल पे बेवजह नहीं होती, हर जुदाई इश्क की सजा नहीं होती, ये दस्तूर पुराना है जमाने का, दिल उसी का टूटता है जिसकी कोई खता नहीं होती। मैडम जी नमस्कार।
0: नमस्कार, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत शायरी थी आपकी सर, अपना नाम भी बताइएगा।
1: जी मैम शुक्रिया, मैं लाल मोहम्मद अंसारी, ग्राम करेली पुरानी मस्जिद जिला बरेली से बोल रहा हूँ।
0: जी बताइएगा सर, आपके शहर का मौसम कैसा है?
1: शहर का मौसम बहुत ही खुशनुमा और बहुत ही खूबसूरत मौसम है, क्योंकि आसमान पे बादल छाए हुए हैं और जहाँ पर सूरज है वहाँ पे बादल नहीं है, क्योंकि धूप खिली हुई है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है और आपके कार्यक्रम का पूरा आनंद ले रहे हैं बैठ के, तो और भी मौसम खुशगवार हो गया है।
0: शुक्रिया सर, आप इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, बताइएगा आज आप अपनी पसंद का कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: जी गाना सुनूंगा मैं, फिल्म का नाम है अंदाज, उसका ये गाना है कि आज कहना जरूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है, और किससे पहले चंद लाइनें हैं वो मैं आपकी नजर करना चाहूंगा।
0: इरशाद,
1: आरजू को दिल से मिटाना सकोगे, आरजू को दिल से मिटाना सकोगे, भुलाना भी चाहो भुलाना सकोगे, ये चिराग दोस्ती का दिल से जलाया है हमने, जल जाएंगे हाथ मगर बुझा ना सकोगे।
0: क्या बात है सर, सुपर्ब। ये लाइनें आप खुद लिखते हैं क्या?
1: मुझे लाइनें लिखने का और पढ़ने का बहुत शौक है, और मैं अक्सर फालतू टाइम में शेर व शायरी पढ़ता रहता हूँ, और कुछ लाइनें अगर मेरे दिल में आती हैं या मेरे दिमाग में आती हैं तो मैं उनको नोट कर लेता हूँ, क्योंकि कहते नहीं है कि ठीक है जिंदगी से क्या फायदा है, जिंदगी का थोड़ा रंगीन होना चाहिए और जिंदगी को खुशनुमा बनाना चाहिए, क्योंकि ये वक्त है कभी किसी के पक्ष में कभी किसी के पक्ष में और कभी किसी के पक्ष में नहीं होता, समय की तरह जाता है, इसलिए जितनी भी जिंदगी आपको मिली है खुशहाली और बहुत ही बिंदास तरीके से जीना चाहिए, और यही दुनिया का दर्शन।
0: बिल्कुल सर, और आपने कहा कि मैं फालतू टाइम में ही करता हूँ, तो वो आपका फालतू टाइम नहीं है, वो आपका कीमती टाइम है, आप उस टाइम को यूटिलाइज करते हैं एंड जो आपका पैशन है वो आप उसमें कंटिन्यू करते हैं। आपने हमें कॉल किया,
1: मतलब थोड़ा सा ये था कि जैसे काम के अलावा जब मुझे वक्त मिलता है तो मुझे
0: जी
1: तो वक्त इतना कीमती है, तो फालतू वक्त है ही नहीं किसी के पास, है ना?
0: एग्जैक्टली राइट सर,
1: इतना भी वक्त मिलता है तो आपके कार्यक्रमों को मैं लग जाता है और कुछ शेयर करूंगी।
0: जी शुक्रिया सर आपका बहुत बहुत, आपने कॉल किया, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये शानदार सा गीत। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं प्यारा सा गाना, आज कहना जरूरी है कि तुमसे प्यार हुआ, अगर आपको भी किसी से प्यार है तो कह दीजिएगा, लेकिन कहने के लिए कॉल तो करना होगा ना आपको, तभी तो आप अपने दिल की बातें उन तक पहुंचाना चाहोगे, जिन तक आप पहुंचाना चाहते हो वो तभी तो पहुंच पाएंगे ना जब आप मुझे कॉल करोगे, तो फटाफट से कॉल करो, इतना आलस मत करो, अच्छा नहीं होता है। हाँ बैठे हो आप, कॉल लगाइए यार, मैं मजाक कर रही हूँ, आप गुस्सा ना करा करो।

सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

0: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
1: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
2: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
2: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
3: मुरादाबाद
1: से संपर्क कीजिए।
2: नियम और शर्तें लागू।
4: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
5: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: गुड इवनिंग दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक। खुशी हाजिर है आपका फेवरेट शो लेकर, हेलो फरमाइश। और देखिए साथियों, मैंने कहा था ना आपसे कि कैसे एक घंटे का सफर कंप्लीट हो गया, मुझे भी नहीं मालूम और आपको भी नहीं पता चला। ओहो, 4 बज गए यारे, अभी तो शुरू हुआ था। ऐसा ही होता है जब हम अपनों के साथ होते हैं ना, तो वक्त का पता नहीं चलता। 4:01 हो गए हैं और हमारे अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनसे भी बातचीत करेंगे। हेलो फरमाइश जी। बताइएगा सर, पंजाब का मौसम कैसा है?
1: मौसम बेटा थोड़ी थोड़ी बात आज हुई है, पहले तो गर्मी बहुत ज्यादा भाई, हुण भी बहुत ज्यादा गर्मी है भाई।
0: अच्छा, हल्की हल्की बारिश हो रही है लेकिन गर्मी ज्यादा है, उमस है ना वहाँ पर?
1: हाँ बेटा, थोड़ी बार हुई है, सुबह 4 बजे तो 4:30 तक हुई है, बस थोड़ी हुई है भाई, उसके बाद फिर धूप निकल गई।
0: ओके ओके, कोई बात नहीं, बारिश आ जाएगी, इंतजार कीजिएगा थोड़ा। और मुरादाबाद का मौसम पूछ रहे हैं? मुरादाबाद का मौसम सो बादल भी है, हल्के हल्के बारिश भी हो जाती है हल्की फुल्की, और धूप भी निकल जाती है, ऐसा वेदर है हमारे मुरादाबाद का। हाँ जी, आप बताइएगा आज क्या सुनेंगे सर?
1: बेटा एक पुरानी फिल्म है, वो फिल्म है कि मेरा गांव मेरा देश।
0: हाँ जी,
1: उसमें जो एक
0: जी सर, ये गीत आपको सुनवा देते हैं, आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत्रीकाल जी, आपको भी। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं लता मंगेशकर जी साथ में मोहम्मद रफी साहब जी की आवाज में, प्यारा सा ट्रैक, कुछ कहता है ये सावन। वैसे सावन भी आने वाला है, जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं सावन की, पावन महीने की। सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

0: मैम आप कैसे हो?
1: मैं भी ठीक हूँ सर, बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी।
0: साजन मेरा उपकार है।
1: अच्छा ओके, कुछ कहना चाह रहे थे आप, कहिए।
0: एफएम परिवार में सब लोग अच्छे हैं?
1: हाँ जी, एफएम परिवार में सभी बहुत अच्छे हैं।
0: बहुत अच्छा लग रहा है मैम, आपसे बात हो रही है। बारिश नहीं हो रही है
1: जी? बारिश हो रही है।
0: हाँ बारिश हो रही है।
1: ओके चलिए, बारिश का आनंद लीजिएगा और ये प्यारा सा गीत सुनिएगा अपनी पसंद का। आप
0: मैम दोस्तों का नाम लेना चाह रहे हैं
1: जी, बताइएगा।
0: उमेश प्रजापति। आप तो हमारे साथ ही उमेश
1: जी।
0: और संगम।
1: हाँ
0: और सराकर।
1: ओके तो चलिए, आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं। धन्यवाद, आपने ये हमें गाने की रिक्वेस्ट की है और कॉल करने के लिए भी शुक्रिया। तो चलिए एवरीवन, सोनू जी की रिक्वेस्ट पर सुनते हैं शानदार गाना।

0: दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना एक खूबसूरत सा गाना फ्रॉम द मूवी गंगा जमुना सरस्वती से लता मंगेशकर जी की खूबसूरत सी आवाज में प्यारा सा गाना। और अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, जानेंगे उनकी भी फरमाइश यहाँ पर। हेलो फरमाइश
1: जी। हेलो फरमाइश, नमस्ते।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार सर। क्या नाम है आपका?
1: मैं अकोला महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, दीपक बोलपुरी।
0: जी बताइए दीपक जी, कैसे हैं आप?
1: हेलो।
0: हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है आपको?
1: जी आ रही, आ रही।
0: जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप?
1: जी बिल्कुल बढ़िया।
0: ओके, महाराष्ट्र में बारिश हो रही है?
1: जी जी, अभी तो रिमझिम बरसात का मौसम है अभी महाराष्ट्र में।
0: ओके, तो बताइएगा आज इतना प्यारा सा मौसम है महाराष्ट्र का, कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: सावन का गीत सुना दीजिए, सावन के मौसम ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया।
0: सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया, ये है ना?
1: जी।
0: ओके
1: जी
0: जी, तो सुनवाते हैं ये गाना आपको। धन्यवाद सर कॉल करने के लिए।
1: आपका भी शुक्रिया।
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन, दीपक जी की रिक्वेस्ट पर सुनते हैं ये गाना फ्रॉम द मूवी निगाहें, और लौट कर आते हैं बस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर।

0: दोस्तों अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना मोहम्मद अजीज जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में, खूबसूरत सा गाना सावन के झूलों ने तुझको बुलाया, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, इस तरह से लिरिक्स है। बहुत ही प्यारा सा ही गाना। और दोस्तों देखिए सावन भी आने वाला है, सभी को भी सब्री से इंतजार है। स्पेशली इतना पावन महीना है, वन मंथ महादेव जी को समर्पित होता है। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं इस वक्त, तो हमें बिना किसी देरी के कॉल लगा सकते हैं आप। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानते हैं उनकी फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्कार सर, क्या नाम है आपका?
1: जी मोहम्मद हारून बोल रहे हैं, ग्राम अकबरपुर तहसील जिलापति चमकपुर से।
0: जी हारून जी बताइएगा, कैसे हैं आप?
1: बस बहुत अच्छे हैं, और आप कैसी हो?
0: मैं भी ठीक हूँ सर, बताइएगा आपके यहाँ का मौसम कैसा है?
1: बस मौसम अच्छा है, खुशनुमा है, बारिश भी हो गई है हमारे घर आजकल, आज भी अच्छी बारिश हुई, कल भी हुई।
0: अच्छा जी, अभी तो हल्की फुल्की हमारे यहाँ पर भी बारिश हो रही है।
1: जी
0: आप बताइएगा सर, क्या फरमाइश है आपकी?
1: फिल्म का नाम है शाजन का घर। सावन आए बादल छाए।
0: ओके सर, ठीक है सुनवाते हैं गाना आपको, धन्यवाद कॉल करने के लिए। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये प्यारा सा गीत, और करेंगे आपसे भी बातें, शायद आप ही हमारे शो के अगले कॉलर बन जाएं। तो जल्दी से कॉल कीजिएगा बिना किसी देरी के।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चावला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे आईटीएम यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
2: नैक द्वारा ए ग्रेड एनआईआरएफ में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
1: डिप्लोमा से पीएचडी तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
3: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
4: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
5: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
6: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
7: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
8: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
9: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
8: पर पापा।
9: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
10: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।

0: दोस्तों, सावन तो आने वाला है लेकिन बादल छाए हुए हैं आसमान में और बहुत सारे शहरों में बारिश भी हो रही है। तो अभी अपने अगले कॉलर से जानेंगे कि उनके शहर का मौसम कैसा है। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्ते।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार सर। क्या नाम है आपका?
1: मैं गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजिर अफ्फार हां आपसे बात कर रहा हूँ।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सर?
1: अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे हैं। आप सुनाइए, आपके और आपके स्टूडियो में क्या हाल है?
0: सब बहुत अच्छे हैं सर, आपकी दुआएं हैं। आप बताइएगा, आज आपने हमें कॉल किया है तो कैसा लग रहा है आपको कॉल किया है आपने आज?
1: हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और आपको आठवें दिन नवें दिन बराबर कॉल लगाते हैं और कॉल लग भी जाती है।
0: जी सर, ये तो आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है कि आप नंबर लगाते हैं और आपका कॉल तुरंत लग जाता है।
1: तुरंत तो नहीं लगता,
0: टाइम लगता है,
1: मेहनत तो करना पड़ती है थोड़ी।
0: अच्छा,
1: बहुत
0: कभी ऐसा हुआ है, कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक बार डायल किया और तुरंत आपका नंबर लग गया हो?
1: वो ऐसा हुआ है जैसे 3 बजे हमने डायल किया तो फास्ट से लग गया हो कभी।
0: अच्छा, लेकिन मेहनत हर बार करनी पड़ती है ना?
1: जी बिल्कुल
0: जी। तो बताइएगा आज मौसम कैसा है आपके यहाँ का सर?
1: मौसम बहुत अच्छा है, बारिश तैयार है।
0: अच्छा, बारिश तैयार है, ओके।
1: कई दिन से बारिश हो रही है बराबर।
0: जी तो बताइएगा आज आप क्या सुनना चाहते हैं सर?
1: आज की फिल्म का गाना सुनना चाहूंगा। गाने के बोल हैं तू मेरी जिंदगी, ये कुछ सुनने वालों के नाम है।
0: जी जी बिल्कुल, बताइएगा सर।
1: राजिया खान है, सिमरन है, अयूब खान, जिशान मारती, शहनाज बाबू अंसारी, मिराज अंसारी, शफी अहमद अंसारी, रही दूला अंसारी, शाहनूर अंसारी, मकसूद हुसैन,
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं आपके सभी दोस्तों के साथ ये गाना। शुक्रिया कॉल करने के लिए सर।
1: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
0: मोस्ट वेलकम। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं सर की पसंद का प्यारा सा गाना फ्रॉम द मूवी आशिकी, अनुराधा पौडवाल साथ में कुमार सानू जी की खूबसूरत सी आवाज में ये खूबसूरत सा गीत।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद, कॉल करें 7055070552।
3: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम है आप सभी का एफएम मुरादाबाद 89.6 पर और वक्त हुआ है अभी 4:44। 4:44 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में राइट नाउ एवरीवन। आप भी मुझे कॉल कर सकते हैं, मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ 9837896896। और अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी आशिकी से, साथ में अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू जी ने इस गीत को गाया था। और बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार सर, अपना नाम बताइएगा आप।
1: जी मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश अली बोल रहा हूँ।
0: जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप?
1: जी बहुत बढ़िया है, और मुरादाबाद का जो फिल्म का एकदम सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और क्या है कि कभी कभार कोशिश करते हैं, फोन भी लग जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और कार्यक्रम का आपका जो करते हैं तो इसमें जो मतलब की अंदाज होता है वो बहुत ही अच्छा होता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। बताएगा त्रिपुरा का मौसम कैसा है?
1: मौसम तो अभी दिन दिन दिन बारिश हो रही है और बहुत अच्छा मौसम है।
0: अच्छा, त्रिपुरा में भी बारिश हो रही है?
1: जी जी बिल्कुल, और त्रिपुरा में अप्रैल से ही बारिश चल रहा है यहाँ पर। मतलब की हरियाली है यहाँ पर, टी गार्डन बहुत सारे है, और यहाँ पर मतलब पेड़ पौधे ज्यादा होने के कारण से यहाँ पर मौसम मतलब की बारिश का अप्रैल से हर साल शुरू हो जाता है, और ये चलता रहता है आपका सितम्बर तक।
0: ओके, सितंबर तक चलता है।
1: जी जी
0: जी, तो वहाँ का नज़ारा तो बहुत खूबसूरत होगा, चारों तरफ हरियाली है।
1: जी जी बिल्कुल, और यहाँ का जो ग्रीन टी यहाँ से भेजा जाता है पूरे भारत में, और आप लोगों को स्वागत पहुँचता होगा, आप लोग ग्रीन टी का आनंद उठाते होंगे शाम के वक्त।
0: बिल्कुल सर, हम भी ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं इवनिंग में, बहुत ही अच्छी है हेल्थ के लिए, एनर्जी भी मिलती है।
1: जी जी बिल्कुल
0: जी। आप बताइएगा आज क्या सुनेंगे आप सब?
1: आज मुझे कुमार जी का मूवी का नाम है आग गले लग जा, अभिजीत और कविता कृष्ण मूर्ति जी का आवाज में है, इसका टाइटल सॉन्ग सुनवा दीजिएगा।
0: जी सर, सुनवाते हैं गाना, धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: बिल्कुल धन्यवाद।
0: तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये टाइटल ट्रैक आग गले लग जा, कविता कृष्णमूर्ति जी और साथ में आवाज़ है अभिजीत जी की। तो ये प्यारा सा गाना सुनते हैं, उसके बाद आपसे भी बात करेंगे, आप भी मुझे कॉल कीजिएगा।

0: हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 और अभी आपने ये टाइटल ट्रैक सुना आ गले लग जा। 1994 में ये फिल्म आई थी, 1994 में ये फिल्म आई थी। कविता कृष्णमूर्ति साथ में अभिजीत जी की बहुत प्यारी आवाज़। और बात करते हैं अपने अगली कॉलर से। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश,
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, नमस्कार।
1: आपसे बात करके मुझे बहुत खुशी आ जाती है
0: जी। क्या नाम है आपका सर?
1: मैं सतीश बात कर रहा हूँ। आपका नाम है खुशी, और खुशी आ जाती है आपसे बात करके
0: जी। मुझे मालूम है सर, मेरा नाम खुशी है। आप बताइएगा कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं यूपी से बात कर रहा हूँ मैडम
0: जी। बताइए सर, कैसे हैं आप?
1: मैं बढ़िया हूँ। आपका मुरादाबाद में कॉल लगा दिया था, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रोग्राम सुनता रहता हूँ
0: जी। धन्यवाद सर।
1: मुरादाबाद के अंदर से
0: थैंक यू। बताइएगा
1: मौसम, मौसम कैसा है?
0: मौसम ठीक है। आप बताइए आप क्या सुनेंगे आज?
1: आज खुशी जी बहुत सुना दीजिए। गाना है, फिल्म का नाम है जुदाई।
0: हाँ जी।
1: गाने बोल है, मैं तुझसे ऐसे मिलूं कि जान बन जाऊं, क्यों का
0: जी। धन्यवाद सर आपका, सुनवाते हैं आपके पसंद का ये प्यारा सा गीत आपको।
1: आपके लिए गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ
0: जी। सर ठीक है, थैंक यू। तो चलिए भी वन सतीश जी की पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। और आपका अगर आज कॉल नहीं लगा है तो कोई बात नहीं है, आप परेशान मत होइए। ये मौका अभी आपके पास सैटरडे तक है, शनिवार तक आपके पास ये चांस है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं बेफिक्र होकर। फिलहाल तो दोस्तों मुझे अभी दीजिएगा जाने की अनुमति। नेक्स्ट शो लेकर हाजिर हैं आपकी अपनी प्यारी सी होस्ट आरजे रीना। आपको पता ही है इवनिंग मस्ती आई डे आपके लिए लेकर आती है मंडे टू फ्राइडे, और ढेर सारी मस्ती, ढेर सारा फन, एंटरटेनमेंट सब उनके शो में होने वाला है। तो आप कहीं मजाएगा, बने रहिए, चिपके रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, और खुशी को दीजिए जाने की अनुमति। अपना ख्याल रखिएगा, यूं ही मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर। चार योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अशोर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
4: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे आईटीएम यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
5: नैक द्वारा ए ग्रेड एनआईआरएफ में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
4: डिप्लोमा से पीएचडी तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
5: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
4: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
5: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
6: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज संसद भवन परिसर में श्री पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा सहित सभी क्षेत्रों में सुधारों की आवश्यकता पर लगातार बल दिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने कहा है कि देश में नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता 2014 में 76 गीगावाट से बढ़कर इस वर्ष 30 जून तक 288 गीगावाट से अधिक हो गई है। आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में श्री नाइक ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 से वित्त वर्ष 2025-26 तक देश के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में लगभग $46 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया गया है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों के जरिए मादक पदार्थों पर रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ड्रग तस्करी और इसके दुरुपयोग से निपटने के लिए पिछले महीने नारकोटिक्स कंट्रोल पर विजन डॉक्यूमेंट 2026 से 2029 जारी किया गया था। सिक्किम में नामची जिले में एनएचपीसी तीस्तापन बिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अब तक 11 शव बरामद किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। सरकार ने दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले में विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस के पैलेट गन के इस्तेमाल करने की सोशल मीडिया की खबरों को गलत बताया है। सरकार ने पुलिस के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कील लगे डंडों के इस्तेमाल करने के दावों को भी खारिज किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तंत्र जांच इकाई ने कहा कि ये सभी दावे झूठे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोप्जो में राष्ट्रपति गॉर्डाना सिंजिवास्को दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
7: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
6: पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया, तो वहीं अमेरिका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठक शुरू की। ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज का पायलट चरण शुरू किया है। ये देश भर में जमीनी स्तर के डिजिटल क्रिएटर्स की पहचानने, उन्हें आगे बढ़ाने और बढ़ावा देने के लिए एक पहल है। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत की एचएस प्रणॉय और देविका सिहाग का अभियान आज पहले ही दौर में समाप्त हो गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बात जब सहना खुद को हो तो बात के तमाशा क्यों करना। देखिए हर चीज़ें होती है जो अब आपको पता है कि कहीं से आपको जवाब नहीं मिल पाएगा, चाहे आप कितना भी कुछ कर लो तो बातों का तमाशा बना के क्या करना है, कुछ नहीं करना होता। बस अपने आप में सिमट जाइए, खुद को समझाइए। हम दूसरों को चेंज नहीं कर सकते हैं, खुद को कर सकते हैं। खुद को करिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, एंजॉय करिए, क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ के ऊपर, एक सवाल के ऊपर हम पूरी ज़िंदगी गुजार देंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे ज़िंदगी में। सो आज का डे हमारे लिए बहुत खास है, 21 जुलाई। और ये महीना भी यानी कि 20 दिन कैसे निकल गए ना, पता ही नहीं चला। और ये 10 दिन भी कैसे निकल जाएंगे, कुछ नहीं पता चलेगा। फिर से 1 तारीख आएगी और फिर से कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगी। कभी किस चीज़ में बढ़ोतरी मिलेगी तो कुछ चीज़ों में थोड़ा सा सांस मिलेगा। तो अब देखना ये है कि आखिरकार 1 तारीख से फिर से क्या चेंज होने वाला है, यानी कि 1 अगस्त देखना है क्या चेंज होता है। फिलहाल आप आर्जेरीना के साथ कनेक्ट है जी, 2 घंटे ढेर सारी बातें करेंगे, आखिरकार क्या हो रहा है क्या नहीं, आज का क्या स्पेशल डे है, देश दुनिया में क्या हलचल मची हुई है, हर चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। फिलहाल आप सभी के लिए एक शानदार गाना।

0: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
3: NAC द्वारा A ग्रेड NIRF में पूरे देश में।

0: फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक,
1: डिप्लोमा सी PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
0: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई,
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी,
0: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।

दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच बोली में थोड़ा रेयान भी टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ BADSHA नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा दी तेरी ना

क्या बात है जी, बादशाह की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत आपने गाना एंजॉय किया श्रोताओं। और समय की बात करूं तो 5:18 हो चुके हैं। आर्जेरीना के साथ आप कनेक्ट है एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और जो मतलब आप सभी को पता है कि आखिरकार दिल्ली में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मतलब हमें लगता है कि अब खुद के लिए आवाज़ उठाना भी गुनाह हो गया है। पहले के टाइम में, यानी कि जब अंग्रेजों के टाइम में जब महात्मा गांधी जी धरने पर बैठते थे तो अंग्रेज खुद चलकर आते थे उनके पास ये पूछने के लिए कि आपकी क्या मांग है। उस टाइम कोई इतनी ज्यादा लाठी से पिटाई, इतना ज्यादा हंगामा नहीं होता था, बल्कि अंग्रेज जाते थे पूछने के लिए कि हाँ भाई बता तेरे को क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, और उस प्रॉब्लम को सुना जाता था, सॉल्यूशन निकाला जाता था। लेकिन अब हमारी देश की स्थिति ऐसी हो गई है कि भैया आप दिन रात धरने पर बैठे रहो, आपकी सुनवाई बहुत लेट होती है। दूसरी बात देखिए, जहाँ तक बच्चों के सवाल है, एजुकेशन जिसको बोला जाता है कि देश का कोई भी बच्चा, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे गड्डी लुहार के बच्चे हो चाहे सड़क पे रहते हो, किसी को, हर किसी को एजुकेशन का हक है। एजुकेशन हर किसी के लिए है, हर कोई प्राप्त कर सकता है, हर किसी का अधिकार है एजुकेशन का। लेकिन क्या ये स्थिति रहेगी तो क्या किसका मन करेगा भैया यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए? यानी कि भगवान का दूसरा नाम डॉक्टर होता है। जब वही नीट जितने भी एग्जाम हो रहे, हर बार आप यही सुनने को आता है कि पेपर लीक हो गया है दोबारा होएगा। अरे उस बच्चे के बारे में सोचिए कि मेंटल हेल्थ उसकी कैसी है, जिसने जो क्या वो एक साल से तैयारी कर रहा है, इसका मतलब वो पागल है, उसको नहीं करना चाहिए। या फिर वो बच जाता है जो पेपर लीक कर रहे हैं, गलती कसूर होती है बच्चों की, बच्चे डिप्रेस होते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड आखिर तक कहाँ तक करेगा कोई बच्चा, और कितना सामना करेगा किस चीज़ का जब बार बार पेपर लीक होंगे? तो बस यही चीज़ है कि आज बच्चे यानी कि दिल्ली के सड़कों पर ऐसे जा रहे हैं और फिर उनको ऊपर लठ बरसाया जा रहा है। मुझे लगता है कि बच्चों के ऊपर लाठी ना बरसा कर जो पेपर लीक कर रहा है ना, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, उनको सख्त से सख्त कड़ी सजा दी जाए ताकि आगे ऐसे ना हो। और ये एक और बात जो कि मुझे हालांकि नहीं करना चाहिए, जो बलात्कार होते हैं उनको तो हम छोड़ देते हैं, उनके ऊपर लाठी नहीं बरसाते हैं, उनके ऊपर ये फाइलें खुलती है वो फाइलें खुलती है फिर वो फाइलें बंद हो जाती हैं, और जब बेगुनाह है उनके ऊपर लाठियाँ बरसती है। पता नहीं भैया क्या हो रहा है देश में, कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, बस जो चल रहा है चल रहा है, अब इसमें क्या ही कर सकते। लेकिन इतनी गुजारिश तो ज़रूर है, अगर बच्चों के लिए एजुकेशन आपने बनाई है तो उनकी मांग भी सुननी चाहिए, जो पेपर लीक कर रहा है उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि ऐसी स्थिति देश में दोबारा ना आए और बच्चे फिर से ऐसे कदम ना उठाए जो उनको सड़कों पर उतरना पड़े, एजुकेशन छोड़कर अपनी पढ़ाई छोड़कर वो कल फिर यानी कि सड़कों पर उतरे, ये स्थिति नहीं होना चाहिए। फिलहाल ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते, बस बने रहिए आर्जेरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। फिलहाल आपकी क्या राय रहेगी नहीं रहेगी आप भी मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, नंबर है 9823789896। चलिए जी फिलहाल गाना सुनते हैं और उसके बाद लौट कर आते हैं आपसे।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
4: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
3: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
4: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
3: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
4: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
5: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
6: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

जी गुड वाल इवनिंग है अर्जुरीना के साथ एफ एम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो समय हो चुका है 5:32 और आज की तारीख है यानी कि 21 जुलाई। आज का दिन कई खास वजहों से हमें यानी कि याद किया जाता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो नेशनल जंक फूड डे, यानी कि यह दिन हमें याद दिलाता है कि स्वाद का मजा लीजिए लेकिन अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि कभी कभार बर्गर या पिज़्ज़ा ठीक है लेकिन रोज़ाना पौष्टिक भोजन ही हमारे बॉडी को स्वस्थ रखता है और हमें ठीक भी रखता है। वहीं अगर मैं बात करूं भारत में 21 जुलाई को पश्चिमी बंगाल में शहीद दिवस मनाया जाता है। आज के ही दिन यह दिन यानी कि 1993 में कोलकाता में पुलिस फायरिंग में शहीद हुए 13 युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए यह डे मनाया जाता है। उनका बलिदान लोकतंत्र और अधिकारों के लिए संघर्ष को याद किया जाता है। और साथ ही साथ इसके अलावा त्रिपुरा में आज खर्ची पूजा की जाती है, इसका विशेष महत्व है। यह राज्य के सबसे बड़े पारंपरिक त्योहारों में से एक है जो हमारी संस्कृति आस्था को विविधता तक प्रकृति को तक पहुंचाता है और हमें जोड़ कर रखता है। तो इससे हमें यही पता चलता है श्रोताओं, एक तो हम अपने अपने संस्कृति से हमें कनेक्ट रहना चाहिए, दूसरी बात जंक फूड कभी कभी ठीक है लेकिन अगर आप डेली खाते हैं तो आपके सेहत पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आपको भी पता है। पौष्टिक भोजन जो होता है घर का सिंपल खाना वो ही हमें यानी कि अंदर से एनर्जी देता है और आपको स्वस्थ भी रखता है। इसीलिए हेल्दी खाना खाइए और आप भी हेल्दी रहिए और यूं ही रेडियो सुनते रहिए। अगला गाना भी बहुत ही शानदार है श्रोताओ, लौट कर आते हैं इस स्टेशन पर, बस बने रहिए आरजू रीना के साथ रेडियो के सुई में, क्या ना जी बिल्कुल नहीं घुमानी है। चलिए

0: शनिवार राती
1: मुझे नींद अच्छे से आती, शनिवार राती मुझे नींद अच्छे से आती। भैया किसको अच्छे से नींद आती है, क्योंकि सबको पता होता है भाई अगले दिन है संडे, और संडे को कोई टेंशन नहीं है भैया, आराम से सो जाओ, मजे ही मजे हैं, है ना, यही सोच कर सोते। लेकिन टेंशन मत लीजिए, आज सैटरडे शनिवार नहीं है जी, आज यानी कि ट्यूसडे है, यानी कि मंगलवार है आज, ज़्यादा खुश मत होइए आज। दिस साइड आरजेडी ना एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ तो 5:41 हो चुके श्रोता, और आप कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो में आरजेडी ना के साथ जी। तो आज कहाँ, यानी कि अब बात कर लेते हैं वेदर अपडेट के बारे में, क्योंकि वेदर के साथ अपडेट हमें रहना चाहिए श्रोताओं। और आज की तारीख 21, कल है 22 जुलाई, और कल का दिन सच में बहुत खास है। कल तिरंगे के लिए क्या है उसके बारे में भी बताएंगे हम आपको, दिल थाम के बैठे रहिए जरा जी, कल तक दिल को थाम कर आपको बैठना है। काम करते रहना, देखिए कि जगह नहीं बैठना है, गलत बात है। यानी कि कल 22 जुलाई को 16 राज्यों में बारिश आंधी तूफान बताई जा रही है। वहीं दिल्ली यूपी बिहार के 16 राज्यों में भैया झमाझम आंधी तूफान और बारिश की संभावना जताई जा रही है। उसमें कनेक्ट है उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम में भी रेड अलर्ट और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन कई इलाकों में बाढ़, भूकंप की भी और बिजली गिरने तक की भी संभावना जताई जा रही है। जब हवाएं इतनी तेज वेग से चलेंगी तो यही होएगा, इसीलिए खुले एरिया में जाने से बचे, रीना आपको बार बार बोलती है, और बाहर आप निकल रहे हैं क्योंकि अब मौसम जो है ये कभी भी करवट लेती रहेगी। भैया सावन की शुरुआत होने वाली है बहुत जल्द, कम समय रह गए यानी कि 8 दिन और रह गए हैं और फिर सावन की शुरुआत, तो बारिश तो आपके साथ, आपको सतर्क रहनी है, छाता अपने साथ रखना है, आपने रेनकोट अपने साथ रखना है बाहर आप जा रहे हैं तो। अदरवाइज पता चले आप बाहर गए और बारिश आ गई, आप गीले हो गए तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने साथ ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वो ज़रूर रखिए गाइस, और रखना भी चाहिए। और इसी के साथ मिलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद, बस गेड़िया शेड़िया लगाते रहिए आरजेडी ना के साथ। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं बहुत ही प्यारा।

0: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आर्जुरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6। और समय की बात करूं श्रोताओं, तो 5:54 हो चुके हैं। और अगर मैं अभी टेम्परेचर की बात करूं तो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है मुरादाबाद का। आज का मौसम थोड़ा सा, यानी कि भैया धूप और ऊपर से हल्की हल्की फुहारे वाली बारिश। लेकिन अगर कल की बात करूं तो कल बताया जा रहा है कि मुरादाबाद बिहार और दिल्ली के, यानी कि 16 राज्यों में

बारिश की संभावना जताई गई है, तो बस किस चीज़ की टेंशन लेनी है, बस अगर आप बाहर जा रहे हैं तो रेनकोट और छाता ज़रूर अपने साथ रखिए। और साथ ही साथ अगर आप बिग बॉस देखने के दीवाने हैं तो बहुत ही जल्द 20वां सीरीज है वो बहुत ही जल्द चालू होने वाला है, क्योंकि बिग बॉस यानी कि 20 साल अपने पूरे कर चुके हैं श्रोताओं। सो अब हम आपको मिलेंगे यानी कि 6 बजे ब्रेकिंग न्यूज़ के बाद मिलने वाले हैं और फिर से करेंगे ढेर सारी बातें। तब तक के लिए कनेक्ट रहिए आर्जेरीना के साथ, एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।

0: स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने सदन के कामकाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। वैश्विक चुनौतियों और भू राजनैतिक उथल पुथल के बावजूद भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पास कर दिया। अब यह विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में UCC लागू हो जाएगा। UCC के मुख्य प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह अब मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी तथा महिला और पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दे दिया है। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है। गीतांजलि ने रविवार को उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें न्यायालय ने सरकारी अस्पताल में चल रहे उनके इलाज में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपिये में राष्ट्रपति गोडाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों ही देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
1: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने IT, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
0: संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बंद और चक्का जाम जारी है। सोशल मीडिया पर JAAC ने 23 जुलाई को महत्वपूर्ण दिन बतलाते हुए लोगों से आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए न्याय और अपनी मांगे मनवाने के लिए विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार एजेंसी ने POJK में अशांति पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग की थी। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में पुरुष सिंगल्स में भारत के HS प्रणॉय को मलेशिया के लियोन जून हाउ से हार का सामना करना पड़ा है। महिला सिंगल्स में देविका सिहाग को थाईलैंड की बुसानन ओंगबा मरुंगफान ने हराया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. Both houses of parliament were adjourned for the day following.
3: Ja Simran, ja jee le apni zindagi.
4: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
5: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन की मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
6: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

हेलो जी, गुरु रंधावा जी के गाने सुन के ना सच बताऊँ बॉडी में एनर्जी आ जाती है ना। थोड़ा सा एनर्जी डाउन हुई लेकिन जब इनके गाने सुनो पैर अपने आप थिरकने लग जाते, डांस करने का मन हो जाता है जी। और आप दूसरे घंटे में शुरुआत हो चुकी है, दूसरे घंटे में प्रवेश कर चुके हैं आप आरजे।

वो जीभ का जो कलर है वो अलग ही चेंज हो जाता है, बैंगनी कलर का हो जाता है। कितना खूबसूरत था ना वो दौर। लेकिन अभी भी बहुत से बच्चे हैं जो एंजॉय करते हैं, और जो बड़े हो गए हैं वो सोचते हैं कि यार काश हमारा बचपन कितना अच्छा था ना, बहुत खूबसूरत था। तो देखिए अभी भी मार्केट में बहुत अवेलेबल है, अगर अभी यहाँ तक आपने नहीं खाई है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो। देखिए जामुन ज़रूर खाना चाहिए, हर फल का अपना अलग ही मज़ा होता है, हर सीज़न में अलग ही मज़ा होता है। क्या आप जानते हैं स्वाद के साथ साथ जामुन सेहत का भी खजाना है। आयु मंत्रालय के अनुसार जामुन में भरपूर एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी और आयरन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है, इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है और ब्लड शुगर को संतुलित रखने में सहायता रखता है और बहुत अच्छा रखता है। इसके अलावा जामुन में मौजूद फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखता है। जहां बोलते हैं यार थोड़ी थोड़ी देर में क्रेविंग हो जाती है खाने के लिए, लेकिन ये तो आपकी जो क्रेविंग है ना उसको ये कम करता है। तो दोस्तों जामुन हमेशा अच्छे तरह धोकर खाइए, चाहे आप खरीद कर ला रहे हैं चाहे आप पेड़ से तोड़ कर खा रहे हैं, उसको अच्छे से वॉश करिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में भी ना खाएं और खाली पेट तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। खाली पेट खाने से बचे। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है तो डॉक्टर की सलाह से ही आप खाइए, ठीक है जी। क्योंकि हम खुद डॉक्टर बन जाते घर पर, वो हमें नहीं बनना चाहिए। क्योंकि जामुन दिख जाए तो सिर्फ उसका स्वाद ही नहीं, अपने बचपन की यादें भी बहुत ताजगा तरोताजगी करिए और एंजॉय करिए। चलिए फिर मिलते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक के बाद श्रोताओं, तब तक के लिए कहीं नहीं जाना है ना, आपको पता है ना, आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिए और छोटे छोटे पैग लगाते रहिए जी।

0: मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
2: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
1: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
2: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
1: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
0: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आज रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर जाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। समय की बात करूँ तो 6:19 हो चुके हैं और कहते हैं ना श्रोताओं, एजुकेशन का कोई भी यानी कि एज मायने नहीं रखता है। एजुकेशन आप चाहे किसी भी एज में है आप हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और ये बातें मैं क्यों कह रही हूँ आपको, क्योंकि हरियाणा के 63 एज की दादी यानी कि सुशीला देवी जी ने 10वीं की परीक्षा पास की है और उन्होंने नंबर यानी कि 79% उन्होंने यानी कि अंक प्राप्त किए हैं। और उनका सपना था कि वो कुछ बने, यानी कि पढ़ाई पूरा करने के बाद गांव की सरपंच बनने अपने सपने को पूरा किया। उनका जब वो पढ़ती थी तभी से उन्होंने सोच रखा था कि गांव का जो है सरपंच तो मुझे बनना है, गांव की मैं सरपंच तो बनूंगी चाहे कुछ हो जाए। लेकिन कहते हैं ना, जब आपकी मेहनत और आपकी लगन है तो पूरी कायनात आपको कुछ नहीं कर सकती। आपका बस आपका डेडिकेशन होता है जो आपके आपके अपने गोल तक लेकर जाता है। और एज का क्या है यार, एज तो सिर्फ एक अंक है, बस शुरुआत करिए, कुछ भी हो जाए, बस एक्सक्यूजेज नहीं होने चाहिए कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। अगर आपके बीच में एक्सक्यूजेज आ गए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे दादी ने 63 की एज में 10th पास आउट किया और उसके बाद अपने गांव की सरपंच बन गई। तो अभी आप चाहते हैं कुछ करने के लिए तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, शुरुआत करिए। क्योंकि शुरुआत के लिए कल का इंतज़ार मत करिए, शुरुआत के लिए आज से ही ट्राई करिए और देखिए फिर ये जो रंग है वो कैसा आता है आपके साथ निकल कर। इसके बाद मैं लेकर आने वाली हूँ आप सभी के लिए क्या कड़क सवाल, आज का क्या होने वाला है श्रोताओं। और बस कनेक्ट रहिए आज की कड़क सवाल का इंतजार, बस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

दिला दी घर चंडीगढ़ में क्या बात है जी, बहुत ही शानदार गाना आपने एंजॉय किया अर्जुना के साथ। और भैया समय हो चुका है 6:26 और इसी बीच चोरीना लेकर आ गई आप सभी के लिए कड़क सवाल। और कड़क सवाल भी बहुत ही आसान है भैया, एकदम झकास वाला, भौकाल वाला। ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप जितना बांटो वो उतना ही बढ़ता जाता है, दुगना हो जाता है, आपके पास डबल होकर आपके पास और रिटर्न आता है। सोचिए और मैसेज करिए, नंबर है 9837896896 कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप जितना बांटो वो आपके पास रिटर्न डबल आता है और बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सोचिए और मैसेज करिए। देखिए बहुत सिंपल सा आसान क्वेश्चन मैंने पूछा है आज, तो बस थोड़ा सा आपने जवाब दे देना पड़ेगा। चलिए फिलहाल हरियाणवी गाने आपको सुनाते हैं, ठीक है जी, एंजॉय करिए।

0: ਜਾ ਸਿਮਰਨ, ਜਾ ਜੀ ਲੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट ईएमआई और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
3: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे आईटीएम यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
4: नैक द्वारा ए ग्रेड एनआईआरएफ में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
3: डिप्लोमा से पीएचडी तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
4: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
3: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
4: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
5: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।

0: What makes a hangout a great?
1: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है अर्जुरीना के साथ। और समय की बात करूँ, 6:00 यानी कि 35 मिनट हो चुके श्रोताओं, और बॉलीवुड के गलियों की तरफ चलते हैं, है ना, क्योंकि बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है कि भैया कौन सी मूवी रिलीज़ होने वाली है, और साथ ही साथ जब आपके फेवरेट वाले सिंगर उस मूवी में अपनी गाने में अपनी आवाज़ दे, तो क्या बात है। फिर तो हर कोई कहता है भाई ये मूवी और ये गाना तो सुनना बनता ही बनता है। यानी कि अपने अरिजीत सिंह जिन्होंने यानी कि कहा था कि हम अब गानों से यानी कि

संन्यास ले लेंगे, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि हम अपना शो जारी रखेंगे। फिलहाल उन्होंने इमरान हाशमी के फिल्म यानी कि आवारा पंटू यानी कि उसमें गाना है ये आवारापन, उन्होंने यानी कि अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज़ दी है, लेकिन ये जो गाना है बहुत ही, जिनका भैया दिल टूटा है तो उनके लिए गाना है बहुत ही मशहूर ये आवारापन अरिजीत सिंह की आवाज़ में, लेकिन ये जो जिसके संगीत का यानी कि अमाल सिंह ने तैयार किया है, लेकिन ये गाना अरिजीत सिंह की आवाज़ में, और ये इमरान हाशमी के फिल्म यानी कि आगामी फिल्म आवारा पंटू यानी कि 14 अगस्त 2026 को सिनेमा घरों में रिलीज़ होने वाली है। भैया जिनके भी फेवरेट वाले एक्टर है इमरान हाशमी, ये मूवी बहुत ही लाजवाब होने वाला है आवारा पंटू, तो ज़रूर देखिएगा। अगर आवारा फर्स्ट पार्ट आपने देखी होगी मूवी का, तो ये सेकंड जो मूवी है तभी समझ में आएगी पूरे स्टोरी, यानी कि पहले मूवी से कनेक्ट होती हैं। और जो ये आवारापन वाला गाना है वो तो डेफिनेटली सुनना है भैया, क्योंकि अरिजीत सिंह की आवाज़ में है ना। और आज मैंने आप सभी से बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप जितना बांटना चाहते हो वो उतना ही बढ़ेगा। और देखिए आज के टाइम में ना वो बांटना भी चाहिए, जो कि बहुत कम हो चुका है, बहुत कम। बहुतों के अलग अलग आंसर होंगे, लेकिन देखते हैं भैया किन का क्या आंसर आता है। नंबर है 9823789896 पर आपने पहुंचाना है मैसेज करके कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे जितना बांटो वो उतना ही बढ़ता ही जाता है। चलिए जी फिलहाल गाना सुनते हैं, लौट कर।

0: Today, AI.
1: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
2: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
3: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है अर्जुरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो 6:46 हो चुके हैं श्रोताओं, और 30 जुलाई से आप सभी को पता है कि श्रावण की शुरुआत हो जाएगी, और 30 जुलाई से शुरू होने वाली है कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार ने इस बार आस्था और जन सुविधा के बीच संतुलित बनाए रखने के लिए रणनीति यानी कि अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी है। आम नागरिकों को राहत देने के लिए दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड हाईवे और गंगा एक्सप्रेसवे पर सामान्य वाहनों का जो आवाजाही है वो उस टाइम थोड़ा सा रोक दिया जाएगा, ताकि जो कांवड़ यात्री हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। और साथ ही साथ अब की बार खास व्यवस्थाएं की जाएंगी, और साथ ही साथ कुछ चीज़ें हैं जिसकी देखरेख बहुत अब की बार निगरानी में होने वाली हैं। जैसे कि आप देखा होगा, आप सभी ने सुना भी होगा कि जो कांवड़ लेकर जाते हैं उस टाइम वो चाकू कुछ ऐसी चीज़ें ले जाते हैं जहाँ पर लड़ाई होती है, तो बहुत सी ऐसी न्यूज़ें सुनने को मिल जाती हैं। तो इस अब की बार इस चीज का भी ध्यान रखा जाएगा। तो इस बार अगर आप कांवड़ ले जाने की सोच रहे हैं तो देखिए, कांवड़ ले जाना अच्छी बात है, भगवान के पास जाइए, आस्था है, कनेक्ट होइए भगवान के साथ, लेकिन गलत तरीके से मत जाइए। आप भगवान के पास जा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ उनसे कनेक्ट होने चाहिए, ना कि अपने साथ कुछ अलग ऐसी चीज़ें ले जाए और कुछ मन में मोटाव हो जाता है। तो कुछ नहीं पता इंसान का दिमाग का कि कब क्या हो जाता है, क्योंकि आज के टाइम में पेशेंस लेवल है नहीं, गुस्सा इतना ज़्यादा आ जाता है। तो इसी चीज़ को देख रेख की जाएगी। चाकू वगैरह अगर कोई भी लेके जाता है तो वो नहीं ले जा पाएंगे आप, और सुविधाएं आपको पहले से ज़्यादा मिलने वाली है। और साथ ही साथ साफ़ सफाई की जो है गंगा के घाट पर वो भी अच्छे तरीके से अब की बार रखा जाएगा। सो सावन की शुरुआत होने वाली है, हर हर महादेव बोलिए, और आज जो रीना के साथ कनेक्ट रही है FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और आज का कड़क सवाल जो कि अगली टाई यानी कि आप ही के मैसेज की बारी है श्रोताओं, आज मैंने आप सभी से यही पूछा है कि ऐसी कौन सा चीज है जिसे आप जितना बांटोगे उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, जो कि आज के टाइम में लोगों के पास मतलब बांटना ज़रूर चाहिए हमें, कोई भी हो, बच्चा हो, छोटा हो, बड़ा हो, हर किसी के आगे आज के टाइम में बांटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान आजकल अकेले रहते हैं, उनको परेशानी होती है, एंजाइटी हो जाती है भैया, उनको बड़ा टेंशन हो जाता है, डिप्रेस हो जाते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जितना आप बांटोगे वो उतना ही बढ़ेगा, सोचिए सोचिए। फिलहाल अगला गाना भी बहुत बढ़िया है भैया, बहुत बढ़िया, इस गाने को एंजॉय करिए, गड्डी शड्डी लेकर निकलिए, नेहा कक्कर की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत गाना।

क्या बात है जी, मेरा कौन इतने में आर्जरीना हूँ। हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है आर्जरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। आखिरकार नेहा कक्कर जी के गाने बड़ी भैया बड़े लाजवाब होते हैं। कहते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाल। ये पैकेट छोटा है लेकिन धमाल बड़ा वाला है भैया। चलिए, फिलहाल आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो आज इतना बांटोगे वो उतना ही डबल होके मिलता है, और आपके जो रिस्पेक्ट है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। बुढ़ी जदि बोल दी तो खंड लगती, जय श्री राम। रीना जी, आपके सवाल का जवाब होता है ज्ञान, जितना बांटो उतना ही बढ़ता है। ये कनेक्ट होते हैं हमारे साथ बबलू सहनी मुंबई महाराष्ट्र से, और ललिता जी का कहना है कि ज्ञान है। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग रीना जी, इवनिंग मस्ती शो में वेरी गुड इवनिंग जी, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं जी। और इनका कहना है कि मैम चाय पी लीजिए, मौसम बहुत ही औसम है। बिल्कुल जी, सही कहा आपने, मौसम बहुत अच्छा है, रात की नींद आपको बहुत अच्छी आने वाली है। एक्चुअल गर्मी में परेशान हो जाते हैं, लेकिन जब मौसम ठंडा हो जाता है तो अच्छा लगता है। हेलो रीना जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए। विक्की सागर जी कनेक्ट होते हैं, और इनका कहने की मैडम बीच बीच में हरियाणवी गाने भी प्ले कर दिया करो जी। अरे जी, ठीक है जी। और इनका कहने की प्यार, क्या बात है, जितना प्यार बांटो उतना ही आज के समय में अच्छी बात है। अगले मैसेज की बात करूं तो प्रिय मित्र आरजे रीना जी, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सर। नवनेश कुमार जी कनेक्ट होते हैं मुरादाबाद से, इनका कहना है कि ज्ञान, आप जितना ज्ञान बांटो उतना वो बढ़ता ही जाता है। अखे जी, चलिए अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं।

सृष्टि हमारे साथ कनेक्ट होती हैं और इनका कहना है कि ज्ञान जितना बांटो उतना ही बढ़ता जाता है। रीना मैम आप कैसे हो? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं? हेलो, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग जी। नेहा एंड स्वाति कनेक्ट होती हैं। दीपक जी कनेक्ट होते हैं लाइन।

0: पार से, और इनका कहना है कि मैडम प्यार है, आज के समय में प्यार जितना बांटो उतना ही अच्छा है, क्योंकि जैसे कि आपने बोला है कि लोग आजकल बाहर रहते हैं, घर से अकेले रहते हैं, तो वो डिप्रेस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, एंजाइटी आने लगता है उनको। तो मुझे लगता है कि आज के समय में ना लोगों को प्यार बांटना बहुत ज़रूरी है। जितना आप प्यार बांटते हैं उतना ही प्यार बढ़ता है, और आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ती है। जब ये मीठे शब्द निकलते हैं तो हर कोई अपना हो जाता है। क्या बात
1: है।
0: राहुल जी कनेक्ट होते हैं मुरादाबाद से, और इनका कहना है कि ज्ञान जितना बांटो उतना ही कम है। ये तो बिल्कुल सही है जी, जितना ज्ञान बांटो उतना कम है, लेकिन आज के टाइम में क्या बांटना जरूरी है। अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ यानी कि शालिनी जी कनेक्ट हो गई है मुरादाबाद से, और इनके कहने हैं कि ज्ञान के साथ साथ मैडम प्यार बहुत ज़रूरी है आज के समय में। बच्चों को ज्ञान बांटिए, और ज्ञान के साथ साथ उनके साथ प्यार बांटना भी बहुत ज़रूरी है। क्या बात है जी, बहुत अच्छा आंसर दिया है आपने। लेकिन आज हमारे शो आप सभी ने देखिए आंसर रही सही दिया है, क्योंकि ज्ञान भी उतना ही बांटना ज़रूरी है हमारे लिए, लेकिन आज के समय में जो बांटना है वो है सबसे ज़्यादा प्यार। जितना बांटते हैं उतने लोग खुश रहते हैं, आप भी हैप्पी रहते हैं। और फिलहाल मैं लेती हूँ ऐसे जाने की इजाज़त। विक्की सागर जी आपका बिल्कुल सही कहना है, मोहब्बत प्यार बांटिए और अच्छे से मिलजुल कर रहिए और ज्ञान बांटते रहिए। कहते हैं ना, जो आपके अंदर ज्ञान है अगर उसको आप नहीं बांट रहे हैं तो आप तक ही धरा का धरा रह जाएगा। अगर आप वो बांटते हैं तो वो दुगना डबल हो जाता है और आपको अंदर से खुशी होगी, हाँ भैया मैंने इसको कुछ सिखाया है, जो मेरे पास ज्ञान है उसको बांटा है, वो दुगना हो जाता है जी। चलिए इसी के साथ मैं लेती हूँ जाने की इजाज़त। आप सभी ने मैसेज किया, थैंक यू तहे दिल से, शुक्रिया, धन्यवाद। और मिलते हैं कल सेम टाइम एंड सेम जगह। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सुबह 11 बजे प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया। हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने सदन के कामकाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही भी कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वैश्विक चुनौतियों और भू राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पारित कर दिया। अब ये विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में UCC लागू हो जाएगी। UCC के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी, महिला और पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। गीतांजलि ने रविवार को उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें न्यायालय ने सरकारी अस्पताल में चल रहे उनके इलाज में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड NHPC ने कहा है कि सिक्किम के नामची जिले के स्मरदुंग स्थित NHPC तीसरा छठा चरण जल विद्युत परियोजना में हुई घटना के कारण का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की जाएगी। NHPC ने आज एक बयान में कहा कि सुरंग के अंदर 25 कर्मी फंसे थे, जिसमें से अब तक 11 की मौत हो चुकी है। NHPC ने बताया कि परियोजना दल जिला प्रशासन, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, स्थानीय अधिकारियों और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर चल रहे बचाव कार्यों में सहयोग कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपिये में राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जोनोव्स्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं। इससे पहले स्कोपिये में राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास विला वोडने में राष्ट्रपति मुर्मू का औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति मुर्मू की ये यात्रा किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर कल से फिलीपींस के मनीला की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। वे आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। आसियान से जुड़ी बैठकों के साथ साथ विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बनाई। वहीं पुरुषों में आर्यवीर दीवान, युषा नफीस और गुरवीर सिंह की तिकड़ी भी पुरुष सिंगल्स के तीसरे दौर में पहुंच गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: कॉल 7500153841।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
5: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपका दोस्त आरजी आनंद और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां हम बात करते हैं विकास, विरासत, उद्यमिता और स्वाद के प्रेरक कहानियों की,
6: के साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी। दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे उस शहर में इंडस्ट्रियल हब के रूप में माना जाता है, लेकिन आज अपनी थाली के स्वाद से भी पहचान बना चुका है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद।

0: जितना भी सरकार के जितने भी लाइसेंसेज है और उसको सब इंस्ट्रक्शन है कि इन लोगों को इसको किया जाए कि आराम से इजीली सबको सारा वो मिल जाए, जितने भी लाइसेंस हैं जिस तरह का भी है वो सब चीजें मिल जाए। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि ओडीओसी योजना सरकार ने स्टार्ट की है। थैंक यू सो मच।
1: अब बात करते हैं स्वाद की, जिसके बिना दाल रोटी अधूरी लगती है।
2: उत्तर भारतीय खान पान में अचार का खास स्थान है। गाजियाबाद के हरी मिर्च का अचार पारंपरिक विधि से तैयार होता है। ताजी हरी मिर्च, सरसों का शुद्ध तेल, सौंफ, मेथी दाना, राई, हल्दी और नमक का संतुलित मिश्रण और फिर धूप में प्राकृतिक रूप से पकाया जाता है।
1: और सेहत,
2: हरी मिर्च में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होती है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। सरसों के तेल को आयुर्वेद में एंटी बैक्टीरियल गुणों के ये जाना जाता है। आज 150 से अधिक कारीगर, 30 से ज्यादा होलसेलर और 2500 से अधिक लोगों को रोजगार, ये सभी इकाई जिलों में उद्योग केंद्र के निवेश मित्र पोर्टल पर पंजीकृत है, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है।
1: ये जो इतना बड़ा बदलाव आया है, इसकी नींव कहाँ से पड़ी?
2: इसकी शुरुआत हुई है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोटेक्ट यानी ODOP योजना से। इस योजना का उद्देश्य था हर जिले को पारंपरिक पहचान को उद्योग और बाजारों से जोड़ना। इसकी सफलता के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अभिनव कदम उठाया, वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजीन यानी ODOC स्कीम। अब हर जिले का एक खास व्यंजन भी ब्रांड बनकर उभरेगा।
1: लेकिन RJ सिर्फ पहचान बना देना ही काफी नहीं होता, छोटे उद्यमों को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग भी तो चाहिए ना?
2: बिल्कुल, और यही काम सरकार पूरी सक्रियता से कर रही है। सरकार ने सोया चाप और अचार उद्योग से जुड़े उद्यमी को कई नई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर अनुदान की सब्सिडी, आसान ऋण सुविधाएं और मुद्रा योजनाओं से आर्थिक सहायता, जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम, फूड सेफ्टी पैकेजिंग और गुणवत्ता सुधार की विशेष कार्यशालाएं, महिलाओं और युवा उद्यमियों को रोजगार के लिए प्रोत्साहन, निवेश मित्र पोर्टल के जरिए सरल ऑनलाइन पंजीकरण और लाइसेंस की सुविधा, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर फूड फेस्टिवल में अपने उत्पाद प्रदर्शित करने का अवसर, डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़ने की व्यवस्था।
1: यानी अब छोटे व्यापारी भी बड़े सपने देख पा रहे हैं।
2: बिल्कुल, सरकार की कोशिश है कि स्थानीय उद्यमी सिर्फ अपने शहर तक सीमित न रहें, बल्कि उनके उत्पाद देश और विदेश के बाजारों तक पहुंचें। प्रशिक्षण, तकनीकी और वित्तीय सहयोग के जरिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है।
1: और यही तो है असली विकास, जब स्थानीय हुनर को सही मन और सही समर्थन मिले।
2: सही कहा आपने, आज गाजियाबाद का स्वाद सिर्फ लोगों की थाली तक नहीं है, बल्कि हजारों परिवार की रोजी रोटी और आत्मविश्वास भी जुड़ चुका है। राज्य और राष्ट्रीय फूड फेस्टिवल मंच, आकर्षक ब्रांडिंग और आधुनिक पैकेजिंग, ई मार्केटिंग और डिजिटल प्रमोशन, निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण, आसान ऋण और सब्सिडी, प्रशिक्षण और गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम, इससे छोटे उद्यमियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुँचने का अवसर मिल रहा है।
3: नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष सिंह है और मैं जनपद गाजियाबाद में उपायुक्त उद्योग के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि आप सबको पता ही है कि 2018 में प्रदेश सरकार ने एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना एक जनपद एक उत्पाद के नाम से लॉन्च करी थी, जिसके माध्यम से जो हमारे परम्परागत आर्टिजन हस्तशिल्पी या हमारे जो परम्परागत उत्पाद रहे हैं 75 जनपदों में, उनको बड़े स्तर पर कामयाबी मिली और बहुत ही सक्सेसफुल स्कीम रही। और उसी के आधार पर भारत सरकार ने भी एक जनपद एक उत्पाद योजना शुरू की। अब एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत हमारे जो पारंपरिक उत्पाद हैं, जो औद्योगिक उत्पाद हैं उनको या आर्टिजन्स हैं उनको हमने कवर किया। अब उसी कड़ी में हमारी एक नई योजना एक जनपद एक व्यंजन योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन योजना लॉन्च की गई है, जिसके माध्यम से प्रदेश सरकार हमारे समस्त जनपदों के जो पारंपरिक रूप से जो खाने पीने की चीजें या व्यंजन हैं उनको हम प्रोटेक्ट करना, उनको आगे बढ़ाना, उनको प्रोत्साहित करने के लिए योजना लाई गई है। हमारी जनपद की कुजीन, जैसा कि आपको पता है गाजियाबाद में सोया चाप और मिर्च का अचार दो उत्पाद यहाँ ODOC के तहत चयनित किए गए हैं। अपने जो हमारे परंपरागत बनाने वाले लोग हैं इसको उनकी ट्रेनिंग भी देंगे, उनको टूल किट्स भी देंगे और उनको लोन के माध्यम से जो उनका अभी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्जिस्टिंग उनका जो भी यूनिट औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से या अपने घर पे कुटीर उद्योग के में अगर वो बना रहे होंगे उसको या रेस्टोरेंट के माध्यम से सोया चाप अपना बेच रहे हैं तो उनको हम फाइनेंस भी देंगे कि वो अपने काम को और अच्छा कर सकें, और उसके बाद उनको बेचने के लिए उसकी ब्रांडिंग और उनको मार्केट अवेलेबल कराने का भी काम इस स्कीम के माध्यम से किया जाएगा।
1: ये कहानी सिर्फ चाप और अचार की नहीं है।
2: बिल्कुल, आत्मनिर्भर

0: निर्भरता नवाचार और सशक्तिकरण की कहानी आज गाजियाबाद का सोया चाप दिल्ली एनसीआर के बड़े होटलों तक पहुंच चुका है। सरकार की नीति स्पष्ट है, स्थानीय को वैश्विक बनाना है।
1: मुझे तो अब भूख लगने लगी है।
0: बिल्कुल, तो श्रोताओं अगली बार जब आप गाजियाबाद जाएं तो एक प्लेट मलाई चाप और साथ में हरी मिर्च का अचार जरूर चखिए। उस स्वाद में आपको मेहनत, परंपरा और सरकार की दूरदर्शी सोच तीनों का मेल मिलेगा।
1: उत्तर प्रदेश सरकार की ODOC योजना ने यह साबित कर दिया है कि सही नीति और सही दिशा मिले तो हर जनपद विकास की मिसाल बन सकता है।
0: विकास सिर्फ सड़कों और रेल में नहीं, विकास झलकता है थाली के स्वाद में, युवाओं की रोजगार में और उद्यमियों के आत्मविश्वास में।
1: नमस्कार,
0: फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए स्वाद और एक नए विकास के साथ।
1: यही है
0: विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी नई।

अहमदाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: नमस्ते आदाब, मैं हूँ आपकी दोस्त व होस्ट छाया। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो। वैसे आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है आज के खास बातचीत में डॉक्टर गौरिका सिंघल। तो आइए मैम से मिलवाते हैं आप सभी को। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे स्टूडियो में।
1: थैंक यू छाया जी।
0: वैसे तो बहुत सारी बातचीत करेंगे आगे, लेकिन अपना इंट्रो दे दीजिए हमारे सभी श्रोताओं को।
1: मैं डॉक्टर गौरिका सिंघल, मैं नवजात शिशु व बच्चों की स्पेशलिस्ट हूँ। मैं अभी अपना क्लिनिक रीजन क्लिनिक्स में हूँ और साथ ही मैं एपिक्स अस्पताल के साथ एसोसिएटेड हूँ। इससे पहले 10-12 साल मैं GTB अस्पताल दिल्ली में थी और साथ ही मैं शांति गोपाल अस्पताल गाजियाबाद में भी मैंने काम।
0: वैसे मैम अगस्त का महीना चल रहा है और अगस्त का जो पहला हफ्ता होता है उसको हम मनाते हैं स्तनपान दिवस के रूप में। तो ये पूरा हफ्ता जो है स्तनपान दिवस पे लोग बात कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं एक दूसरे को। तो आप हमारे श्रोताओं को ये पहले समझा दीजिए स्तनपान सप्ताह है क्या।
1: बेसिकली इस सप्ताह का सबसे बड़ा फायदा ये है, ये इसीलिए मनाया जाता है ताकि हम जनता को जागरूक कर सकें कि बच्चे के लिए माँ का दूध व माँ को बच्चे को दूध पिलाना कितना फायदेमंद है और इसका क्या क्या फायदा बच्चे व माँ को मिलता है।
0: जी, तो अभी हम शुरुआत करते हैं इसके फायदे के बारे में। तो स्तनपान के फायदे क्या होते हैं शिशु के लिए।
1: माँ का दूध शुरू के 6 माह में शिशु के लिए पूर्ण व सर्वोत्तम आहार है। माँ के दूध में हर जरूरी पोषक तत्व होता है। शिशु के आंते जो है वो माँ के दूध के लिए ही अनुकूल है, इसीलिए इसे बच्चे को पचाने में बहुत आसानी होती है। साथ ही में जब माँ बच्चे को गोद में लेकर उसे स्तनपान कराती है तो माँ और बच्चे में भावनात्मक बंधन जो है वो और मजबूत हो जाता है। इसमें कुछ एंटीबॉडीज भी होती हैं जो शिशु को सर्दी खांसी जुकाम पेट कान के इन्फेक्शन इन सबसे रक्षा करती है। साथ में माँ के दूध पे बच्चे का मस्तिष्क का विकास सबसे ज्यादा पूर्ण होता है। 6 माह तक जो बच्चा माँ का दूध पीता है उसमें जब हम 6 माह के बाद ठोस आहार शुरू करते हैं तो आहार से होने वाली एलर्जी के प्रति सुरक्षा भी बच्चे को मिल जाती है। जो बच्चे स्तनपान कर रहे हैं उन शिशुओं में सामान्य से अधिक मोटा होने का कारण वह मधुमेह की संभावना भी कम हो जाती है।
0: ये तो रही शिशु के फायदे की बात, अब जरा हम आपसे जान लेते हैं कि माँ को क्या फायदे होते हैं।
1: स्तनपान से जितने फायदे शिशु को होते हैं उतने ही फायदे स्तनपान कराने से माँ को भी मिलते हैं। माँ का जो गर्भाशय यूट्रस होता है वह सिकुड़कर वापस अपनी गर्भावस्था की पहली स्थिति जाने में भी इस स्तनपान से मदद मिलती है।
0: जी,
1: साथ ही माँ को अपना जो बढ़ा हुआ वजन है वो कम करने में भी मदद मिलती है। एक दिन में स्तनपान कराने से लगभग 500 कैलोरी तक माँ बर्न कर सकती है। साथ में इसमें जिंदगी में आगे चलकर माँ को होने वाले टाइप 2 डायबिटीज यानी मधुमेह, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर इन सब से भी माँ को खतरा कम होता है। माँ को ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं और हृदय रोग संबंधी जो खतरा होता है वह सब भी कम हो जाता है। ये एकमात्र ऐसा भोजन है जो हर समय हर जगह और हर अवधि पे हर सही तापमान में उपलब्ध रहता है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि दूसरी महिलाओं के कंपैरिजन में मुकाबले में जो माँ स्तनपान करवाती है उसमें डिप्रेशन का खतरा भी कम हो जाता है।
0: जी, बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचा रही है। आई होप एकदम मतलब मस्त वाला दिमाग में घुसेगा। वैसे मैम, बच्चे कई बार दूध पीने के बाद भी रोते हैं, तो ऐसा क्यों होता है।
1: बच्चों के रोने के बहुत से कारण होते हैं। बच्चे का अगर डायपर गीला हो, उसे ठंड लग रही हो, उसे गर्मी लग रही हो, उसे गोद में आकर घूमना हो तो वह बच्चा रोकर ही बता पाता है। बच्चे का रोने का मतलब ये नहीं है कि माँ का दूध पूर्ण नहीं है। माँ का दूध पूर्ण हो सकता है, उसके बाद भी बच्चे का रोने का मतलब ये है कि वह दूध के सिवा और किसी चाहत की इच्छा रखता है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अक्सर हमारी भी आदत होती है, बच्चे रो रहे होते हैं, हमारा एक सिंपल सा फंडा होता है कि भाई उसको भूख लगी है, पर हम अदर चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। सो ये बहुत ही बेसिक पॉइंट थी। कैसे जाना जाता है कि माँ का दूध बच्चे के लिए पर्याप्त है या नहीं।
1: अगर बच्चा दूध पीने के बाद आराम से 1-1.5 घंटा सूखता है, दिन में 6-8 बार यानी कि 24 घंटे में 6-8 बार सूसू जाता है और उसका वजन अगर सही तरीके से बढ़ रहा है यानी कि 1 महीने में कम से कम 500 ग्राम के करीब उसका वजन अगर बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि माँ का दूध बच्चे के लिए पर्याप्त है।
0: जी, अगर माँ को खांसी जुकाम हो रहा है उस टाइम में बच्चे को दूध पिलाना सही होगा?
1: बिल्कुल, माँ के दूध से बच्चे को वायरल इन्फेक्शन नहीं होता है। अगर माँ को वायरल इन्फेक्शन है तो बस वो सावधानी के तौर पे अच्छे से अपने हाथों को साबुन में पानी से धोकर और अगर बहुत ज्यादा खांसी है तो मुंह पर मास्क लगाकर बच्चे को दूध पिला सकती हैं। बल्कि ऐसा करने से माँ के दूध से जो माँ ने एंटीबॉडीज बनाई है उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट, वो बच्चे को मिल जाएंगी। इससे बच्चे में वो बीमारी होने का खतरा और कम हो जाएगा।
0: अगस्त का महीना है और गर्मी भाई साहब बहुत ज्यादा हो रही है, तो मैम अगर बच्चे को प्यास लग रही है उस वक्त में हम क्या बच्चे को पानी भी थोड़ा बहुत पिला सकते हैं?
1: बिल्कुल भी नहीं। शुरू के 6 माह में हमें बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना है। माँ के दूध के ना 2 हिस्से होते हैं। जो शुरू का दूध एक छाती से आता है उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। जो बाद का दूध होता है उसमें बच्चे का पेट भरने वाला तत्व फैट्स ज्यादा होते हैं। तो अगर गर्मी ज्यादा होती है तो माँ का शरीर अपने आप उस चीज को पहचानता है और शुरू के दूध में पानी की मात्रा बढ़ जाती है और वो जो पानी है वो माँ के दूध का पानी वो बच्चे के लिए उसकी प्यास मिटाने के लिए पर्याप्त होता है। इसीलिए माँ के दूध के सिवा बच्चे को ऊपर से पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी के साथ मैं एक चीज और बताना चाहूंगी
0: जी,
1: कि शुरू के 6 माह में बच्चे को सिर्फ माँ का ही दूध देना है। बच्चे को कोई घुट्टी 555 घुट्टी, 112 बाल जीवन घुट्टी, कोई भी घुट्टी बच्चे के लिए फायदेमंद नहीं है।
0: जी, ये बहुत बढ़िया आपने बात बताई, हाईलाइट किया इसको, क्योंकि अक्सर लोग घुटियां पिलाते रहते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि माँ दिन भर थक हार के काम करके और रात में सोने जाती है और उस वक्त आधी रात को बच्चा उठ जाता है, उसको भूख लगती है, वो उठ जाता है। तो क्या कोई ऐसा तरीका जिससे कि माँ की नींद भी खराब ना हो और बच्चे की भूख भी मिट जाए?
1: बिल्कुल, माँ का दूध ही तो एकमात्र ऐसा भोजन है जो हर समय हर जगह हर मात्रा में सही तापमान पर उपलब्ध है। कुछ समय बाद दूध पिलाने के बाद तो माँ को पता चल जाता है कि वो जिस तरह बच्चा माँ दोनों कंफर्टेबल है किस तरह से वो उस बच्चे को दूध पिला सकती हैं।
0: जी,
1: रात में बच्चे को गोद में लिया और उसे दूध पिला दिया और उसके बाद सुला दिया। बल्कि अगर बच्चा ऊपर के दूध पे है तो पहले दूध को बनाएं, उसे गर्म ठंडा करें, उसको लेकर आए, फिर धीरे धीरे बच्चे को पिलाएं, उससे तो माँ की नींद और ज्यादा खराब होगी।
0: आई होप उन महिलाओं को जो माँ बनी है पहली बार बहुत ही ज्यादा आपसे जानकारी मिली होगी और बच्चे को स्तनपान कराने में सही एक गाइड मिल पाया आपकी बातों से। मैम, जाते जाते एक छोटा सा मैसेज हमारे सभी श्रोताओं को, उन सभी महिलाओं को जो पहली बार माँ बनी है या स्तनपान की सही जानकारी नहीं है, तो एक छोटा सा मैसेज पहुँचाइए।
1: मेरा सबसे छोटा सा और सबसे सरल मैसेज एक ही है कि माँ का दूध शुरू के 6 महीने के लिए शिशु के लिए पूर्ण व सर्वोत्तम आहार है। इसके सारे फायदे बच्चे व माँ दोनों को ही मिलते हैं और शुरू के 6 महीने में ऊपर का दूध बच्चे को आगे के इन्फेक्शंस से नहीं बचा सकता और साथ में माँ का दूध जो बच्चे की मस्तिष्क के डेवलपमेंट में हेल्प करता है वह ऊपर का दूध कभी नहीं कर सकता।
0: जी, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलके, आपसे बात करके। इतना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: मुरादाबाद के लिए बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड मुरादाबाद।
0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: प्रयास करने का आह्वान किया। परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रत्येक संपत्ति की स्पष्ट पहचान सुनिश्चित करने के लिए पात्र लोगों को जल्द स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने विदेशी मेडिकल स्नातकों के लिए 275 अभ्यर्थियों को 12 अस्पतालों में इंटर्नशिप सीटें आवंटित की। केंद्र ने दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर और जनता के लिए आसान बनाने के लिए दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की 14वीं अनुसूची में संशोधन किया और दक्षिणी दिल्ली के एक रिहायशी इमारत में आग लगने से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी।
1: प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
0: श्री रिजिजू ने प्रधानमंत्री के हवाले से कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि देश के युवाओं को एक निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली मिलनी चाहिए। श्री सूद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया है कि पेपर लीक को रोकना एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने नीट पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की है जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे छात्रों के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता और देश के हर परिवार से जुड़े इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। उधर संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। सरकार ने दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले में विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस द्वारा पैलेट गन का इस्तेमाल करने की सोशल मीडिया की खबरों का गलत बताया है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा की लगे डंडों के इस्तेमाल करने के दावों को भी खारिज कर दिया। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्कालीन स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि श्री वांगचुक को मेदांता अस्पताल में स्थानांतरित करने पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonear.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार जल्द ही पात्र लोगों के लिए स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड जारी करेगी। इसकी घोषणा आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजस्व विभाग द्वारा आयोजित स्वामित्व योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के दौरान की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत व्यापक सर्वेक्षण, डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने और स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड जारी करने का कार्य किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि योजना के अंतर्गत अब दिल्ली सरकार आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रत्येक संपत्ति की स्पष्ट पहचान सुनिश्चित कर रही है जिससे भविष्य में रिकॉर्ड अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और व्यवस्थित किया जा सके। उन्होंने बताया कि प्रत्येक कार्ड पर संपत्ति का संपत्ति पहचान संख्या, जारी करने की तिथि, गाँव, उपमंडल, जिला, कब्जाधारी का नाम जैसे महत्वपूर्ण जानकारियां अंकित होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक कार्ड पर QR कोड भी होंगे। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा ड्रोन के माध्यम से पूरे गांव का हवाई सर्वे भी किया जा रहा है। रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 48 गांव को भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ हुए समझौते के तहत योजना में शामिल किया गया है। इनमें से 30 गांवों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और उनके अंतिम प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अब तक 12,000 से अधिक संपत्तियों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। इसके अलावा दक्षिण और उत्तर पश्चिम जिले में सर्वे की गई सभी संपत्तियां विवाद मुक्त हैं, जबकि अन्य जिलों में भी विवाद के समाधान के साथ आगे की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार तकनीक आधारित सुशासन के माध्यम से प्रत्येक नागरिक तक बेहतर सेवाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और स्वामित्व योजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने विदेशी मेडिकल स्नातकों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद 275 अभ्यर्थियों को 12 अस्पतालों में इंटर्नशिप सीटें आवंटित की है। अधिक ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: इनमें ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल तथा अन्य कॉलेज शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 207 सीटें 5 नॉन टीचिंग अस्पतालों में आवंटित की गई हैं। इनमें दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, गुरु गोविंद सिंह अस्पताल, जयपुर गोल्डन अस्पताल, BLK मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और सेंट स्टीफंस अस्पताल शामिल हैं। इस पहल से उन फॉरेन मेडिकल स्नातकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इस अवसर पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार युवा चिकित्सा पेशेवरों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के साथ साथ राजधानी की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूत बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। प्रादेशिक के लिए आदित्य की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये देश में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसका इस्तेमाल 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों के लिए किया जा सकता है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में नियामक स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि देश की पहली डेंगू वैक्सीन की मंजूरी मिलना डेंगू के खिलाफ भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने आज कैंसर और संक्रामक रोगों के उपचार संबंधी समाधान विकसित करने के लिए 3 स्वदेशी जैव चिकित्सा तकनीकों को अग्रणी भारतीय दवा और वैक्सीन निर्माताओं को लाइसेंस दिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि तकनीक अगली पीढ़ी के स्वदेशी उपचारों, टीकों और चिकित्सा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देगी। इस अवसर पर ICMR के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने कहा कि संस्थान ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सार्वजनिक धन से होने वाला अनुसंधान ऐसे उत्पादों में परिवर्तित हो जो स्वास्थ्य संबंधी परिणामों में सुधार करे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने आज सराय कालिखा नमो भारत स्टेशन पर निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य नेत्र स्वास्थ्य के विषय में जागरूकता बढ़ाना, इससे जुड़ी समस्याओं का जल्द से जल्द पता लगाना और नमो भारत यात्रियों के साथ साथ अन्य लोगों को निशुल्क नेत्र जांच की सुविधा प्रदान करना था। इस शिविर में नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टरों ने लोगों की दृष्टि जांच की और उन्हें इसका विशेष ख्याल रखने संबंधी सलाह दी। हरजीत सिंह ग्रेवाल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने उनकी नियुक्ति की अधिसूचना इस महीने की 16 तारीख को जारी की थी। पदभार संभालने के बाद श्री ग्रेवाल ने मीडिया से कहा कि आयोग सभी अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए काम करेगा और स्वतंत्र रूप से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा। उन्होंने कहा कि आयोग वास्तविक शिकायतों के समाधान और अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर उचित ध्यान देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री ग्रेवाल ने देश में अल्पसंख्यकों की स्थिति के बारे में फैलाई जा रही गलत धारणाओं को भी खारिज किया।
4: कुछ लोग देश में बहुत गलत फहमी डाल रहे हैं कि यहाँ मिनोरिटीज के ऊपर जुल्म हो रहा है। यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है सभी कम्युनिटीज की। अगर जुल्म होता हो या उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती या डिस्क्रिमिनेशन होती हो तो यहाँ पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी। यहाँ तो सबका साथ सबका विकास, उसके हिसाब से हम काम करते हैं। अपने अपने फील्ड में सभी हम मिलकर कोशिश करेंगे। अगर कहीं कोई ऐसी बात होगी भी तो उसको भी एड्रेस करेंगे।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर और जनता के लिए आसान बनाने के लिए दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की 14वीं अनुसूची में संशोधन किया है। इस संशोधन के बाद दिल्ली नगर निगम के जोनों के नाम अब दिल्ली के राजस्व जिलों के नामों जैसे कर दिए गए हैं। संशोधित 14वीं अनुसूची में दिल्ली नगर निगम के सभी 250 वार्डो के नाम और उनके 12 जोनों की पूरी जानकारी दी गई है। 12 जोन के लिए हम बाहरी उत्तर, उत्तर, उत्तर पश्चिम, मध्य उत्तर, पुरानी दिल्ली, मध्य पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये संशोधन दिल्ली के राजस्व प्रशासन और नगर निगम प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में सहायक होगा। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि कैलाश नगर के महावीर स्वामी पार्क में पानी की मुख्य पाइपलाइन पर कुछ बड़े सुधार कार्य के कारण सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से साउथ दिल्ली मेन लाइन में जलापूर्ति बाधित रहेगी। जल बोर्ड ने बताया कि कल सुबह 10 बजे से अगले शाम 6 बजे तक दक्षिण दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। बोर्ड ने जानकारी दी है कि राजघाट के पास समता स्थल पर स्थित वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाली मौजूदा पाइपलाइन की मरम्मत के कारण कल माटिया महल, बल्ली मारान और चांदनी चौक AC 20, 21 और 22 के क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। बोर्ड ने बताया कि जलापूर्ति कल सुबह 11 बजे से 18 घंटे तक बाधित रहेगी। जल बोर्ड ने स्थानीय निवासियों से पर्याप्त मात्रा में पानी के भंडारण का अनुरोध किया है। आपातकाल स्थिति में जल बोर्ड के कंट्रोल नंबर 1916 पर फोन कर पानी के टैंकर मंगाए जा सकते हैं। राजधानी के दक्षिण दिल्ली के लोधी रोड स्थित बीके दत्त कॉलोनी में एक रिहायशी इमारत में सुबह आग लग गई। स्थानीय पुलिस के अनुसार आग इमारत की तीसरी मंजिल पर लगी और इस हादसे में एक महिला और उसकी दो बेटियों की मौत हो गई। दिल्ली अग्निशमन विभाग ने बताया कि सुबह करीब 10:20 पर सूचना मिलते ही आग बुझाने के लिए 3 दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गई। सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने इस घटना पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी संवेदनाएं शोकाकुल परिवारों के साथ है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2025 के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। मंत्रालय ने बताया कि ये पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिए जाते हैं, जिनमें स्थलीय साहसिक कार्य, जल साहसिक कार्य, वायु साहसिक कार्य और आजीवन उपलब्धि पुरस्कार शामिल है। इस पुरस्कार का उद्देश्य युवा भारतीयों को साहसिक गतिविधियों में अधिक से अधिक भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। नामांकन आज से 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर कर सकते हैं। आवेदक संबंधित राज्य सरकार के खेल विभाग या मान्यता प्राप्त साहसिक संस्थानों से अनुशंसा प्राप्त कर सकते हैं, जबकि सेना, नौसेना और वायुसेना के सेवारत कर्मियों के लिए अनुशंसा अनिवार्य है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा एक दिन के विराम के बाद आज फिर से शुरू हो गई है। लगातार बारिश और यात्रा मार्गों पर भूस्खलन की आशंका को देखते हुए कल यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित की गई थी। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय कई क्षेत्रों में हल्की वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने कल भी बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर हल्की बारिश के साथ हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रत्येक संपत्ति की स्पष्ट पहचान सुनिश्चित करने के लिए पात्र लोगों को जल्द स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने विदेशी मेडिकल स्नातकों के लिए 275 अभ्यर्थियों को 12 अस्पतालों में इंटर्नशिप सीटें आवंटित की। केंद्र ने दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर और जनता के लिए आसान बनाने के लिए दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की 14वीं अनुसूची में संशोधन किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
6: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
5: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
6: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
7: कॉल 7500153841।
8: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
9: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
10: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
11: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
10: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
12: हेलो जी, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। मेरा नाम है RJ आनंद, एंड ऑफ कोर्स जब शाम होती है तो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग या डिफरेंट तो होता ही है, क्योंकि मुरादाबाद की शाम हैपनिंग तब होती है जब हमारे साथ मुरादाबाद के लोकल वाला टैलेंट होता है। क्योंकि ये जो शो है वो हम बेसिकली लोकल फॉर वोकल को डेडिकेट करते हैं, और हम कहते हैं यार भाजी कि आपके अंदर भी कोई अच्छा टैलेंट है, कुछ बढ़िया सी क्रिएटिविटी है, कुछ आप सुनते हैं, सुनाते हैं, कुछ लिखते हैं, या फिर कुछ आप बढ़िया परफॉर्म करते हैं, गाते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। बेसिकली हम यहाँ पर किसी न किसी एक ऐसे पर्सन को लेकर आते हैं जो आपकी शाम को थोड़ा सा और भी औसम बनाते हैं। आज की शाम को औसम नहीं भाई साहब, बहुत ही रंगीन और माहौल जो है खूबसूरत बनाने वाले हैं शाम का। कौन भैया मेरे साथ जो अखिल भाई बैठे हैं आज, आफ्टर लॉन्ग टाइम हम मिल रहे हैं। हाय अखिल भाई, क्या हाल चाल है?
13: तुमने बुलाया नहीं, लॉन्ग टाइम तो इसलिए हो गया ना।
12: अरे यार एक्चुअली मैं खुद ही नहीं आया, मेन बात तो ये है ना, आज बहुत टाइम की हम लोग आ रहे हैं। वेल अभी हाल चाल बताए, कंप्लेन छोड़े, कैसे हैं आप?
13: मैं बढ़िया हूँ। और इस बार ये बताओ तुमने समर वेकेशन अपनी कहाँ करी?
12: यार समर वेकेशन तो मत पूछो, स्टूडियो की एसी में बैठ के करिए भाई, यहाँ से अच्छी समर वेकेशन कहीं नहीं हो सकती। अखिल भैया बता रहा हूँ आपको,
13: तभी बार बार कहते थे मुझसे कि मैं कभी रामनगर में हूँ भैया, कभी नैनीताल में हूँ।
12: हाँ वो तो खैर सच्चाई ज्यादा नहीं बतानी चाहिए, हमारे दोस्त बहुत समझदार है, उनको पता है मैं डेली इंस्टाग्राम पे पोस्ट कहाँ की डाल रहा हूँ कौन से नैनीताल की डाल रहा हूँ। सो वेल कैसे हालचाल, बढ़िया चल रहे हैं आपको देख के?
13: सब बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा
12: है, बहुत ही बढ़िया। चलो फिलहाल आज हमारे शो में एक बहुत ही अच्छे जो जिन्हें कह सकते हैं शायर, आज के जमाने के युवा वाले
13: युवा शायर
12: उनको हमने बुलाया है। सो उनका वार्म वेलकम करेंगे। हाय ब्रो, वेलकम टू FM मुरादाबाद, कैसे हैं आप? हाउ आर यू?
14: हेलो, मेरा नाम ओम अग्रवाल है, मैं बढ़िया।
12: अच्छा ओम अग्रवाल आपका नाम है और आप बढ़िया हो, तो हमें भी लग रहा है देख के। आपको पहले ये बताओ ऑफिस में आके कैसा लग रहा है?
14: बहुत बढ़िया लग रहा है, मतलब सोचा नहीं था कि मुराद में ऐसा कुछ होगा।
12: वाओ वेरी नाइस, अब हो गया है, अब आपको सोचना पड़ेगा कि ये हो रहा है क्यों अखिल भाई।
13: बिल्कुल सही कह रहे हो।
12: हाँ तो अब अभी अभी कैसा लग रहा है आपको?
14: थोड़ा नर्वस,
12: नर्वसनेस हो रही है, पहली बार बैठे हो। ओके अच्छा बताओ हम पहली बार कहाँ मिले थे, थोड़ा सा भाई से थोड़ा जानते हो, याद भी है या नहीं?
14: पहली बार मिले फर्स्ट ओपन माइक में जब मैं गया था कुछ खास, उसमें मिले थे हम।
12: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
14: उसमें इंट्रोड्यूस हुआ था तो पता चला था कि हाँ रेडियो है मुरादाबाद में अभी भी।
12: अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो जब आपको ये पता लगा तो फिर आपने सुनने की कभी ट्राई करी?
14: एक दो बार ट्राई करी थी।
12: अच्छा,
14: मैंने।
12: अच्छा ओके, मतलब जब टाइम मिला।
14: हाँ जब टाइम मिला बिल्कुल।
12: वेरी नाइस। अच्छा तो ओम जी थोड़ा सा अपने बारे में बताओ हमारे लिसनर्स को, आप क्या करते हैं, कहाँ से है मुरादाबाद में?
14: मैं मुरादाबाद एक्चुअली रीति मोहल्ले से बिलोंग करता हूँ, जो चमकपुल के पास है।
12: अच्छा भैया ओके, और क्या करते हैं वैसे प्रोफेशन?
14: प्रोफेशन में अभी मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ है।
12: वेरी नाइस यार, और आगे क्या करने का प्लान है?
14: आगे मेरा MBA करने का प्लान है।
12: अच्छा तो ये शेरो शायरी वाला प्लान कहाँ से आ गया?
14: ये शेरो शायरी वाला प्लान तो जब दिल टूटेगा तो आता ही है
13: यार। तो मतलब आजकल दिल ज्यादा टूट रहे हैं
12: यार, मैं वही पूछ रहा हूँ, मेरे स्टूडियो में जितने भी लोग आए हैं ना अभी तक एक मैं ही हूँ जिसका दिल नहीं टूटा, बाकी सबके टूट गए भाई।
13: तुमने दिल की सर्जरी करा रखी?
12: नहीं भैया मैंने दिल में हड्डी पाली नहीं थी, मेरे को पता है दिक्कत हो जाएगी। वेल यार एक बात बताओ, जो लोग शेरो शायरी करते हैं उनका दिल जरूरी होता है क्या टूटना, तभी उनके अंदर का शायर बाहर निकलता है?
14: नहीं,
12: फिर
14: शायरी तो मैं जब किसी के साथ था तो भी लिखता था।
12: अच्छा
14: मतलब दिल टूटना जरूरी होता है समाज को समझने के लिए।
12: ओ वाह अच्छा ऐसा भी है,
14: आपकी एक प्रोस्पेक्टिव बदल जाता है।
12: अच्छा
14: कि आप अगर किसी चीज को देख रहे हैं, आप जैसे मान लो देख रहे हैं दुकान पे देख रहे हैं तो आप सिर्फ दुकान को देखेंगे, मैं वहां पर साइड में लोग जो बच्चे हैं भीख मांग रहे हैं उनको देखूंगा, तो वो प्रोस्पेक्टिव पूरा चेंज हो जाता है।
12: ऑल राइट अखिल भाई, दिल तोड़ने वालों को बुलाओ, मुझे अपना दिल तोड़वाना है आज ही, मुझे भी ये पर्सपेक्टिव चेंज करना है भाई।
13: आनंद तुम तो वैसे भी सबके दिल ही जोड़ने में लगे रहते हो, यार कहां दिल तोड़ोगे।
12: ये बात तो बिल्कुल सही बोली आपने। तो आज ओम जी हमारे साथ हैं, क्या पूरा नाम बताया आपने?
14: ओम अग्रवाल।
7: ओम अग्रवाल जी मेरे साथ हैं, इधर अखिल अग्रवाल जी मेरे साथ हैं, मजा ही मजा आ रहा है आज। और वैसे ओम अग्रवाल जी अकेले नहीं आए हैं, मैं जब फर्स्ट टाइम उनको इवेंट में मिला था वहां अपने साथी को लेकर आए थे, और अभी भी वो अपने एक दोस्त को लेकर आए हैं।
14: मतलब दोस्त की जरूरत तो पड़ी जाती है।
7: अच्छा, तो ये दोस्तों के बारे में थोड़ा सा मुझे पहले बताओ यार।
14: दोस्तों के बारे में क्या ही बता सकते हैं, मतलब मैं सोचता हूँ कि लोग मुझसे कहते हैं कि दोस्त के बारे में लिखूं, क्या ही लिखूं। वो मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, मैं इम्पोर्टेंट हिस्से में लिखना पसंद नहीं करूंगा क्योंकि उसको डिग्रेड नहीं कर सकता मैं।
7: ऑलराइट, मतलब आपको जो लगता है कि जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो उनकी स्पेशल कैटेगरी है, उनके बारे में शब्द ही कम पड़ जाएंगे शायद। हाँ, है ना,
14: कोई शब्द ही नहीं है।
7: नाइस, वेरी नाइस सर, बहुत बढ़िया। और आज जो आपके साथ आपका साथ देने आए हैं, इनका क्या नाम है?
14: इनका नाम अंतरिक्ष गुप्ता है।
7: अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो ये कब से आपके साथ है?
14: ये सेकंड क्लास आई थिंक, फिर बीच में चले गए थे वैसे बाहर तो।
7: अच्छा अच्छा, लेकिन दोस्ती में कोई ब्रेकअप नहीं हुआ ना?
14: दोस्ती में
7: कोई डिस्टेंस नहीं आया? बहुत बढ़िया। नहीं यार, आजकल दोस्ती भी जो है ना, लोग कहते हैं कि वक्त और टाइम देख के होती है और वो पैसा देख के भी होती
13: मेरे
7: है।
13: मेरे को अपनी इन्हीं की बात पे एक बात याद आई, मेरे एक बहुत ही अच्छे फास्ट फ्रेंड है।
7: अच्छा।
13: राहुल जैन करके।
7: अरे वाह।
13: तो मैं 9th क्लास में था उस समय, और हम दोनों के बीच में हल्की सी लड़ाई हो गई थी।
7: ऑलराइट।
13: तो हम लड़कों में तो ऐसी लड़ाई हो जाती है, हाँ भी तू चल, तुझे तो कल देख लूंगा। मतलब दोस्त भी अच्छी है कि दोस्ती हमारी इतनी अच्छी है कि बड़े प्यार से लड़ भी रहे हम दोनों। तो भाई वो मेरे लिए अगले दिन ग्रीटिंग कार्ड लेके आया, उस दिन ग्रीटिंग आर्चीज के गैलरी से स्पेशली। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मैंने कहा यार दोस्तों में कहाँ ग्रीटिंग कार्ड चलते हैं। ओ भाई मेरे लिए आई लव यू वाला, मतलब आई लव यू इन सेंस की हैप्पी ब्रदर्स। तो वो एक कार्ड लेके आया, तब मेरे को थोड़ा सा ये भी रियलाइज हुआ कि मैं जिस दोस्ती को जिस तरीके से ले रहा था उसके लिए वो दोस्ती का पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग था। जैसे अभी गुप्ता जी ने कहा,
7: आजकल के लौंडे नहीं समझेंगे भाई, अगर आई लव यू हमने किसी को दे दिया तो आप समझ लो कि कुछ और ही मामला होगा। तो मतलब वो वाली दोस्ती जेन्युइन वाली आज के टाइम में ना भाई ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम। क्यों, आपको क्या लगता है?
14: देखिए जैसे मैंने कहा था कि पर्सपेक्टिव बदल जाता है।
7: एब्सोल्युटली,
14: इंसान सब अच्छे होते हैं।
7: करेक्ट।
14: तो ढूंढना होता है बस।
7: अच्छा, कुछ लोगों को ना अच्छे दोस्त मिल भी जाते हैं तो उनकी वैल्यू नहीं करते हैं, ऐसा भी होता है।
14: देखो वैल्यू तो मैंने भी नहीं करी थी बहुत बार, सीखा हूँ।
7: अरे वाह,
14: वैल्यू करनी चाहिए हर चीज की।
7: क्या बात है, वैसे आपको देख के नहीं लग रहा है कि आप वैल्यू करेंगे नहीं यार, आप मुझे लग रहा है झूठ बोल रहे हो यार आप।
14: नहीं, जब मैं किसी के साथ था तो फिर मैंने दूसरे दोस्तों को वैल्यू नहीं दी थी।
7: ओके।
14: तो मैंने उससे सीखा।
7: होता है ना जब नया नया बंदा आता है तो तू कौन, कहाँ का दोस्त, कहाँ से आया भाई, चल भाई तेरी मेरी हो गई खत्म। वो फिल्मी सीन हुआ है फिर आपकी लाइफ में तो।
14: हाँ, कह सकते हैं।
7: और अच्छा, ये जो ओम जी हैं बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, ओम अग्रवाल जी, इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, इनके टूटे दिल का राज क्या है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, आपको बोरिंग नहीं करेंगे, जो कॉन्वर्सेशन है वो डेफिनेटली इंटरटेनिंग भी होगी और इन्फॉर्मेटिव भी होगी और कुछ शेरो शायरी भी होगी यार आज की शाम। सो रुकते हैं म्यूजिकल ब्रेक के लिए, वी कम बैक, डोंट गो एनीवेयर, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू एफ एम मुरादाबाद 89.6। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आरजे आनंद। आज की शाम को थोड़ा सा झकास और फर्स्ट क्लास अरे मैं एंड साथ में अखिल अग्रवाल जी हैं, ओम अग्रवाल जी सामने बैठे हैं, उनके फ्रेंड भी मेरे सामने बैठे हैं जो बोल नहीं रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, हमने उनसे बोलने का बिल्कुल पैसा नहीं लिया है, इसलिए वो चुप ही बैठेंगे फिलहाल। अखिल जी आप बताएं, मजा आ रहा है भैया से बातचीत करके? आज अग्रवाल से अग्रवाल जी कनेक्ट हो रहे हैं,
1: मजा तो आ रहा है। और आनंद जैसे
0: कि आमने सामने टकरा रहे हैं, देखो इधर से उधर आमने सामने बैठे हैं,
1: बिल्कुल सही। मतलब हम इसमें टकराना नहीं कहते, इसे तो एक मोहब्बत ही है ना, भी इसे टकराना। तुम
0: यहाँ ग्रीटिंग कार्ड वाली मोहब्बत अभी भी आ रही है अखिल भाई की?
1: दोनों बनिए सामने हैं, आमने सामने।
0: अच्छा, बनिया अग्रवाल को कहते हैं, एक मेरी भी दोस्त है वही बनिया है, फिर समझ गया हूँ मैं।
1: जैसे श्रोताओं मैं हमेशा हर बार आनंद के दिल की बात बोलता हूँ ना, वैसे ये बात दिल के आनंद से निकल के आ रही है, बस अल्फाज मेरे हैं।
0: ये हमेशा अपनी शायरी में ना मेरे को चप्पले पढ़वाते हैं, गाइस प्लीज ध्यान से सुनना इनकी शायरी जरा। हाँ प्लीज भैया।
1: प्यार वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए,
0: वाह,
1: प्यार वो है जो दिल से निभाया जाए।
0: क्या बात है।
1: अपना कहने से कोई अपना नहीं होता,
0: वेरी नाइस।
1: अपना है जिसे दिल से अपनाया जाए।
0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। जरूर हम आपको दिल से अपनाएंगे, लेकिन दो दिन के बाद भैया आपके पास वापस आएंगे। आप प्लीज कुछ बताएं, जरा कुछ सुनाए यार, क्योंकि किसी भी चीज की शुरुआत एक अच्छी तरीके से होती है तो मजा आ जाता है ना।
2: तो जैसे कि अभी मोहब्बत मोहब्बत की बात चल रही है आपकी, तो एक मोहब्बत के ऊपर पढ़ना चाहूंगा मैं।
0: बिल्कुल यार बिल्कुल।
2: मैं हर रोज तुम्हें उसी तरह देखता हूँ,
0: वाह।
2: मैं हर रोज तुम्हें उसी तरह देखता हूँ जिस तरह हर रोज तुम मुझे देखा करती हो,
0: वाह जी वाह।
2: तुम्हारे हाथों की नरमी को महसूस करना अच्छा लगता है, तुम्हारे हाथों की नरमी को महसूस करना अच्छा लगता है जब भी तुम मेरे हाथों को कसके पकड़ा करती हो,
0: वाह।
2: तुम्हारे बिना मेरा आसमान फीका लगता है। तुम मेरा चांद हो, मेरी आंखों को रोशन करती हो। तुम मेरा चांद हो, मेरी आंखों को रोशन करती हो। मैं महसूस करता हूँ तुम्हारे दिल की धड़कन, मैं महसूस करता हूँ तुम्हारे दिल की धड़कन जब भी तुम मेरे सीने से आकर लगा करती हो। यूं तो महकाने में लोग हो जाते हैं मदहोश, यूं तो महकाने में लोग हो जाते हैं मदहोश, तुम तो अपनी आंखों से मुझे पिलाया करती हो।
0: वेरी नाइस सर, बहुत ही बढ़िया।

0: क्या बात है, शानदार शुरुआत ही बहुत ही अच्छी हो गई है। खैर आगे बढ़ते हैं। ये मुझे आपसे पूछना है, ये आप खुद से लिखते हैं या फिर आपको कैसे आती है थॉट्स?
1: यू। खुद से लिखता हूँ, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं
0: अरे
1: तो
0: वाह,
1: थोड़ा लिखना आ गया
0: आपके
1: है।
0: फेवरेट शायर कोई जिनको आप याद, यू नो आज भी?
1: मेरा फर्स्ट मैंने शेर सुना था
0: हाँ
1: एक, मतलब मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था,
0: हाँ हाँ
1: उसमें एक जाकिर खान के पॉडकास्ट में उन्होंने, मतलब पॉडकास्ट नहीं था, एक रिक्ता में गए थे, तो उन्होंने एक शेर पढ़ा था कि दास्तां खत्म होने वाली है तो मेरी आखिरी मोहब्बत हो।
0: वाह।
1: तो मैं बड़ा फैसिनेट हुआ उस चीज से, तो मैंने पढ़ना चालू करा जॉन एलिया को। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट शायर तो नहीं, बेस्ट कहूंगा मतलब डिग्रेड नहीं करना किसी और को, बस मेरे को पसंद है वो।
0: क्या बात है, मतलब टच कर गई उनकी बातें
1: जी
0: जो आपके दिल में इस तरीके से लगी कि फिर आपको मजा आ गया पढ़ने में,
1: हाँ
0: बहुत बढ़िया। और मैं सच बताऊं तो भाई, जब तक आपको किसी चीज से लगाव ना हो ना, तब तक आप में अपनी 100% नहीं दे पाओगे।
1: जी
0: तो आपका 100% देने के लिए आपका लगाव होना बहुत जरूरी है ना? बहुत ही बेहतरीन। अच्छा, अब आप मतलब आपको कब टाइम मिलता है ज्यादातर, जब आप सोचते हो यार कि आज मुझे कुछ बढ़िया लिखना चाहिए या फिर आज ये मैंने बहुत बढ़िया लिखा?
1: मैं सोचता हूँ, मैंने कभी बढ़िया लिखा ही नहीं अभी,
0: अच्छा
1: वो एंड में ही लिखा जाएगा। मतलब हर रोज सोचता हूँ कि अपडेट करना है अपने आप को, तो मेरे को कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि अभी लिखना है बैठ के। कुछ भी ख्याल आ जाते हैं, किसी को देख के ख्याल आ गया, किसी की बातें सुन के ख्याल आ गया, या कोई रील चला ली, रील पे देख के कुछ ख्याल आ गया। तो एक ख्याल आना शायर के लिए मेरे हिसाब से सबसे अच्छी बात है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अभी आप जो आपके बहुत दिल के करीब हैं, कुछ शायरीज जो आप चाहते हैं कि वो हमारे लिसनर्स तक पहुंचे, जिनको आप अक्सर लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, या जैसे आप कुछ खास में भी गए, आपने वहां पर भी कुछ खास सुनाया,
1: हाँ।
0: तो ऐसे कुछ खास यहाँ पर भी सुना दो यार, कुछ बढ़िया सा एक और।
1: देखो मैंने जो भी लिखा है अब तक सब खास ही है, क्योंकि मैंने जिस शख्स से लिखे हैं उस शख्स के लिए मेरे से बेहतर कोई और लिख ही नहीं सकता।
0: वेरी नाइस यार।
1: तो मतलब मेरे को लगता है कि आजकल के शायर जो आते हैं कहते हैं मैंने अच्छा लिखना चालू नहीं करा, अभी लिखा है शुरू शुरू में, मेरे को लगता है वो वहां थोड़ा लैग करते हैं मोहब्बत में। यार तुमने अपनी मोहब्बत के लिए लिखी है, सबसे अच्छी चीज लिखी है। तो मैंने ये चीज लिखा है कि दूसरी जब मोहब्बत मेरे को होगी, तो दूसरी मोहब्बत जब आ रही होगी मेरे पास, उसके लिए मैंने लिखा है, जब करीब विसाले मोहब्बत का सफर आ रहा होगा, जब करीब विसाले मोहब्बत का सफर आ रहा होगा, तू उस वक्त मुझे आईने में नजर आ रहा होगा, तू उस वक्त मुझे आईने में नजर आ रहा होगा। पहले खबर जो होती तो संभाल भी लेता खुद को, पहले खबर जो होती तो संभाल भी लेता खुद को, यकीन ही नहीं था तू मेरे शहर आ रहा होगा।
0: वाह,
1: काफी अरसों बाद मैं मुस्कुराया कुछ सोच कर, शायद धीरे धीरे तेरा मुझ पे असर आ रहा होगा।
0: क्या बात है।
1: ढक दिया तुमने दुपट्टा सर पर और मुझे लगा, ढक दिया तुमने दुपट्टा सर पर और मुझे लगा, सूरज की रोशनी से बचाने सजर आ रहा होगा।
0: क्या
1: बात
0: बात
1: है,
0: है,
1: सूरज की
0: वाह।
1: रोशनी से बचाने सजर आ रहा होगा। मुझे देखकर तुम इतना मुस्कुरा क्यों देते हो ओम, मुझे देखकर तुम इतना मुस्कुरा क्यों देते हो ओम, लगता है फिर से तुम्हें मोहब्बत का हुनर आ रहा होगा, लगता है फिर से तुम्हें मोहब्बत का हुनर आ रहा होगा।
2: बिल्कुल सही कहा, बहुत बढ़िया।
0: क्या बात है, बहुत ही
1: शुक्रिया।
0: बढ़िया।
2: मुझे लग रहा है स्टूडियो से जाते जाते कोई ना कोई हुनर मिल ही जाएगा
0: यार
2: इन्हें।
0: मुझे भी लग रहा है, इन्हें नहीं हमें जरूर मिलेगा। पर अच्छा यार, एक बात मैं जो पूछना चाह रहा हूँ आपसे ओम भाई, वो ये है कि जब आदमी प्यार करता है तब उसे ज्यादा थॉट्स आते हैं, जब उसका दिल टूटता है तब ज्यादा अच्छे आते हैं।
1: देखो वही कहता है ना, जब कोई चला जाता है उसकी हिम्मत ज्यादा होती है,
0: हाँ
1: तो समझ में आता है कि हाँ यार
0: लेकिन
1: जब
0: यार
1: थी तो सोचा नहीं
0: ऐसा तो
1: था।
0: नहीं है कि इस पार वाले को समझ आती है, उस पार वाले को भी डेफिनेटली आती होगी ना फिर तो।
1: वो अहमियत नहीं दे पाते फिर।
0: मतलब वो इतना आगे बढ़ चुके होते हैं।
2: तो ओम जी, उम्मीद है आपसे कि ये अहमियत जो एहसास है, जब जब ये एहसास निकलेगा इसका मतलब हमें ये लगे कि कहीं ना कहीं ओम भाई का दिल टूटा दोबारा। मतलब ऐसा तो नहीं है कहीं आनंद जी, जब जब ये ओम जी आपसे स्टूडियो में टकराया था इसका हर बार इनका ब्रेकअप ही हुआ,
0: नहीं
2: तभी
0: यार
2: हमने
0: ऐसा
2: स्टूडियो
0: तो
2: बुलाया।
0: नहीं होगा। खैर
1: नहीं
0: नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, मुझे लग तो नहीं रहा है यार। खैर बहुत ही बढ़िया, लेकिन बहुत उम्दा आपने लिखे अभी तक जो भी आपने सुना है, बहुत ही बढ़िया।
1: शुक्रिया।
0: अच्छा एक चीज मैं पूछना चाहूंगा ओम जी, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आजकल तो आप देख रहे हैं कि प्यार प्यार तो प्यार है ही, लेकिन प्यार को इतना ज्यादा लोगों ने आजकल ऐसा बना दिया फैशन, है ना? प्यार प्यार की तरह रहा नहीं है। अखिल भाई से मैं पूछ, अखिल भाई आपको बताऊंगा, आपके टाइम में तो अलग ही प्यार होते होंगे,
2: मेरा टाइम क्या
0: आजकल के
2: मतलब, मैं क्या
0: तो
2: कोई बहुत पुराना
0: अरे यार
2: मॉडल हूँ?
0: आप अभी इस टाइम पे आपको देख के तो लग रहा है बहुत हमारे से तो बहुत पुराने मॉडल हो, नो
2: हाँ,
0: डाउट यार,
2: बिल्कुल
0: सब
2: बिल्कुल
0: सबको
2: सही
0: पता
2: कहा।
0: है। तो मतलब आजकल की जिंदगी का प्यार थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है।
2: वो
0: ठीक है, आजकल
2: प्यार
0: वो व्हाट्सएप वाला इंस्टाग्राम वाला प्यार हो गया है, तो उसपे 2 मिनट में वो वाली आईडी आ जाती है जो तुम्हें इंप्रेस करेगी, 2 मिनट में ऐसी आती है तुम्हें ब्लॉक करेगी। तो मुझे समझ नहीं आता उसके ऊपर कुछ है भैया आपके पास, ये जो आजकल के जमाने का प्यार है। एक्चुअली दिस इज लो, मुझे लगता है अट्रैक्शन, इट्स नॉट अ लव यार।
1: अट्रैक्शन कह सकते हो, पर वो एक हवस की तरफ जाता है चीज़ें।
0: करेक्ट, बिल्कुल मुझे भी ऐसे ही लगता है। मतलब एक जिसे कह सकते हैं एकदम रियल वाला प्यार जो एक होता होना चाहिए वो अब है नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। या अभी भी है? जिंदा
1: जिंदा है, तभी तो हम जिंदा
0: है। अरे वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। लेकिन जो आप जैसे लोग हैं फिर वो अपनी दिल की शायरियों के माध्यम से अपने प्यार का इजहार करते हैं, बयां करते हैं, मतलब अपनी कलम और अपनी कॉपी से ना। कुछ है तो बढ़िया सा और सुना दो यार, एक और फिर ब्रेक पे चलेंगे गाइस, म्यूजिकल ब्रेक पे।
1: आपने जैसा सुना होगा कि मतलब मेरे को लगता है ऐसा कि मैं दूसरी मोहब्बत करूंगा किसी से। आप मान लो कि मैं आप किसी और से मोहब्बत कर रहा हूँ, तो मैं उसे पूरी तरह एक इंडल्ज नहीं हो पाऊंगा।
0: ठीक है,
1: तो उसको जो फीलिंग आएगी जो वो मेरे को दे गया अपने, उसको मैंने लिखा है।
0: अरे वाह,
1: तुम क्यों इतना ज्यादा उदास बैठे हो, तुम मुझे अपनी मोहब्बत कहते हो।
0: वाह,
1: मैं हाथ पकड़ लेती हूँ तुम्हारा, मैं हाथ पकड़ लेती हूँ तुम्हारा हर वक्त, तुम फिर भी मुझसे इतना डरे रहते हो। मुझे मालूम है मैं पहली मोहब्बत नहीं, तुम ये मुझे बताने से क्यों घबराते हो। मेरी आंखें तुम्हें समुन्द्र सी लगती हैं, मेरी आंखें तुम्हें समुन्द्र सी लगती हैं, तो फिर तुम इसमें डूबने से क्यों डरा करते हो। मैं तुम्हारे दिले जमीन का हिस्सा हूँ ओम, तुम इस पे हक जताने में भी सोचा करते हो।
0: क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया,
2: शुक्रिया
0: ओम जी, बहुत मजा आ रहा है आपके साथ कॉन्वर्सेशन करने में। गाइस आपको भी आई एम श्योर अच्छा लग रहा होगा। फिलहाल रुकते हैं छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक के लिए, उसके बाद वापस आते हैं। आपकी हिम्मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: वेलकम बैक यू वंस अगेन। आपने अभी बहुत ही बेहतरीन गाना सुना, इसके बाद स्वागत अभिनंदन आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, साथ में अखिल जी भी हमारे साथ दे रहे हैं और ओम अग्रवाल सामने बैठे हैं जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन शेरो शायरी पेश कर रहे हैं आज अपनी आवाज में। बहुत अच्छा लिखकर लेकर आए हैं अखिल जी, आपको मजा आ रहा है यानी ये बताओ पहले।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है और मैं तो यही कहूंगा मजे मजे में। तेरे इश्क ने हमें कुछ इस कदर मशहूर कर दिया,
0: वाह जी वाह,
1: हर खुशी से ज्यादा तेरे गम को मंजूर कर लिया।
0: वेरी नाइस।
1: लोग कहते हैं मोहब्बत में दर्द मिलता है, हमने दर्द को ही अपना सरूर बना लिया।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस, मजा आ गया जी। अखिल जी की शेरो शायरी भी चलती रहेगी दोस्तों, फिलहाल हम ओम जी की तरफ चलेंगे, वो कुछ सुनाने वाले हैं जिसे सुनके शायद आपके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ जाए जी। ओम जी,
2: गजल ये है कि जगह जगह इश्क के बीमार बैठे हैं।
0: वाह,
2: जगह जगह इश्क के बीमार बैठे हैं, हम भी उसी जगह गिरफ्तार बैठे हैं। लोग पूछने आए थे मेरे मौत की वजह, लोग पूछने आए थे मेरे मौत की मजा, घर वाले उसकी तस्वीर लेकर तैयार बैठे हैं। घर वाले
0: तो
2: उसकी तस्वीर लेकर तैयार बैठे हैं।
1: ठीक, कैसी तस्वीर कैसी थी ओम जी, कुछ तो बताएं तस्वीर के बारे में ही बताएं कुछ।
0: उनको खुद नहीं पता ना यार, उनको पता होता है वो बता नहीं देते यार, आप भी तो पीछे पड़ रहे हो यार।
1: आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, तस्वीर कौन ले रहा है, आजकल तो मोबाइल से ही दिखा देते हैं, बायोडेटा भी मोबाइल पे आ रहा है,
0: आजकल मोबाइल पे फेक भी आ रही है, ये भी ध्यान रखना होती कोई और है भेजता कुछ और लोग है ना, रियलिटी वहां से पता लगती है। इसीलिए ऑनलाइन पे भरोसा ना करें, जो आपके सामने प्रस्तुति दे उस पर ही भरोसा करें।
1: तो आनंद जी कहना चाह रहे हैं कि मैं shaadi.com से नहीं, मैं अपनी जो वो होते ना लोकल इन्फॉर्मेशन वाले .com उनके जरिए ही आगे का काम करूँ।
0: हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल, मैं आप जैसे .com पे बिलीव करता हूँ, मैं shaadi.com पे बिलीव नहीं करता अखिल जी, सच बात तो यह है, क्योंकि जो जो इन्फॉर्मेशन आप लोग अच्छी और जेन्युइन दे सकते हैं वो ये .com नहीं दे सकते। वैसे सच बताऊँ तो यार हमें किसी की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, सारी चीजें अपनी जगह पे बहुत ही सही है, जहाँ जिसका काम बने वो बेस्ट है ना, मेरा ऐसा मानना है। तो अपने अपने ट्रस्ट की बात है, बाकी सब बढ़िया है।
1: कुछ ओम जी इसी से मिलता सुनाइए।
0: बिल्कुल, मैं भी ये चाहूंगा, बैक टू पॉइंट।
2: आगे का शेर भी है वैसे।
0: हाँ जी प्लीज बताएं।
2: पढ़ना चाहूंगा कि
0: श्योर,
2: देखो कहाँ तक लेकर जाता है अदाकारी का हुनर।
0: वाह,
2: देखो कहाँ तक लेकर जाता है अदाकारी का हुनर।
0: क्या बात है,
2: कोई शख्स नहीं यहाँ महफिलों में सब किरदार बैठे हैं।
0: अरे
1: क्या बात है,
2: कोई शख्स नहीं यहाँ महफिलों में सब किरदार बैठे हैं, जो हुआ करते थे चिरागों की रोशनी, जो हुआ करते थे चिरागों की रोशनी, देखो वो लोग आज कितने बेजार हैं।
1: बहुत खूब बहुत खूब।
2: उसको कहाँ ढूंढना पड़ा कोई और शख्स मेरे जैसा, उसको कहाँ ढूंढना पड़ा कोई और शख्स मेरे जैसा, मोहल्ले मोहल्ले में बहुत से दिलदार बैठे हैं, मोहल्ले मोहल्ले में बहुत से दिलदार बैठे हैं।
1: वाह।
2: ओम क्या फिर नहीं देखा, ओम क्या फिर नहीं देखा लौट कर उसका हसीन दामन, ओम क्या फिर नहीं देखा लौट कर उसका हसीन दामन, तेरे जैसे आशिक भी, तेरे जैसे आशिक भी क्या इतने खुददार बैठे हैं, तेरे जैसे आशिक भी क्या इतने खुददार बैठे हैं।
1: ओम जी आप हर शायरी में अपने आप को जरूर इंट्रोड्यूस कर देते हैं और ये एक अच्छी बात है,
0: मतलब अपने नाम को जो तुमने ऐड किया ना यार, ये एक अलग ही क्रिएटिविटी है।
1: और
0: ऐसा लग रहा है कि सारी शायरी तुमने खुद के लिए बना डाली, अगर उसमें मैं और अखिल भाई अपने आप को ढूंढेंगे तो ढूंढ के भी नहीं ढूंढ पाएंगे, हो जाएंगे हम तो यार।
1: तो ये तो खोने वाली बातें थी इनकी। अच्छा एक बात बताइए ओम, मतलब मुझे नहीं पता श्रोता जानना चाहते नहीं जानना चाहते, मगर मैं और आनंद जी तो बहुत ही अच्छे से जानना चाहते हैं।
0: डेफिनेटली,
1: कि आपको ये समय कैसे निकालते हैं, क्या मतलब होता है ना कि भाई पूरे दिन आप भी अपनी पढ़ाई में बिजी, अपने काम में बिजी हैं, तो एक पर्टिकुलर आपने टाइम निकालते हैं शायरी को लिखने के लिए, या कुछ मोमेंट होते हैं आपकी लाइफ में और जैसे ही वो कुछ मोमेंट आपके साथ होते हैं तभी आप उस पर कुछ लिखते हैं तरुण?
2: नहीं ऐसा जेन्युइनली नहीं होता है, कि हमेशा याद आती रहती है थोड़ी थोड़ी। तो जैसे कि आप वैसे भी जानते हैं कि लोग आजकल मोहब्बत में जाते हैं, फोन पे टाइम निकाल ही लेते हैं बात करने का, तो मेरे लिए शायरी मेरी मोहब्बत है तो मैं उसके लिए टाइम निकाल ही लेता।
0: That's very nice. और मुझे ऐसा लगता है कि आपको जिस चीज से मोहब्बत होती है ना, जिस चीज के लिए आप डेडिकेटेड होते हो, वो टाइम फिर ऑटोमेटिकली निकल जाता है। वो आपके ब्रेन को ऑलरेडी हिट करता है कि नहीं भाई तुझे ये चीज करनी है ना, वो वाली चीज है। बट वो ये कि जिस चीज से आपको मोहब्बत होगी उसके लिए ऑटोमेटिकली समय निकल जाएगा। अखिल भाई आपको मोहब्बत है रेडियो और माइक से, तो आप समय निकाल के आ ही जाते हैं।
1: मैं तो निकाल ही लेता हूं।
0: बस वही वाली बात है, जिस चीज से जिसको प्यार होगा वो समय निकाल ही लेगा। अच्छा यार एक बात बताओ, ये किसी को जब नया नया प्यार होता है उसमें बहुत सारी शेर शायरी होती है, जब आपको पहली बार प्यार हुआ होगा तो कुछ ना कुछ तो आपने भी चिपकाया ही होगा, हर बंदा चिपकाता है यार, क्यों अखिल भाई? कुछ ना कुछ तो बढ़िया सा, कि तुम्हारे बाल सुंदर है, तुम्हारे गाल सुंदर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ। यार इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कुछ, आप नहीं चाहते तो कुछ, अगर ओम जी आपके पास इससे रिलेटेड हो सपोज किसी को आज नया नया प्यार हुआ हो और वो रेडियो सुन रहा हो,
1: आज आनंद जो है ओम जी आपसे इंटरव्यू में टिप्स ले रहे हैं, तो टिप्स बिल्कुल एकदम बढ़िया वाली देना
0: है। अब अखिल भाई पे तो ट्रस्ट थोड़ा कम है, उनकी टिप्स तो फेल होते हैं, तो मैंने सोचा आपसे ले लूं भाई।
2: ढूंढना पड़ता है इसके लिए थोड़ा।
0: अच्छा कोई बात नहीं, जब तक अखिल भाई आप ढूंढी ढूंढाई सुना दो यार, आपके पास तो डेफिनेटली होंगे।
2: मिल गया है वैसे।
0: अच्छा
1: ढूंढ लिया है।
2: मिल भी गया।
0: क्या बात है, मेरा लक अच्छा है फिर आज। प्लीज भैया।
2: शुरू शुरू में जब प्यार होता है ना,
0: हाँ जी,
2: तो बहुत सारे ख्यालात आते हैं, यार ये खूबसूरत है, वो खूबसूरत है, वो ये कर रही है मेरे लिए, वो कर रही है, तो मैंने उसके लिए लिखा है, अपनी आंखों से मेरी खुशियों की वो इबादत करती रही।
0: वाह।
2: अपनी आंखों से मेरी खुशियों की वो इबादत करती रही, मैं अपना नाम लिख रहा हूँ वो मोहब्बत पढ़ती रही।
0: क्या बात है।
2: मैं अपना नाम लिख रहा हूँ वो मोहब्बत पढ़ती रही, पढ़कर उसने मेरा नाम अपने हाथों की लकीरों पे, वो हाथ पकड़ लेते हैं लकीरें देखने शुरू कर देती है, अपना नाम ढूंढती है। वो पढ़कर उसने मेरा नाम अपने हाथों की लकीरों पर, फिर वो मेरे हाथों की लकीरों से मुलाकात करती रही, फिर वो अपने मेरे हाथों की लकीरों से मुलाकात करती रही। वो एक दिन मेरे करीब आकर बैठी और मुस्कुराई, वो एक दिन मेरे करीब आकर बैठी और मुस्कुराई, देखता गया मैं उसको और वो मेरी चाहत बनती रही।
0: अरे वाह।
2: देखता रह गया मैं उसको और वो मेरी चाहत बनती रही। आंखें बंद करने को बोली जब पहली दफा उसने, तो सच में हुआ था।
0: अच्छा।
2: आंखें बंद करने को बोली जब उसने पहली दफा, गालों को चूम लिया उसने और दिल में बगावत होती रही।
0: क्या बात है।
2: गालों को चूम लिया उसने और दिल में बगावत होती रही। और एक हम थॉट सोचते हैं यार ब्रेकअप हो गया, तो उससे कहते भी हैं तो उस बात पर गुस्सा हो जाती है, उसके बारे में एक शेर है, फुरकत की बात मत किया करो ओम, फुरकत की बात मत किया करो ओम, मेरे हाथों पर उंगली, मेरे होठों पर उंगली रखकर वो शिकायत करती रही, मेरे होठों पर उंगली रखकर वो शिकायत करती रही। चुप करा देती है।
0: क्या बात है, क्या बात है,
1: ये तो है। ये
0: एक
1: तो
0: पल में प्यार हो रहा है, वहीं दूसरे पल में शिकायतें भी हो रही
1: है। ये अभी भी चुप करा देंगी और बाद में जब शादी हो जाएगी तो बिल्कुल ही बड़ा पड़
0: जाएगा। ये बात तो आपने सही,
1: ओम जी जो है बिल्कुल सही पकड़े हैं, सही राह पे चल रहे हैं। इनकी शायरी से पूरा दर्द सबको समझ में आ रहा है कि कहाँ चुप रहना और कहाँ बोलना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और इनकी शायरी में जो बगावत एक शब्द आया, मुझे उससे धर्मेंद्र जी की पिक्चर याद आ गई, बगावत। मैंने फिल्म देखी थी बहुत ही कमाल की।
1: मुझे चला अब ये वर्ड कहाँ से पकड़ लेते।
0: तो ठीक है, एक काम करते हैं, अभी एक गाना सुनते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा। इनको पहली पहली बार प्यार हुआ तो उन्होंने पहली बार पे एक पहली अच्छी शायरी सुनाई, मतलब जब पहली बार प्यार होता है तो उसी से रिलेटेड एक प्यारा सा लव सॉन्ग। उसके बाद मिलते हैं मैं अखिल जी और साथ में हमारे ओम अग्रवाल जी। सो आप कहीं में जाइए, सुनते रहिए FM मुरादाबाद।

0: वेलकम बैक है वंस अगेन. यू आर लिस्टिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6. बंदे का नाम आनंद है एंड ऑफ कोर्स आपकी शाम को हम बहुत ही फैबुलस बना रहे हैं. हमारे साथ अखिल भाई हैं आज की इवनिंग में. ओम अग्रवाल जी बैठे हुए हैं जो अपने प्यार की चिट्ठी पूरी लेकर आए हैं लिख के. इतनी बड़ी मतलब भारी भरकम डायरी वो लेकर आए हैं और एक नहीं दो तीन डायरी लेकर आए हैं लेकिन सुना वो एक में से रहे हैं. ये मजे की बात है. लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? बाकी डायरी क्या फिर नेक्स्ट टाइम आने का प्लान कर रहे हो?
1: बाकी का फिल्टर है.
0: अच्छा फिल्टर है ये.
2: कई सारी डायरीज में जो इम्पोर्टेंट डायरी है वो तुम्हारे सामने आज.
0: अच्छा ओके वेल कोई बात नहीं. अरे हम तो कहेंगे जो भी आप सुनाते दिल से हमारे लिए तो वही बढ़िया है.
2: ये, आज ये टिप्स ना बढ़िया वाली देना. आज ये बिल्कुल एकदम बैठे हुए हैं स्टूडियो से बाहर निकलते रात चलते ये भी अपने कोई ना कोई नगमा ढूंढ ही लेंगे.
0: नहीं भाई नगमा नहीं ढूंढना मुझे तरन्नुम ढूंढना है.
1: अरे
0: ढूंढनी है सॉरी गड़बड़ हो गया है सॉरी. वेल कोई बात नहीं. इस बहाने से आप लोग के चेहरे पे हंसी तो आई ना. मेरा मेन मोटिव यही होता है मेरा मेन टिप होता है दोस्तों कि आप हंसे मुस्कुराए और ऐसे ही इस कॉन्वर्सेशन को एंजॉय करें. बैक टू पॉइंट अखिल भाई जब तक कुछ बढ़िया निकालेंगे तब तक हम ओम जी से कुछ बढ़िया सुनते हैं. जी ओम जी.
1: अरे आपको कभी जैसे मोहब्बत नहीं हुई शायद अभी?
0: नहीं यार बिल्कुल मुझे कभी मोहब्बत हुई नहीं है. हुई है तो सिर्फ अपने काम से हुई है और इसके लिए मैं जितना सोचूं जितना लिखूं वो कम है.
1: उससे तो होनी भी चाहिए. जैसे कि आप मोहब्बत मुकम्मल होती है.
0: हाँ,
1: उसकी खुशी होती है.
0: करेक्ट.
1: तो मैंने एक रील देखी थी कि वो एक लड़का अपनी होने वाली वाइफ को सिंदूर लगा रहा था. तो उसने अपने ससुर जी से कह दिया कि मेरी घड़ी का वक्त रुक दो उस घड़ी को संभाल के रखूंगा. तो मैंने उसके लिए लिखी थी एक रुक जाता है वक्त रुक जाता है वक्त
2: ले लेंगे लाइन.
1: रुक जाता है वक्त जब भी तुम्हें देखा है मैंने. आसमान में अब चांद नहीं आईना देखा है मैंने.
0: वाह.
1: यूं तो तुमने भी निभा लिया ऐदे मोहब्बत मोहब्बत का वादा. यूं तो तुमने भी निभा लिया ऐदे मोहब्बत मांग भर के तो वक्त भी रोक दिया है मैंने.
2: क्या बात है.
1: कभी तो लगता है मैं ही कभी तो लगता है मैं ही खड़ा हूं सामने. कभी तो खुद में ही तुम्हें देखा है मैंने. लगता है बहुत अमीर हो चुका हूं मैं. शायद तेरे हाथ को ही थाम लिया है मैंने. ओम तुझे हो गई है मोहब्बत शायद. ये खुद से कई कई बार कहा है मैंने.
0: वाह.
1: ये खुद से कई कई बार कह दिया है मैंने.
0: बहुत ही बढ़िया. तो कितनी बार कहा है आपने खुद से?
1: अभी तो निकाल
0: की बात तो पूछ ली जरा मैं. क्यों अखिल भाई
2: नहीं,
0: ये शायरी है ये सच्चे दिल की बात है या हमसे छुपाया जा रहा है?
1: अरे अभी तो नहीं है अभी.
0: अच्छा अच्छा अभी मतलब सिर्फ जितना भी हमारी शेरो शायरी तक ही सीमित है.
1: हाँ शेरो शायरी तक ही सीमित है. एक इमेजिनेशन होती है.
0: हाँ. बहुत जरूरी है. तो फ्यूचर प्लानिंग के लिए क्या कोई बढ़िया सी तुमने लिखी है जो फ्यूचर में तुम्हारे आने वाली होगी तो कैसी होगी उसके लिए बढ़िया सा?
1: उसके लिए अभी लिख नहीं पाया क्योंकि मैं अब उस चीज में इतना सोचता नहीं हूँ.
0: ओके.
1: डर लगता है उससे.
0: डर लगता है बहुत.
2: अच्छा जी जो बीच बीच में शायरी में ओम जी आ जाते हैं हमारे. तो अगर उन ओम जी को कभी फेसबुक या इंस्टाग्राम में अगर उनकी शायरी पढ़नी चाहे देखनी चाहे तो आप कैसे कांटेक्ट किया जाए उसमें?
1: मेरा एक पेज है दिल ए स्याही नाम से.
2: दिल है
1: दिल ए स्याही.
2: दिल ए स्याही तो उस पेज को
1: फॉलो कर सकते
2: हैं. फॉलो कर सकते
1: हैं तो आपको.
2: तो आनंद जी तो अभी फॉलो कर लेंगे.
0: नहीं हमने कर रखा है तभी वो यहाँ बैठे हैं. फॉलो नहीं करते तो वो यहाँ नहीं बैठे होते. सच्चाई यही है. क्यों ओम जी?
1: जी जी.
0: हम एक दूसरे की एक्टिविटी देखते रहते हैं. बहुत जरूरी है उससे पता चलता रहता है कि कौन कितना क्रिएटिव है.
2: एक दिन नगमे जो है पकड़े जा रहे हैं.
0: करेक्ट. कह सकते हैं आप नहीं डालते हो ना इसलिए आपका नगमा पीछे रखा हुआ है. आप भी पोस्ट करना शुरू करो. अच्छा भैया एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था कि जो जैसे होता है ना कि कई बार हर इंसान को हर चीज पसंद आए जरूरी नहीं होता है ना. आप जो शेर व शायरी कर रहे हो वो आपको पसंद है वो आपका क्राइटेरिया है क्योंकि आप उस चीज को बहुत तवज्जो देते हैं. लेकिन आपके जो यार दोस्त हैं उनको तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है पसंद नहीं होती लेकिन वो फिर भी वाह वाह करते हैं. उसके पीछे का रीजन क्या है?
1: ऐसा नहीं है इन लोगों का भी दिल टूटा है.
0: अच्छा ओ,
2: जो आपके साथ आपके दोस्त आए हुए हैं जो आपके साथ ही चलते हैं
0: उनका भी दिल
2: टूटा है. उनका नजरिया भी हम जानना चाहेंगे कि कभी जैसे ओम ने कुछ लिखा है या कुछ भी कोई बात तो कहीं क्लिक करता है आपके मन में या माइंड में? यार
0: थोड़ा सा पहले अपने बारे में बता दो यार अखिल भाई. मैं पूछना चाहूंगा इनके बारे में थोड़ा सा. आप बोलो कुछ.
3: मेरा नाम अंतरिक्ष है और मैं ओम को.
0: अंतरिक्ष
3: जी
0: जो आसमान में जाते हैं यहाँ पे साइंटिस्ट भी जाते हैं शायद वहाँ पे अंतरिक्ष.
2: आज आप पूरा यूनिवर्स साथ में.
0: अरे वाह मैं पहली बार मिल रहा हूँ सर. हेलो कैसे हो आप?
3: मैं
0: पूरा अंतरिक्ष को देख पा रहा हूँ आपके अंदर. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. वेरी नाइस. हाँ मैं भी बढ़िया हूँ. आपको कैसे लग रहा है ये बताइए यहाँ के.
3: मेरे लिए एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम है. मैंने मुरादाबाद में कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मैं किसी स्टूडियो में बैठ के ऐसे एक पॉडकास्ट सेटअप में बातें कर रहा हूँ
0: क्या बात जैसे है? अरे वाह,
3: तो ये मेरे लिए बहुत बढ़िया फीलिंग है.
0: अमेजिंग, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से बोल पा रहे हैं. ये भी अच्छी फीलिंग है कि चलो अच्छी बात है, क्योंकि हर कोई नहीं बोल पाता है ना, ये वाली बात है.
3: बोलने में तो बहुत ज्यादा माहिर हूँ.
0: अरे वाह क्या बात है.
3: मैंने बहुत सारे शोज भी करे गाने के, तो एक्सपीरियंस यहाँ पे एक स्टूडियो में बैठ के फर्स्ट टाइम है, बट ऑडियंस के सामने नहीं है, तो मैं इतना घबराता नहीं हूँ बोलने से.
0: नहीं नहीं से यार क्या बात है. तो आप क्या अच्छा गाते हैं अखिल भैया? आप फिर तो जब गाने की, हम लोग तो वैसे भी ढूंढते हैं ऐसे लोगों को, भाई कुछ तो पकड़ के सुनाओ, कुछ तो बढ़िया गुनगुनाओ. मतलब क्या चीज है जो आप, मतलब आप पहले से गाते हैं या मतलब?
3: नहीं नहीं मैम, मेरे को
4: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं. बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान. पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद.
5: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स. यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट.
6: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है.
5: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद. मोबाइल नंबर 7055070552.
7: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा. डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है. एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारी वादा.
8: खड़गे पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की. मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है.
9: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है. प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे.
8: इस बीच लोक कल्याण मार्ग के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और विपक्षी दलों के अन्य सदस्यों को हिरासत में ले लिया है. संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई. और ब्यौरा हमारे संवाददाता से.
10: मानसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई. दोनों सदन 3 बार स्थगित हुए. विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे. हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका. लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा. राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा. राज्यसभा के चेयरमैन CP राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा. सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
8: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है. आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन NDA संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं.
11: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें.
8: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने आज कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है. संसद भवन परिसर में श्री पासवान ने विपक्ष से रचनात्मक सुझाव देने और सार्थक बातचीत में भाग लेने का आग्रह भी किया।
12: प्राइम मिनिस्टर इज वेरी क्लियर कि हमें रिफॉर्म्स करने होंगे। हर मंत्रालय को कहा जा रहा है, इंक्लूडिंग शिक्षा मंत्रालय, कि आप रिफॉर्म्स लाइए। आज की परिस्थिति के हिसाब से हम लोगों को व्यवस्था निर्माण करने की जरूरत है। आप सुझाव देंगे, हम करेंगे रिफॉर्म। कल से संवाद के दरवाजे खुले हैं।
8: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि सरकार ने बदलती वैश्विक भू राजनैतिक और आर्थिक स्थितियों के बीच निर्यात बाजारों में विविधता लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री प्रसाद ने कहा कि इनमें मुक्त व्यापार समझौते और व्यापक आर्थिक साझेदारी तथा सहयोग समझौतों का विस्तार करना और प्राथमिकता वाले बाजार पहुंच हासिल करने के लिए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और क्षेत्रों के साथ व्यापार वार्ता करना शामिल है। भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रुपये से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। ये समाचार

0: आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच यूसीसी विधेयक पारित हुआ। एक रिपोर्ट।
1: कांग्रेस विधायकों ने बिल को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की, लेकिन सरकार ने ये मांग खारिज कर दी। इसके बाद विपक्षी विधायक सदन के बीच में आकर नारेबाजी करने लगे और कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी, लेकिन सरकार ने बहुमत के बल पर बिल को पास करा लिया। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में एक महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने नामची जिले के समरदुंग में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC की घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। घटनास्थल से अब तक 12 शव निकाले जा चुके हैं और 13 अन्य लोग अभी भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री से बात करके हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।
2: सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ओले ने आज दुर्घटना वाली जगह का दौरा किया और हालत का जायजा लिया। श्री गोले ने उम्मीद जताई कि एक उच्च स्तरीय जांच से इस दुखद घटना से जुड़ी सभी बातें सामने आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि सिक्किम सरकार मृतकों के परिवार को मुआवजा देगी। इस बीच सिक्किम के मुख्य सचिव ने भी आज नामची में अलग अलग विभागों के साथ समीक्षा बैठक की ताकि चल रहे बचाव अभियान में तेजी लाई जा सके। इस बीच NDRF की और एक टीम नए उपकरणों के साथ बचाव अभियान में लगे हुए हैं। मानस प्रदीप शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। सरकार ने दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले में विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस के पैलेट गन का इस्तेमाल करने की सोशल मीडिया की खबरों को गलत बताया है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कील लगे डंडों के इस्तेमाल करने के दावों को भी खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर प्रतिबंधित नक्सली संगठन के कट्टर माओवादी अजय महतो की पत्नी अनीता किस्कू उर्फ बबीता महतो ने आज गिरिडीह पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि उसे झारखंड सरकार की नई दिशा, एक नई पहल, पुनर्वास नीति के तहत 3 लाख रुपए की सहायता और अन्य पुनर्वास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप NewsOnAIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपियो में राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों ही देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
3: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने IT, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
0: पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से हुर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार बुशहर प्रांत को भी निशाना बनाया गया है। एक रिपोर्ट।
4: ईरान ने हॉर्मूज जल डमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया, वहीं अमेरिका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठकें शुरू की। ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी है। इससे पहले अमेरिका ने हमलों में दक्षिण पश्चिमी ईरान के हॉर्मूज शहर को निशाना बनाया। जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान की ओर से नए हमलों की जानकारी दी है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बंद और चक्का जाम जारी है। JAAC ने आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए न्याय और अपनी मांगे मनवाने के लिए 23 जुलाई को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन में गुजरात, पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में अगले तीन दिनों में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी कल तक आंधी तूफान की संभावना है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने का अनुमान है। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। मोहित एचएस और सूरज करकेरा गोलकीपर के रूप में हैं। हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहित, युवराज सिंह, सुमित मनप्रीत और हार्दिक सिंह भी इस टीम का हिस्सा हैं। उधर कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बना ली है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। एक बार फिर, सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसिडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय टीम की घोषणा की। और इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग।
6: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
7: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
8: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।

0: सियासी मुजरिम हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स। हमें किताबें मिलनी चाहिए लिखने के लिए, पेन पेपर और कम से कम रोज का एक अखबार।
1: और तब तक हम नहीं खाएंगे, भूख हड़ताल जारी रहेगी।

नमस्कार मुरादाबाद, मैं हूं आपका दोस्त अखिल और आप सुन रहे हैं अपना शो दिल से दिल तक अखिल संग। कैसा हो रहा है आपका हालचाल? स्टेशन रोड के पास अगर फंसे हुए हैं तो कम से कम हॉर्न बजाइए, क्योंकि साहब जाम नहीं खुलता, इधर उधर लग जाता है ऑटो, फिर देखते रहो भाई साहब, कर लो थोड़ा साइड, हमें जाना है आगे। मगर अब आपकी गाड़ी निकल पड़ी है और आपके पास नंबर भी मौजूद है 9837896896। फटाफट हमें मैसेज करें या कॉल करके बताएं कि कौन सा गाना है। आज नई नई गाड़ी ली है ना, तो नया गाना तो प्ले होना चाहिए, वो भी पसंद वाला। तो ज़रूर हमें बताएं 9837896896 पे अखिल को अपने थोड़ी सी दिल की बात। आज हम करेंगे कुछ नए टॉपिक पे बात, और उससे पहले सुनते हैं एक बढ़िया सा गाना, फिर आते हैं खूब सारी बातों पे, आपकी दिल की और हमारे दिल की। चलिए साहब,

0: Yarri.
1: दोस्तों, अगर हर दिन बिल्कुल एक जैसा हो, वही रास्ता, वही लोग और वही सोच, तो ज़िंदगी धीरे धीरे ना एक किताब नहीं बल्कि एक डायरी सी बन जाती है, जिसमें हर पन्ना एक जैसा ही लगता है। तो इसलिए आज का सवाल है कि लाइफ में कुछ ना कुछ तो नया होता रहना चाहिए। आप ही बताइए कि आखिरी बार कब कुछ नया किया था। हमें ज़रूर हमें मैसेज करें और कॉल करके बताएं कि भैया मैंने तो कल ही एक चीज़ नई करी थी, या आज ही एक ये नई चीज़ ट्राई करी है। जो हर रोज़ नया सपना सजाता है, वही अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है। ज़िंदगी ठहरने का नाम नहीं दोस्तों, जो बदलता है वही मुस्कुराता है। बिल्कुल सही कहा। और अभी हम जुड़ते हैं अपने एक नए लिसनर से, देखते हैं कि क्या कहते हैं, उन्होंने आज क्या क्या नई चीज़ें करी हैं। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, कौन बोल रहा है?
2: मैं धैर्य बोल रहा हूँ, कैसे हो आप अखिल सर?
1: अरे धैर्य जी, कैसे हैं आप? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। क्या कर रहे हैं इस समय?
2: अभी कुछ नहीं, बस मन कर रहा रेडियो सुन रहा।
1: क्या बात है, मन कर रहा है आजकल आपका रेडियो सुनने का बहुत, है ना?
2: और फोन मिलाने का।
1: ये भी अच्छा है, ये भी एक ना चस्का होता है कि कभी कुछ टाइम याद रहते हैं कि इस टाइम पे ना हमें या तो फोन मिलाना है या किसी से बात करनी है।
2: मतलब कभी आपको कभी 8 बजे होता है, कभी 9 बजे होता है आपका शो।
1: बिल्कुल सही है। तो आज हम बात कर रहे हैं धैर्य कि क्या हमें कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए, और अगर हाँ तो आपने आखिरी बार नया कब किया, कुछ नया किया आज आपने? जैसे सुबह स्कूल गए, फिर स्कूल से वापस आए, उसके बाद आपने क्या क्या किया आज, बताइए हमारे सभी श्रोताओं को।
2: मतलब आज मैंने एक चीज सीखी है, मतलब कि टाई कैसे बांधते हैं।
1: टाई कैसे बांधते हैं? तो बताओ आज कैसे आपने, कैसे फोल्ड, कितने फोल्ड में आपने आज टाई बांधी, ये बता दो। चलो
2: मतलब मैंने भैया से बनवाता हूँ टाई, तो मैंने देखा आज वो भैया मेरे बांध रहे थे टाई, तो मैंने भी बोला भैया मुझे सिखा दो, तो भैया ने आज जब मैंने कह दिया कि शाम को जब हम स्कूल से आएंगे तब बांध सिखा दूंगा, तब भैया ने मेरे को सिखा दिया बांधना।
1: क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया भैया है। मतलब आपने आज कुछ नया सीख ही लिया। तो आ गई पूरी तरीके से टाई बांधनी है, अभी बस घूम जाते हैं, एक नॉट कभी इधर चली गई, एक नॉट उधर, नॉट उधर चली गई?
2: नहीं, मतलब अब ऐसी हो गई कि 3-4 बार कर ली है, तो अब मतलब याद हो गई मुझे टाई कैसे बांधते हैं।
1: अच्छा, चलो साहब, एक बार जो है हम भी आपसे आगे सीखेंगे। मैंने भी टाई बांधना बहुत सीखा था, मगर एक आध नोट मैं कभी ना कभी इधर उधर घुमा ही देता था, तो जो नोट, जो बड़ी सी नोट होती थी, वो नोट बड़ी ना होके ना छोटी सी एकदम चिपक जाती थी वो।
2: वो तो होता ही है मेरे साथ।
1: और क्या कहते हैं, और कुछ नया सीखा आज?
2: और
1: ये भी सही है, खेल कूद में भी नए नए ना बॉलिंग के एक्शन और बैटिंग के एक्शन सीखते रहा करो।
2: हाँ, मैं यही करता हूँ, मेरा सपना भी क्रिकेटर बनने का ही है।
1: तो सपना भी जरूर पूरा होगा, बस लगे रहना है उस पे, पीछे नहीं हटना है। तो आज कौन सा गाना सुनना चाहेगा धैर्य? कोई नया सा गाना या कुछ नया सा हम प्ले कर दें?

0: मतलब कुछ नया सा गाना,
1: कुछ नया सा। तो चलो आपको मैं आज एक ये गाना प्ले करूँगा और आप मतलब सर्च करना कि हाँ ये नया सा गाना मैंने कभी सुना था या नहीं सुना था, ठीक है?
0: हाँ।
1: और क्या कहते हैं, इसका मैसेज करके मेरे को ये भी बताना कि इस गाने में हीरोइन कौन है। चलो ठीक है धैर्य, थैंक यू धैर्य हमें कॉल करने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तो श्रोताओं ये थे हमारे साथ धैर्य जी, वो कह रहे हैं कि आज मैंने ना नया सीखा है और वो है टाई बांधना। तो यार ये तो सच में नया ही है, एक जब स्टूडेंट लाइफ में आप नॉट बांधना सीखते हैं, टाई बांधना सीखते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि आज चलो मैं पहले अपने पास ही खुद ही टाई बांध के स्कूल जाता हूँ और पूरे दिन उस पर ना हल्का सा कंसंट्रेट रहता है। यार सच में मेरी नोट सही बांध रही है, बार बार उसे हिला के देखना पड़ता है कि हाँ यार सही बांधी है मैंने तो नोट। तो आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ है ना तो सच में आपको हंसी तो आ ही रही होगी। तो कोई बात नहीं, अपनी आप गाड़ी ड्राइव करते रहिए, मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा है, कहीं बूंदाबांदी हो रही है कहीं नहीं हो रही है, तो हमें ट्रैफिक अपडेट्स भी दीजिए अगर फंसे हैं स्टेशन पे या फिर MDA में कहीं ना कहीं चटोरी गली में लग गई है आपकी भीड़ और गाड़ी फंस गई है फंस, तो ज़रूर हमें बताएं कि इस समय आप हैं कहाँ, हमारे पास भी ट्रैफिक अपडेट्स भेजते रहें 9837896896 पे। और इस गाने के बाद हम फिर से मिलते हैं आपको नए नए तरीके बताने के लिए।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे, आपके शहर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। तो जी हाँ, अभी जो गाना प्ले हो रहा था उसमें मुझे लगता है आप लोगों ने तो पहचान ही लिया होगा कि कौन सी हीरोइन थी जो उसमें परफॉर्म कर रही थी। अगर पहचान लिया है ना तो हमें ज़रूर मैसेज करें, और कोई ना कोई गिफ्ट वाउचर आपका वेट ही कर रहा है 9837896896 पे। कहते हैं ना कि कभी भी कुछ भी नया करने के लिए कभी किसी से पूछना नहीं पड़ता है, तो ये बात सच में सही है कि अगर आप कभी भी कुछ नया कर रहे हैं तो उसमें अपनी सहमति ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि दूसरे की सहमति से ज़्यादा। हमारे पास मैसेज आया है प्राची जी का, और प्राची जी कहती हैं कि अखिल जी, मैंने अभी थोड़े दिनों पहले ही आपके एक शो में आपने एक टॉपिक पे डिस्कस किया था ट्रैवलिंग का, तो उसके बाद मैं एक बार अकेले अभी ट्रिप करके आई हूँ रामनगर का, वो भी सोलो, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो क्या बात है प्राची जी, आपने कम से कम एक बार हिम्मत करी और एक नई चीज़ आपने अपने साथ, कहते हैं ना, अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस की, तो बहुत अच्छा है। ऐसी ही खूबसूरत सफ़र वही होता है जिसमें इंसान खुद से मिलता है। और दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि नया करने का मतलब सिर्फ ये भी नहीं कि नया जगह कहीं आप घूम लिया या आपने कहीं पुराने दोस्त को फ़ोन कर लिया, मगर कभी कभी कुछ नया ऐसा भी होता है कि एकदम सरप्राइज दे दिया जाके उसको। अब ऐसे ही सरप्राइज हमारे पास आ जाते हैं, कॉल आ जाती है, तो चलिए अपने एक लिसनर से बात करते हैं, और वो कहते पूछते हैं कि उन्होंने आज कुछ नया किया या अभी हाल फिलहाल में कुछ नया किया है। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, क्या है आपका नाम?
1: मेरा नाम इकराम हुसैन है सर।
0: इकराम हुसैन जी, क्या करते हैं आप?
1: सर मैं खराद मशीन का काम करता हूँ, पूजा के आइटम बनाता हूँ सर मंदिर के।
0: और कहाँ रहते हैं आप?
1: सर मैं मलकद्दा गांव में रहता हूँ सर, हर्बल पार्क के पास में।
0: तो पार्क में भी कभी कभी घुमाते हैं? नहीं।
1: हाँ सर, कई बार गए हूँ मैं, 7 अजूबे में गया हूँ, हर्बल पार्क में गया हूँ सर।
0: तो कैसा लगा आपको 7 अजूबे?
1: हाँ तो दिन में सर बहुत शानदार बनवाए सर, जवाब नहीं।
0: हाँ ये तो है, कुछ तो नया आया ही है मुरादाबाद में, और घूमने की जगह भी कुछ नई नई हमें पता चली है अब कि हाँ, मुरादाबाद में अगर कोई आए तो हम उससे कह सकते हैं कि घूमने के लिए हर्बल पार्क, 7 अजूबे पार्क, हनुमान वाटिका, गांधी मैदान, आप यहाँ पे घूमने जा सकते हैं।
1: जी जी।
0: और बताइए, आप पूरा दिन कैसा गया?
1: सर बस बढ़िया गया सर, आज गर्मी थोड़ी सी कम थी।
0: आज गर्मी थोड़ी सी कम थी?
1: हाँ गर्मी कम थी सर आज।
0: तो आज हम
1: मौसम बढ़िया हो रहा था।
0: हाँ आज मौसम तो बढ़िया हो रहा था, गर्मी सच में थोड़ी सी तो कम थी आज।
1: जी जी।
0: तो आपने क्या नया किया है कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को कि कुछ नया क्या करते रहते हैं अगर आप।
1: सर नया क्या है, बस अपना वो शीतल का काम करते हैं सर हम, विरास का, कभी कुछ बना दिया कभी कुछ बना दिया, ज्योति धूपिया चिराग यही बनाते हैं सर।
0: बहुत बढ़िया। और उसके अलावा कभी कुछ ऐसा नया कि चलो आज यहाँ पे भी घूम आते हैं, या फिर यहाँ पे ऐसी ही थोड़ी सी?
1: अभी मैं क्या बोला पिछले हफ्ते गया था सर, क्या बोला ऋषिकेश गया था।
0: ऋषिकेश घूमने गए थे आप?
1: जी हरिद्वार गया था, ऋषिकेश घूमने के लिए गया था सर।
0: तो आपके साथ बहुत टाइम बाद कुछ ऐसा नया हुआ कि आप घूम कर भी आए?
1: जी
0: मैं कह रहा हूँ बहुत टाइम बाद कुछ ऐसा नया हुआ आपके साथ कि आप घूम के भी आए?
1: नया हुआ सर, यहाँ बहुत टाइम के बाद में गया सर, मैं कम से कम 1 साल के बाद में गया था।
0: चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो आज कौन सा नया गाना, कोई नई फरमाइश ऐसा सुनना चाहेंगे आप?
1: जी यहाँ गाना है दिल है तुम्हारा मूवी का गाना है सर, वो साहिबा।
0: तो ज़रूर वो साहिबा को भी प्ले किया जाएगा, और आपके लिए भी कुछ नया किया। आप कुछ नाम लेना चाह रहे थे, आप बताइए क्या नाम लेना चाह रहे थे?
1: मेरी वाइफ है सलमा नाम है वाइफ का, और मेरी लड़की है बड़ी उम्मे सुलेम, फिर सुहाना है, अलीना, मोहम्मद अर्फ, ये सब सुनना चाहेंगे सर।
0: बहुत ही बढ़िया। तो सभी को हम ये गाना सुनाते हैं आपकी फरमाइश का, और सभी इस गाने को एंजॉय भी करें पूरी उम्मीद। धन्यवाद सर। नमस्कार जी। तो ये थे हुसैन साहब जो हमारे साथ जुड़े थे हर्बल पार्क के पास से, और कह रहे हैं कि मुझे अभी जो हाल फिलहाल में नयापन करके आया हूँ वो है कि मैं ऋषिकेश घूम के आया हूँ, और घूमने में जो नयापन आता है ना इनका, वो कहते हैं अलग ही मज़ा है उसका। तो चलिए आप भी थोड़ा सा घूम के आइए, कुछ हमें मैसेज भी घुमाइए, कुछ बताइए कि क्या नया किया है आपने 9837896896 पे। तब तक के लिए सुनते हैं बढ़िया सा गाना।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स, ऑपोजिट मधुबनी पार्क, कांत रोड, मुरादाबाद। कॉल नाउ 9।

0: 1221111.
1: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
2: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
2: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
3: मुरादाबाद
1: से संपर्क कीजिए।
2: नियम और शर्तें लागू।

0: एक बार फिर से स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आपका अपना पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। तो अभी तक तो आपने सोच ही लिया होगा क्या नाम है उस हीरोइन का जो हमने पिछले गाने में प्ले करा था या जो आई थी। तो अगर अभी भी नहीं पता तो सोच लीजिए साहब, हम पे मैसेजेस आए हुए हैं और अभी बताते हैं कौन है जिसने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इतना बढ़िया मौसम हो रहा है, रिमझिम सी भी चल रही है थोड़ी थोड़ी, तो कुछ ना कुछ तो आप नया कर ही रहे होंगे और जो भी कर रहे हैं हमें ज़रूर बताइए। तब तक हम अपने लिसनर से कांटेक्ट करते हैं, बात करते हैं कि क्या कर रहे हैं वो और आज क्या क्या बताएंगे वो। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप?
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार साहब, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: जी मैं सेंट्रल कश्मीर से बात कर रहा हूँ, जिला बड़गाम में हमारा गांव पड़ता है। मेरा शुभ नाम नईम मलिक है।
0: नईम मलिक जी, आप कैसे हैं?
1: अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ, आपकी दुआ से मैं बहुत ही बेहतरीन हूँ। आप लोग कैसे हैं सर?
0: सब बढ़िया हैं और यहाँ पे भी हल्की हल्की सी रिमझिम हो रही है। आपकी तरफ कैसा है मौसम?
1: बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और अगर मैं कहूँ आधा कश्मीर सैलाब की जद में आ चुका है।
0: इतनी बारिश हो रही है उधर?
1: इतनी बारिश हो रही है जहाँ पर मैं रहता हूँ, जहाँ हमारा तहसील पड़ता है, अभी तक लगभग 3 बजे से लेकर शाम की 6 बजे तक बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। एक कम्प्लेक्स सैलाब की जद में आ चुका है, के अलावा एक पुल भी सैलाब की जद में आ चुका है।
0: क्या साहब, मतलब कहते हैं कभी कभी प्रकृति से भी आप जीत तो सकते नहीं है, जगह ज्यादा है तो भी नुकसान है और कम है तो भी नुकसान है।
1: जी जी जी, तो बहुत सारा मशहूर ज्यादा कश्मीर के अंदर जितने भी नाले हैं, बड़े बड़े नाले हैं, लेकिन अगर आपको मैं कहूँगा जो हमारा जम्मू डिवीजन है वहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, चाहे रजौरी की बात करेंगे, पूंछ साइड की बात करेंगे, तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो ये सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में होता है, अब इंसान क्या कर सकते हैं, सिर्फ दुआएं कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी हमने भी खबर, हमें भी पता चली है कि वहाँ पे भी चारों धाम की यात्रा जो है इस समय अभी रोक दी गई है, क्योंकि हर जगह हर तरफ थोड़ी सी कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड हो ही रहा है।
1: बिल्कुल, बहुत ज्यादा जगह, क्योंकि जम्मू श्रीनगर जम्मू जो नेशनल हाईवे है उसमें भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, और जो हमारे श्रीनगर स्मॉल सिटी है उसमें भी पानी आ चुका है, इसलिए रोका गया।
0: चलिए नहीं साहब, इससे तो अब जो आनी है जो भी है मुसीबत उससे तो निपटना ही है। तो आप ये बताइए कि आपने क्या आजकल कुछ नया करा है, नहीं करा है, या क्या नया करते रहते हैं आप?
1: बस आजकल तो मैंने कहा बस बारिश का मजा, इसके अलावा मैंने थकड़ी नहीं बता। आज जो सुबह हल्की हल्की बारिश है तो मैंने क्या किया, सुबह सवेरे उठकर शॉप खोला, उसके बाद सीधे चले गए सेब के बाग।
0: क्या करा आपने, कौन से बाग में?
1: सेब के बाग में
0: क्या नया किया आपने साहब?
1: बस वहाँ मैंने देखे कि हमारे जो छोटे छोटे अखरोट के दरख्त होते हैं वो कैसे हमारे अखरोट कितने बढ़ चुके हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपके वहाँ पे अखरोट की भी खेती है?
1: बहुत ज्यादा मिलते हैं वहाँ पर, यहाँ पर।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आएंगे अब तो बहुत जल्दी, जब थोड़ा सा मौसम सही होगा तो जरूर आपके सेब के बागों में भी घूमेंगे साहब।
1: इंतजार है मुझे उस दिन का, जिस दिन आप यहाँ कश्मीर आओगे तो सबसे पहले मैं आपको कश्मीरी शॉल डालूंगा, वो हमारी सबसे ज्यादा मशहूर होते हैं कश्मीरी शॉल।
0: जरूर नईम साहब, जरूर। नहीं साहब, एक बार बताइए, एक पहेली आपसे पूछते हैं, अब आपसे इतनी बातें हो गई हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे जितना ज़्यादा निकालो वो उतना ही क्या कहते हैं बड़ी होती जाती है या बड़ा होते जाता है?
1: इतनी जानकारी मुझे नहीं है, जितना निकालो उतना बड़ी होती है।
0: हाँ, अगर नहीं, अगर ये पहेली आपके साथ साथ हमारे सभी श्रोताओं के लिए भी है जो इस समय गाड़ी में घूम रहे हैं या कहीं अपनी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं, तो ज़रूर इस पहेली का हमें जवाब मैसेज करें 9837896896 पे। और बताइए नईम साहब, आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: जानवर फिल्म का नगमा है, मौसम की तरह तुम भी बदलते न जाओगे।
0: क्या बात है, मौसम भी ऐसे ही चल रहा है, कभी बदल रहा है कभी कुछ हो रहा है, और आपने गाना भी वही चुना है, बहुत ही बढ़िया नईम साहब। किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे ये गाना आप?
1: जी जी जी, मेरी बेटी उनको और आपको भी।
0: धन्यवाद साहब, धन्यवाद नईम साहब,
1: धन्यवाद,
0: बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात।
1: थैंक यू।
0: तो श्रोताओं, हमारे साथ जुड़े थे नईम साहब कश्मीर से, कह रहे हैं आजकल वहां पे भी खूब सारी बारिश हो रही है, खूब बाढ़ जैसा मौसम, बाढ़ जैसे हालात हो रहे हैं। तो हाँ, ये तो है, थोड़ा सा पहाड़ों पर अगर आप लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं या सोच रहे हैं तो थोड़ा सा भी उसे आगे के लिए पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि इस समय बारिश की वजह से और तूफानों की वजह से और कहते हैं ना ज़्यादा ज़्यादा पानी की वजह से भी बाढ़ की और ऐसे ही लैंडस्लाइड्स की बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो जो भी है मस्ती करें, कुछ करना है ना नया तो अपने शहर में ही करें, बहुत कुछ है आपके लिए करने के लिए। तब तक इनके लिए गाना सुनते हैं, और आप लोग कहीं मत जाएं, हमें मैसेज करें जो मैंने पहली पूछी, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे जितना ज़्यादा निकालो उतना ही बड़ा होता जाता है। तो फटाफट जवाब दीजिए, तब तक ये गाना का एंजॉय करते हैं। 9837896896 पे

एक बार फिर से स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। जी हाँ, रास्ते बदलो मंजिल नहीं, सोच बदलो दिल नहीं, हर दिन कुछ नया सीखते रहो क्योंकि वक्त रुकता नहीं। तो कहते हैं कि चलते रहो पीछे मुड़ के मत देखो, इसलिए कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ नया करते रहो। हमारे पास मैसेजेस आए और राधिका जी का मैसेज आया कि अखिल जी, जो अभी आपने पूछा था कि कौन सी एक्ट्रेस हैं जो इस गाने में हैं केसरा केसरा पुकार मूवी से, उनका नाम है माधुरी दीक्षित। क्या बात है राधिका जी, आपने क्या जवाब दिया है, और आपके ही नंबर पे हमने एक वाउचर भी भेज दिया है। तो आपके इस जवाब पे आपको एक बढ़िया सा वाउचर मिला है, और जब आप इसको यूज़ करें तो एफएम मुरादाबाद को ज़रूर याद करें। एक पहेली भी पूछी थी दोस्तों मैंने आपसे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो जिसे ज़्यादा कहते हैं ना पढ़ा जो ज़्यादा सॉरी सॉरी सॉरी सॉरी सॉरी सॉरी सॉरी सॉरी मैं भूल जाता हूँ, कभी कभी हो जाता है छोटा सा गजनी वाला स्टाइल। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप ज़्यादा करो तो बढ़ती रहती है, जिसे ज़्यादा यूज़ करो तो, वो है उसका हम पे जवाब आया है रबड़। और कहते हैं कि ये जवाब रबड़ तो नहीं है, जवाब है गड्ढा, जिसे ज़्यादा खोदो उतना ही बड़ा होता रहता है। तो मैसेज आया है हमारे पास ललिता कश्यप नवीन नगर जी, ललिता कश्यप जी का नवीन नगर से, कहती हैं हमें आपका शो ज़रूर सुनते हैं भैया जी, आपके बोलने का अंदाज़ बहुत प्यारा है। आज थोड़ी सी आवाज़ ऐसी हो रही है, वरना अंदाज़ सच में ऐसा होता है यार कि क्या कहें। आज का शो थोड़ा सा मिस हो गया है भैया जी, मगर हमने अभी अभी एफएम ऑन किया है ना तो हो जाता है। हाँ कोई बात नहीं, आपने बिल्कुल सही टाइम पे अपना एफएम ऑन किया है। और अभी हम लेते हैं अपने लास्ट लिसनर को भी लाइन पर, जिनसे बात करते हैं कि उन्होंने कुछ नया करा है या नहीं करा है। हम पे एक मैसेज आया हुआ है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ मेरा एक गाना प्ले कर दीजिएगा। मैंने आपका वो गाना प्ले कर दिया है, आप सभी के नाम भी ज़रूर ले लेता हूँ। निरांशी यादव, अनुराधा यादव, रंजीत यादव, सिद्ध यादव, विनायक यादव एंड शंकर लाल यादव जी। तो आप सब मस्ती करें, खूब सारे ऐसे ही प्लीज़ प्लीज़ मुझे को मैसेज करते रहें। हम पे एक और मैसेज है, उसमें उन्होंने क्वेश्चन क्या भेजा है कि आजकल की दोस्ती और आजकल का प्यार जो सोशल मीडिया पर पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, क्या आजकल का प्यार सोशल मीडिया से शुरू होता है और इसी पे ख़त्म हो जाता है? आपको क्या लगता है अखिल जी, सोशल मीडिया ने दोस्ती और प्यार को आसान किया है या खोखला? तो अगर कहा जाए तो मैं तो यही कहूँगा कि प्यार

0: के ऊपर, मतलब आपके दोस्त और उस प्यार के ऊपर डिपेंड करता है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है। आप ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं या अपने दिल और दिमाग का, तो ये तो सब थोड़ी सी सोचना पड़ेगा आपको भी और आपके उस प्यार करने वालों को भी। चलिए खैर, लेते हैं अपने एक दोस्त को लाइन पे, पता करते हैं क्या किया है उन्होंने आज नया। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संघ, कैसे हैं आप? हेलो, दिल से दिल तक अखिल संघ, कैसे हैं आप सर?
1: जी बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं सर? आप बताइए।
0: लगता है कहीं खो गए आप।
1: अरे सर, हम कहाँ खोएंगे, हम तो आपकी यादों में ही खोए हुए हैं।
0: अरे सर, हमारी यादों में खोए हुए हैं। चलिए साहब, ये यादें जो है ना, बिल्कुल कहते हैं भूलने मत दीजिएगा, इसे मिटा मत दीजिएगा यादों को अपनी कभी।
1: अभी हम भूल तो अभी मिटेंगे, हम मिट जाएंगे।
0: तो आज कोई शायरी सुना रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं?
1: सुना सर।
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं।
1: सागर से कभी किनारा नहीं मिलता।
0: क्या बात है।
1: सागर से कभी किनारा नहीं मिलता, गुजरा बस कभी द्वारा नहीं मिलता। मत कूदना मेरे दोस्त प्यार के दलदल में, मत कूदना मेरे दोस्त प्यार के दलदल में, हंसने के बाद किसी को सहारा नहीं मिलता है। अगले सर,
0: क्या बात कही सर आपने, क्या बात कही, बहुत ही बढ़िया बात कही है। और क्या आप नया करते रहते हैं ये भी बताइए सभी को, कि कुछ ऐसा नया जो आप कभी ना कभी करते रहते हैं, और कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ तो अपने पास लाइफ में नया चलता रहना चाहिए।
1: जी मैं नया नहीं करता, मैं नया नया करता भी हूँ, सोचता भी हूँ, और मैं ये कहता हूँ जो भी हम अच्छी बात सुनने को मिले वो हम दूसरे के साथ शेयर करें।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया बात कही आपने।
1: अगर एक हमारी अच्छी बात से अगर कोई एक हजार में से एक आदमी भी हमारी बात को समझ जाए तो आपका जी अखिल सर, आपके जो आप रेडियो वो करेंगे तो मैं कहता हूँ जीवन सफल हो जाए।
0: बिल्कुल सही बात कही आपने, कुछ ना कुछ कोई एक आपकी अच्छी बात और कोई उसे उसको सीख में मिल जाए तो उसके लिए इससे बेहतर बात क्या है।
1: कोई भी मतलब वो, मगर देखो कभी भी मोबाइल रेडियो पर बात करें ऐसी कोई बात नहीं कहें जो किसी को बुरी लगे।
0: बिल्कुल सही बात कही आपने,
1: क्योंकि किसी को अपनाना बहुत मुश्किल है, किसी को उठाना दिल से कोई वो नहीं है, देर नहीं लगती उठाने में।
0: बिल्कुल सही बात कही आपने, जो भी कहते हैं ना, हर चीज को एक अच्छी चीज होने में थोड़ा सा समय लगता है, तो वो यही है कि भैया किसी को अपनाने में तो थोड़ा सा समय लगता है, मगर एक झटके में अगर आपने कुछ ऐसा बात हो जाती है तो वो एकदम दूर भी हो जाते हैं रिश्ते।
1: बिल्कुल, तो मैं तो ये कहता हूँ सर, जो भी है हमारे लिसनर सुनना है आपकी आवाज आपके द्वारा, तो मैं तो ये कहता हूँ कि सब अपने ऊपर वाले पे विश्वास रखें, अल्लाह ईश्वर पे सबसे विश्वास रखें।
0: क्या बात कही,
1: अच्छी बात सोचें, अच्छा करें।
0: धन्यवाद साहब, धन्यवाद। कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: मत रो मेरे दिल, चुप हो जा।
0: तो चलिए आज इस शो का जो कहते हैं ना लास्ट सॉन्ग जो होगा वो यही होगा सर आपके। आई विल। धन्यवाद साहब हमसे जुड़ने के लिए।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार जी। तो देखिए साहब, चलते चलते कितनी खूबसूरत बात कहे गए ये, और बिल्कुल सही बात कहे गए। हमारे एक लिसनर हैं रोहित जी, उन्होंने अभी मैसेज किया है कि मैंने पहली बार अपना गिटार बजाना सीखा है सर, और मेरी उम्र हो गई है अब 40। तो सर रोहित जी, मैं तो ये कहूँगा कि आप उम्र से इसका कोई लेना देना नहीं होता, कुछ भी नया आप सीख रहे हो ना तो आप सीखो उसे, वो एज इज़ अ जस्ट नंबर, कोई ऐसा बहाना नहीं। अगर ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं जिसमें एक एग्जांपल बोमन ईरानी साहब का भी है, जिन्होंने 55 ईयर्स की एज में उन्होंने अपने एक्टिंग का करियर चालू किया, और आप सब जानते होंगे कि कितनी अच्छी मूवी में कितने अच्छे अच्छे रोल किए हैं। 3 इडियट का जो उनका रोल है वो आप भूल नहीं सकते, और मुन्ना भाई MBBS में उनका रोल नहीं भूल सकते। तो सर एज इज़ अ जस्ट नंबर, आप जब चाहें आप तब एक नई शुरुआत कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि अब उम्र निकल गई है, लेकिन सच ये है कि उम्र कभी नहीं निकलती, सिर्फ बहाने बढ़ जाते हैं। शालिनी जी का मैसेज आया है हम पे, वो कहती हैं कि मैंने पहली बार अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन शालिनी जी, मैं कहता हूँ शुरुआत जो है ना हमेशा छोटी होती है, मगर हौसले जो है ना वो बड़े होने चाहिए। तो आप बिल्कुल बड़े हौसले रखिए, जरूर आपने जो छोटा सा बिजनेस किया ना वो एक दिन बहुत बड़ा बनेगा आपके लिए भी। नई सुबह, नया सफर, नई उम्मीदों का असर। जिंदगी तब तक खूबसूरत है जब तक दिल में बचा हो नया हुनर। क्या शायरी भेजी है जुनैद साहब ने रामपुर से, बहुत ही बढ़िया शायरी भेजी है आपने। तो दोस्तों कहते हैं ना, हर शुरुआत, हर नई शुरुआत कभी भी किसी से पूछ के नहीं होती, बस जब दिल में आता है, जो दिल से निकलता है तभी शुरुआत हो जाती है। एक चाहने से पहले एक इमोशनल शायरी हमारे पास आई है और इनका नाम है हर्ष, हर्ष जी ने भेजी है ये। हर नया दिन एक नया पैगाम लेकर आता है, हर सुबह एक नया अरमान लेकर आता है, जो मुस्कुराकर जीना सीख लेते हैं वक्त भी उनका सम्मान करता है। क्या बात है हर्ष जी, आपने एक बहुत ही बढ़िया कहते हैं शायरी लिखी, मगर आपने इसमें इमोशनल शायरी जो लिखा है तो वो थोड़ा सा तो इमोशन है इसमें, कुछ ना कुछ तो हर दिन नया पैगाम लेकर आता है, ये बात बिल्कुल सही कही आपने। तो दोस्तों अगर आज की इस बातचीत से आपके दिल में हल्की सी भी कहते ना, हाँ भाई कुछ बातें तो आज हुई हैं, तो ज़रूर हमें मैसेज करके बताएं कि हाँ ये जो कहते ना नया करना या कुछ भी ऐसी बातें, इन टॉपिक्स पे बात करने पे कुछ ना कुछ नया समझ में आता है या कुछ नया निकल के आता है, ज़रूर हमें मैसेज करें और हमें वो भी बताएं कि हाँ आप ये टॉपिक भी अपने साथ शेयर कर सकते हैं। कंफर्ट जोन अच्छा लगता है लेकिन सच में ग्रोथ जो है ना हमेशा हमें बाहर से मिलती है। नई चीज़ें सीखिए, नए लोगों से मिलिए, नई जगह चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में हर दिन एक नया मौका देती है। कल से बेहतर आज बनो, आज से बेहतर कल, जिंदगी का यही असूल है, चलते रहो हर पल। तो आज इस पल के लिए आपसे सभी से मैं यही से गुजारिश चाहूँगा और कहूँगा आपको शुभ रात्रि, और कल हम फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मस्ती के साथ, एक नए दिल की बात के साथ फिर से मिलेंगे ठीक 9 बजे FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे। चलते चलते सर की एक फरमाइश वाला गाना प्ले कर देते हैं और कल वेडनेसडे में करेंगे सबसे पहले आपकी फरमाइश की शुरुआत 9837896896 पर। गुड नाइट गाइस, गुड नाइट।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।

जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा,

जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।

उर्दू शायरी में जगह जगह मैं या शराब का जिक्र हुआ है, लेकिन ये शराब की मस्ती को अलग अलग मानों में इस्तेमाल किया गया है। कहीं पे जिंदगी से मोहब्बत की शराब है, तो कहीं महबूब की आंखों की मस्ती का नाम शराब है। अब जो गजल मैं पेश करने जा रहा हूं, उसमें शायर ने शराब के आईने में किस तरह अपनी जिंदगी और महबूब को देखा है वो मुलाहिज़ा फरमाइएगा। गजल से पहले दो शेर अर्ज हैं। मशहूर शायर नरेश कुमार शाह के ये शेर हैं।